मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की नवी तिथि तदनुसार 30 जून सन 2026 5:56 और 41 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सराहपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में

0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूहज्वल में अभी आपने सुनी चंद्रसेन विराट की देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए किशोरी अमोनकर के स्वर में मीराबाई का ये भक्तिपद।

मुकेश की आवाज़ में ये था संत कबीर का भक्ति पद। लीजिए अब सुनिए साधना सरगम के स्वर में गजेंद्र सिंह सीकरवार का ये भजन।

0: विधि शर्मा के स्वर में अभी आपने सुना पारंपरिक भजन। इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री मोहन अग्रहरी का है।
1: भारतीय जीवन दर्शन या भारतीय संस्कृति का मूल परिवार है। परिवार में सब कुछ टिकाऊ और बाजार में सब कुछ बिकाऊ होता है। बाजार में किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, वहां सब कुछ पैसा है। परिवार में सबसे सबके अटूट संबंध होते हैं और उनका आधार निस्वार्थ स्नेह और प्यार होता है। भारतीयता की भावनात्मक आत्मीयता के द्योतक हमारे यहां प्रचलित संबंध सूचक संबोधन है। माँ, अम्मा, पिताजी, बाबूजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, भाई बहन जैसे संबंध सूचक नाम हैं। संस्कार और

0: संस्कृति में जरा सा भी भेद नहीं है, भेद केवल प्रत्यय का है। इसलिए संस्कार और संस्कृति दोनों शब्दों का अर्थ है धर्म। धर्म का पालन करने से ही मनुष्य मनुष्य है, अन्यथा खाना पीना सोना रोना धोना डरना मरना संतान पैदा करना ये सभी काम पशु भी करते हैं। पशु और मनुष्य में भेद ये है कि मनुष्य ये सभी कार्य संस्कार के रूप में करता है। गाय भैंस घोड़ा बछड़ा आदि जैसा अनाज खेत में खड़ा रहता है वैसा ही खा जाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य खड़े अनाज को खेतों में ही खाने को तैयार नहीं होता। खाएगा तो लोग कहेंगे पशु तुल्य है। इसलिए संस्कार संस्कृति और धर्म के द्वारा मानव में मानवता आती है। बिना संस्कृति और संस्कार के मानव में मानवता नहीं आ सकती। वर्तमान समय में हमारे देश में जो संस्कृति का संकट है उसका कारण है विदेशी संस्कृति से प्रभावित लोग। लोग विदेश जाकर संस्कारित होते हैं और आकर उसका प्रचार भी करते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है कि विदेशी अपनी संस्कृति से उबकर हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हम उनकी संस्कृति की तरफ ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं। विदेशी संस्कृति का त्याग ही भारत को पूर्ण गौरव की ओर उन्मुख कर सकता है। हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि भारतीय भावना भोगों पर नहीं वरन भक्ति पर केंद्रित है। प्रत्येक प्राणी और पदार्थ में भगवान की या भगवत कृपा की झलक पाना भारतीय भावना का मूल है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वृक्ष वनस्पति अन्न फल पशु पक्षी जंतु पर्वत सागर और सरिताएं सभी भगवत स्वरूप हैं। ये भावना ही भारत भारती है। इसे विकसित करेंगे तो जग और जीवन दोनों धन्य हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रखना है तो सामने अच्छा आदर्श होना ही चाहिए। मुखाकृति वस्त्राभूषण आदि में कोई कमी हो तो दर्पण देखा जाता है, दर्पण कमी दिखा देता है। जिनका जीवन श्रेष्ठ है उन्हें दर्पण की भांति सामने रखकर अपने जीवन की कमियों को देखा ढूंढा और सुधारा जा सकता है। अनेकानेक कष्ट आने पर भी मीरा ने अपनी सत्यनिष्ठा कृष्ण नाम निष्ठा तनिक भी विचलित नहीं होने दी, तभी तो विष अमृत बना। हम तनिक सी विपरीतता में ही अपने श्रद्धा विश्वास को अस्थिर कर लेते हैं। बस यही कमी है जो पूजा पाठ जप तप करते हुए भी हम उस अमृत तत्व से वंचित रहते हैं। बुद्धिमान किसी स्थिति को परिणाम से ही आंकता और स्वीकारता है। प्रहलाद विभीषण शबरी अर्जुन सुदामा आदि का जीवन आदर्श है, प्रेरणादायक है। नेत्रहीन होते हुए भी सूरदास की भावभक्ति इस बात का एक आदर्श ही तो है। यदि लक्ष्य अच्छा भाव सच्चा और विश्वास पक्का है तो शारीरिक विकलांगता भी महानता में बाधक नहीं बन सकती। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें निष्ठापूर्वक परिजन आत्मसात करते हैं तो परिवार सुखद क्षणों का आकाश बन जाएगा। इसमें संशय अथवा समाधान की कोई गुंजाइश नहीं है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्री मोहन अग्रहरि का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।
2: नमस्कार।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: वो भी अगर वो आधार बीज उत्पादन है तो आधार बीज के लिए हमारे यहाँ से GOT का परीक्षण किया जाता है। GOT अर्थात ग्रो आउट टेस्ट। ग्रो आउट टेस्ट के लिए शुल्क लिया जाता है। अगर स्व परागित किस्में हैं तो 550 रुपए प्रति सैंपल या नमूना, और यदि पर परागित किस्में हैं तो 650 रुपए प्रति हेक्टेयर के अनुसार उसमें शुल्क लिया जाता है। ग्रो आउट टेस्ट में हमारे यहाँ बिलासपुर में चोरभट्टी में GOT प्रक्षेत्र है। GOT प्रक्षेत्र में हम अगर खरीफ फसलों का रवि के सीजन में GOT परीक्षण किया जाता है। अब आप भाई कहेंगे कि भाई वो तो बारिश के समय की फसल है और उसका परीक्षण आप ठंडी में कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपको निसंदेह ये बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसके लिए उसी प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है। ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, पॉली हाउस बनाए जाते हैं, जिसमें वही नमी, वही तापमान एवं आर्द्रता का निर्धारण करते हुए और 2000 दानों के एक प्लॉट तैयार किया जाता है, जिसमें कि दानों को लगाया जाता है ग्रो आउट टेस्ट का परीक्षण करने के लिए। अब इस ग्रो आउट टेस्ट का परीक्षण में केवल मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम अनुवांशिक शुद्धता या फिर अन्य किस्मों के अगर बीजों का मिश्रण है उसका परीक्षण करें। तो इसके लिए बीजों को या पौधों को पूर्ण रूप से बिल्कुल जिस तरीके से खेत में लगाया जाता है उसी तरीके से खाद वगैरह देते हुए, उनमें पानी वगैरह जिस जो भी आवश्यकताएं जिस स्टेज में या जिस समय अवधि में जो आवश्यकताएं होती है वो देते हुए उन पौधों को तैयार किया जाता है। और जब उसमें पुष्पन की अवस्था आती है उस समय कृषि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों, यदि वो धान के वैज्ञानिक हैं तो वो धान का निरीक्षण करेंगे, यदि वो दलहनी फसलों के वैज्ञानिक हैं तो दलहनी फसलों का निरीक्षण करेंगे, वो आते हैं। और अधिसूचित किस्मों के लिए जो पौध कैरेक्टर या बोल सकते हैं कि जो पौधों के बारे में जो बताया गया है कि उनका किस प्रकार का मॉर्फोलॉजी या उनके किस प्रकार के कैरेक्टर्स होंगे, उसके आधार पर कि उसमें फूल का रंग क्या होगा, वो कितनी अवधि में पुष्पन आएगा, या उसमें अगर हम धान की बात करें तो हम धान में वो निकले रहते हैं नुकीले ऑन निकले रहते हैं, उन सबके आधार पर या फिर पौधों की लंबाई कितनी है, इन सबके आधार पर वो पूरा निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण के उपरांत वो ये बताते हैं कि क्या अगर वो 10-10 है तो क्या इसमें स्वर्णा या किसी अन्य किस्म के पौधे भी तो है कि नहीं है। यदि वो पूर्ण रूप से अनुवांशिक वो शुद्ध पाए जाते हैं तो इस प्रकार वो मानक हो जाते हैं, अतएव उन्हें वहीं पर ही निरस्त कर दिया जाता है कि इसमें अन्य प्रकार के बीजों का, अन्य किस्म के बीजों का मिश्रण है तो वो अनुवांशिक रूप से शुद्ध, ये जो मिश्रण है उसमें जेनेटिक प्योरिटी की कमी है। दूसरा होता है कि प्रयोगशाला में, अब अगर केवल आधार बीजों का ही छत्तीसगढ़ में प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत केवल आधार बीज उत्पादन में GOT का परीक्षण किया जाता है, किंतु यदि हम प्रमाणित बीजों या हम जैसे कि क्लास की बात करें तो आधार के बाद में आता है प्रमाणित बीज, तो अगर उनका परीक्षण की बात करें तो आधार और प्रमाणित दोनों प्रयोगशाला में भी नमूने भेजे जाते हैं, वहां पे किया जाता है ODV परीक्षण, यानी अन्य पहचानी जा सकने वाली किस्मों का परीक्षण। उनका परीक्षण भी SeedNet पोर्टल में लिखे हुए या फिर उसमें पब्लिश हुए या फिर कह सकते हैं अधिसूचित किस्मों या वैज्ञानिकों द्वारा जो किस्में अधिसूचित की जाती है उसके बारे में पूरे प्लांट एवं सीड कैरेक्टर दिए गए रहते हैं, उनके आधार पर ही उन बीजों का परीक्षण किया जाता है कि
1: आनुवंशिक शुद्धता का परीक्षण। कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर जानकारी दे रही थी संगीता टेटवार। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, कलाकार थे सुरेश वाटकर और ए हरिहरन। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण, इस विषय पर जानकारी देते हुए संगीता टेटवार।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कृषक भाई जब घर प्रमाणित बीज उत्पादन में भाग ले रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि कई बार उनके बीज अमानक हो जाते हैं और उसका कारण होता है कि ODV परीक्षण, या कहा जाता है कि भाई उसमें किसी अन्य किस्मों का मिश्रण पाया गया है। तो किसान भाई यही सोचते हैं कि भाई हमने तो देखा था तो उसमें तो ये मिश्रण नहीं था, लेकिन ये कैसा हुआ? तो उसका परीक्षण किस प्रकार प्रयोगशाला या प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत किया जाता है, मैं इसकी जानकारी आपको देना चाहूंगी आज। जो भी कृषक भाई जो बीज उत्पादन करते हैं उन बीजों की ग्रेडिंग होती है या ग्रेडिंग के

आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच पहला सेमीफाइनल ओवल लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा शाम 7:00 से 7:30 तक, 8:00 से 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भैया में सुनिएगा 25 वर्ष के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाका। इस विषय पर गोटबात प्रतिभागी होंगे डॉक्टर राजन यादव, श्रीमती सरला शर्मा और डॉ

बी रघु कुमार, संपादक और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेंद्र साहू। रंग तरंग में लघु नाटिका बोर मत करो सुनिएगा सुबह 9 बजे। लेखक होंगे श्री उमेश कुमार सोनी, प्रस्तुतकर्ता होंगे समीर शुक्ल। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मदन मेहर और साथी। प्रसारण समय 9:40। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दोपहर 12 बजे। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। समूहगान शिक्षा के कार्यक्रम में कन्नड़ भाषा में समूहगान शिक्षा सुनिएगा सुबह 11:05 पर और आप सुनेंगे समूह स्वर में सुगम संगीत। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम घर आंगन में सुनिएगा आज के गोट में बड़े बुजुर्ग खुली किताब आए ये कर मान बनाए राखव इस पर चर्चा और होगा गीत ले भरे कहानी वसीयत आलेख और वाचन संध्या पर गनिहा का होगा संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की होगी संयोजक होंगे रमाशंकर। शाम 5:10 पर कार्यक्रम युववाणी के आकर्षण होंगे अपन गोट में अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस पर चर्चा और होगा सवाल जवाब और माटी के गीत। शाम 7:30 पर किसानवाणी में हेलो किसानवाणी आप सुनेंगे इसमें सुनिएगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण इस विषय पर डॉक्टर पुनेंद्र साहू अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरा द्वारा दी गई जानकारी। संचालन तेजेश्वर साहू का होगा और प्रस्तुति होगी शशि प्रकाश पांडे की। रात 10:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सुनंदा शर्मा का गाया राग बागेश्री। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15 10:30 दोपहर 1:05 2 बजे और 2:30 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: सिंहः अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः सशस्त्रसेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे अष्टदिनांके राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथमचरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेश प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 57 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई

0: को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले चार वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन चार सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

एक और सुहानी सुबह में नमस्कार रायपुर लेकर हाजिर हूँ मैं सौम्या रिस्वी। आप सभी को हमारा नमस्कार।

बरसात की सुबह अपने साथ सिर्फ पानी की बूंद नहीं, बल्कि एहसास, ताजगी और खामोशी का एक खूबसूरत मंजर भी लेकर आती है। रात भर बरसे बादलों के बाद जब सुबह की पहली रोशनी खिड़की पर दस्तक देती है तो लगता है जैसे फिजा ने नया लिबास पहन लिया हो। भीगी हुई जमीन से उठती सौंधी

खुशबू, पेड़ों से टपकती बूंदें और हवा की हल्की नमी दिल को एक अजीब सा सुकून देती है। दूर कहीं परिंदों की आवाज़ें और पास की छतों से गिरता पानी मिलकर ऐसा तरन्नुम बनाते हैं जो किसी पुराने नख़मे की याद दिलाते। बरसात की सुबह में शहर भी कुछ देर के लिए अपनी मसरूफियत भूल जाता है। सड़कें धुली हुई लगती हैं, पेड़ और भी ज़्यादा हरे दिखाई देते हैं और आसमान पर तैरते बादल किसी खामोश दास्तान के किरदार लगते हैं। ऐसे लम्हों में इंसान अपने अंदर की आवाज़ भी सुन पाता है। ये सुबह हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी हमेशा तेज़ी से नहीं चलती। कभी कभी ठहरना, खिड़की से बाहर देखना और बारिश की बूंदों को महसूस करना भी ज़रूरी होता है। बरसात की सुबह दरअसल मौसम नहीं, एक कैफियत है जो दिल को नरमी, सोच को ताजगी और रूह को राहत देती है।

श्रोताओं, आज भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान अग्रदूत, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी जी की पुण्यतिथि है। उन्हें भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। वे ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से उजागर किया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत से धन और संसाधन लगातार बाहर भेज रहा है, जिससे भारत गरीब हो रहा है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार उन्होंने स्वराज की मांग की थी। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती दौर के उन महान नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, दूरंदेशी और सियासी समझ से देश को एक नई सोच दी। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि ज्ञान, सब्र और सच्ची नीयत से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं।
1: ओएलएक्स में सामान की खरीद बिक्री करने के नाम पर आम लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास स्कैमर्स करते हैं। इसमें ठग सामान्यतः आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के नाम पर अपने स्थानांतरण कहीं अन्य जगह हो जाने से घरेलू उपकरण बेचने की बात करते हैं या कोई महंगा सामान सस्ते दर में देने की बात कर एडवांस में पैसे की मांग करते हैं और अपनी बातों में फंसाकर आम लोगों के साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। लोगों से आग्रह है कि ओएलएक्स में जब भी किसी सामान की खरीद बिक्री करते हों तो बिना सामान की डिलीवरी के पेमेंट ना करें और ओएलएक्स में सामान खरीदते समय ओएलएक्स के ऑफिशियल चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, अपने पर्सनल नंबर या व्हाट्सएप पर चैट ना करें। फिर भी आपके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी होता है तो 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं अथवा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर भी जाकर इसकी सूचना दे सकते हैं।
2: श्रोताओं, बरसात का मौसम सिर्फ ठंडी हवाओं और भीगी फिजा का मौसम नहीं होता, बल्कि ये पेड़ लगाने का भी सबसे बेहतर वक्त माना जाता है। जब आसमान से गिरती बारिश की बूंदें ज़मीन को नमी देती हैं, तब नए पौधों को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल मिलता है। इसलिए बरसात में पेड़ लगाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक खूबसूरत पैगाम है। आज बढ़ते प्रदूषण, घटती हरियाली और बदलते मौसम के दौर में पेड़ लगाना एक ज़रूरत बन चुका है। पेड़ हमें स्वच्छ हवा, छाया, फल और पर्यावरण का संतुलन देते हैं। जब हम बरसात में एक पौधा लगाते हैं तो प्रकृति खुद उसकी परवरिश में मदद करती है। कम सिंचाई में भी पौधे आसानी से जड़ पकड़ लेते हैं। पौधे लगाते समय केवल संख्या नहीं, बल्कि सही स्थान और सही प्रजाति का चयन भी ज़रूरी होता है। नीम, पीपल, अमलतास, आम और स्थानीय वृक्ष लंबे समय तक लाभ देते हैं। बरसात में हम केवल बारिश का आनंद न लें, बल्कि एक पौधा लगाकर धरती को और अधिक हरा भरा बनाने का संकल्प लें। बरसात में लगाया गया छोटा सा पौधा आने वाले वर्षों में एक घना वृक्ष बनकर अनेक लोगों को राहत देता है। ये काम सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक रिश्ता मजबूत करने का माध्यम भी है। बात वृक्षारोपण की हो रही है तो श्रोताओं, आज हम नमस्कार रायपुर में ऐसे गीत सुनेंगे जिसमें वृक्षों का जिक्र है। पीपल, पीपल के पेड़ की बड़ी मान्यता है। इसमें कई औषधीय गुण छुपे होते हैं। इस पेड़ की पत्तियों से लेकर जड़ तक सभी हिस्से गुणकारी होते हैं। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है।

श्रोताओं, नीम का पेड़ पर्यावरण के लिए जितना अच्छा है उतना ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। नीम के पेड़ का हर हिस्सा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके गुणों के कारण इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। वैसे जब हम गुणी हों, प्रतिभाशाली हों, तो करियर बनाना आसान हो जाता है। करियर की बात चली है तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या किसी अन्य खेल में रुचि रखने वाले छात्र अपने शौक को करियर का रूप दे सकते हैं। सही प्रशिक्षण, फिटनेस और निरंतर अभ्यास से खेलों में पहचान बनाई जा सकती है। इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण साई के प्रशिक्षण केंद्रों समेत विभिन्न खेल संस्थानों में प्रशिक्षण लिया जा सकता है। योग्यता इस प्रकार है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10-2 उत्तीर्ण, खेल विशेष में अच्छा प्रदर्शन, जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदार होने पर प्रदेश में लाभ मिल सकता है, कुछ संस्थान शारीरिक दक्षता परीक्षा

0: या प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। स्पोर्ट्स में मौके बहुत से होते हैं। खिलाड़ी बनने के अलावा युवा स्पोर्ट्स कोच, फिटनेस ट्रेनर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, रेफरी, अंपायर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और कमेंटेटर के रूप में भी करियर बना सकते हैं। इसके लिए कोर्स हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। शिक्षण संस्थान हैं लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, अमिटी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज नोएडा और दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली। फिलहाल एक और गीत आपकी नजर।
1: हुम हुमा, हुमा हुम हुम।

श्रोताओं, आम के पेड़ के पत्तों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसकी पत्तियों में विटामिन ए, बी, सी और बी फ्लेवोनॉइड्स और फिनोल होते हैं। आम के पेड़ के पत्तों का उपयोग इनकी चिकित्सकीय शक्तियों के लिए हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। इस जानकारी के बाद ये जानकारी, गृह विभाग के अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 15 पदों की भर्ती की जानी है। परीक्षा 20 सितंबर को संभावित है। इसके लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उपाधि आवश्यक है। आवेदन में त्रुटि सुधार निःशुल्क 22 से 24 जुलाई तक और सशुल्क त्रुटि सुधार 25 से 26 जुलाई तक किए जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल एक और गीत आपकी नज़र, जिसमें मीठे मीठे अमिया का जिक्र है।

श्रोताओं, गुलमोहर पेड़ का प्रयोग आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से एक असरदार औषधि के रूप में किया जा रहा है। इसके फूल और पत्तियां कई रोगों के इलाज में फायदेमंद हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। गुलमोहर घाव को ठीक करने में भी सहायक हो सकता है और इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकता है। तो गुलमोहर का पौधा लगाएं, पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। वैसे पर्यावरण की बात निकली है तो बिजली के खर्च और पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत के बीच सोलर पैनल लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। ये न केवल इको फ्रेंडली विकल्प हैं बल्कि लंबे समय में बिजली बिल कम करने में भी मदद करता है। हालांकि बेहतर पावर जनरेशन के लिए सोलर सिस्टम का सही इस्तेमाल और रखरखाव बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ आसान उपाय हम अपना सकते हैं। सही प्लेसमेंट सबसे ज़रूरी होता है। सोलर पैनल की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक उसकी प्लेसमेंट पर निर्भर करती है। पैनल को ऐसी दिशा में लगाना चाहिए जहां दिन भर अधिकतम धूप मिल सके। विशेष ध्यान रखें कि पैनल पर पेड़, दीवार या किसी बिल्डिंग की छाया ना पड़े। नियमित सफाई से पावर जनरेशन बढ़ती है। धूल और मिट्टी जमा होने से सोलर पैनल की क्षमता घट सकती है। बेहतर प्रदर्शन के लिए सफाई ज़रूरी है। मुलायम कपड़े और सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। तेज़ धूप में सफाई से बचें और सुबह या शाम का समय चुनें। सोलर सिस्टम केवल धूप में बिजली बनाता है, इसलिए रात या बादलों के समय बिजली की समस्या हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए सोलर बैटरी लगाना फ़ायदेमंद होता है। दिन में बनी अतिरिक्त बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है और ज़रूरत पड़ने पर उपयोग की जा सकती है। पैनल का समय समय पर निरीक्षण और मेंटेनेंस करवाना ज़रूरी है। सही देखभाल से सिस्टम लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करता है और बिजली उत्पादन भी अधिक मिलता है। फिलहाल एक और गीत पेशी खिदमत है।

श्रोताओं, तुलसी का महत्व केवल औषधीय उपयोग तक सीमित नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, आस्था, प्रकृति और घरेलू जीवन का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिनका संबंध शरीर की रक्षा प्रणाली से जोड़ा जाता है, साथ ही सर्दी, जुकाम, गले और खांसी में आराम, मुंह की स्वच्छता और तुलसी की चाय भी लाभप्रद होती है। तो इस बरसात हम तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। वैसे बरसात की बात निकली है तो श्रोताओं, बरसात के दिनों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। सांपों से बचाव के लिए सबसे पहले अपने घर और आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। झाड़ियाँ, घनी घास, लकड़ी, ईंट या कबाड़ के ढेर सांपों के छिपने का स्थान बन सकते हैं। घर की दीवारों की दरारें और दरवाजों के नीचे के खुले स्थान बंद रखना भी ज़रूरी है। बरसात के मौसम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इस समय सांप अधिक दिखाई दे सकते हैं। खेत, बगीचे या सुनसान स्थानों पर जाते समय बंद जूते और पूरे कपड़े पहनना बेहतर होता है। रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का हम उपयोग करें। अगर कहीं सांप दिखाई दे तो उसे छेड़ने, पकड़ने या मारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और आवश्यकता होने पर प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या संबंधित विभाग को सूचना दें। बच्चों को भी ये समझाना चाहिए कि सांप देखकर उत्सुकतावश उसके पास न जाएं। अगर किसी को सांप काट ले तो घबराना नहीं चाहिए। घायल व्यक्ति को शांत रखें और तुरंत निकटतम अस्पताल पहुंचाएं। घरेलू उपचारों पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सकीय सहायता लेना सबसे सुरक्षित उपाय होता है। जागरूकता, स्वच्छता और सावधानी ही सांपों से बचाव का सबसे प्रभावी मार्ग है। डर नहीं बल्कि सही जानकारी और सतर्क व्यवहार हमें सुरक्षित रखता है। फिलहाल ये गीत आपकी नज़र।

श्रोताओं, इमली के पत्ते में कई सारे फायदे होते हैं क्योंकि ये कई औषधीय गुणों से समृद्ध होता है। इमली के पौधे का प्रत्येक भाग जड़ से लेकर पत्ते तक सभी में पोषक तत्व होते हैं। इस जानकारी के बाद एक और जानकारी आपको दें। श्रोताओं, आजकल कई लोग नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार या अन्य ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेते समय UPI ऑटो पे चालू कर देते हैं, बाद में ऐप इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। ऐसे में अकाउंट से हर महीने पैसे कटते रहते हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि 100, 200, 500 या 1000 रुपए तक हर महीने बेवजह खर्च हो रहे हैं। इस समस्या से बचाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पोर्टल बनाया है। यहाँ आप अपने सभी UPI ऑटो पे मैंडेट्स एक ही जगह देख सकते हैं। इसके लिए मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में upihelp.npci.org.in सर्च करें और उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करें जो हमारे UPI अकाउंट से लिंक है। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर सभी एक्टिव ऑटो पे सब्सक्रिप्शन की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ दिखेगा कि किस ऐप से कितनी राशि अकाउंट से कट रही है और ऑटो पे कब से चालू है। अगर कोई सब्सक्रिप्शन काम का नहीं है तो उसे पॉज कर सकते हैं। पॉज करने पर सेवा अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी। अगर कोई पुरानी सेवा फिर से शुरू करना चाहते हैं तो उसे रिज्यूम कर सकते हैं। कोई सेवा स्थायी रूप से बंद करनी हो तो उसे कैंसिल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि NPCI के ऑफिशियल पोर्टल से ही लॉगिन करें। फिलहाल ये इमली वाला गीत आपकी नज़र।

श्रोताओं, बेर में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, मैंगनीज, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो हेल्दी शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। श्रोताओं, बारिश में पौधे किस तरह लगाना चाहिए, ये सवाल मन में आता ज़रूर है। पहले तो सही पौधा चुनें अपने इलाके और जगह के हिसाब से, जैसे नीम, जामुन, अमरूद, आम, बरगद, पीपल, करंज। पहले लगभग 1-2 फुट गहरा और चौड़ा गड्ढा खोदें। निकली मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला दें। हल्की या रुक रुक कर होने वाली बारिश के समय पौधे लगाना बेहतर होता है, ताकि मिट्टी बह ना जाए, पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी ना टूटे। पौधा सीधा रखें और मिट्टी भरकर हल्का दबाएं। बारिश में भी ध्यान रखें कि पौधे के पास पानी ठहरा न रहे, वरना जड़ सड़ सकती है। साथ ही सूखी पत्तियां, घास या भूसा पौधे के आसपास हम बिछा दें, इससे नमी बनी रहती है। हवा से बचाने के लिए पौधे के पास एक डंडा बांधें। पहले 2 से 4 सप्ताह पौधों को देखें, अगर बारिश कम हो तो थोड़ा पानी दें और खरपतवार हटाते रहें।

अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और

0: डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र

0: वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठकर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया।

0: आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपये तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के कार्यक्रम में आप मन ला सुनवात हन एक गोट बात, जेकर विषय हवे 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाखा। ये कार्यक्रम के संचालन करत हैं डॉक्टर राजन यादव।
1: 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा, ये वार्ता में हमार संग प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, गद्य रचनाकार आदरणीय बहन जी सरला शर्मा जी हैं, और शैक्षणिक परिषद की ओर से राजकाज से जुड़े हुए, शोध कार्य से जुड़े हुए डॉक्टर बी रघु कुमार जी, आप मन के स्वागत है। हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के लंबा इतिहास है, पर हम जब देखथन कि 25 बरस के छत्तीसगढ़ में हमार छत्तीसगढ़ी भाषा कहाँ तक पहुँची है। अज्ञे जैसे बड़े बड़े साहित्यकार मन कहे हैं कि भाषा कल्प वृक्ष होते, भाषा ला हमन नहीं बनान, भाषा हमन ला बनाते। तो गौरव की बात है कि आज हमार छत्तीसगढ़ी राजभाषा के रूप में हमार छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित है। तो राजकाज के भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी के काय स्थिति है, डॉक्टर बी रघु कुमार जी?
2: धन्यवाद आदरणीय। अभी वर्तमान में राजकाज में स्थापित

0: तो नहीं हुए है छत्तीसगढ़ी है। जब से छत्तीसगढ़ बने हैं वहां से लेके एखर बर कुछ तैयारी हुए है, राजभाषा आयोग घलो करीन और हमारे साहित्यकार मन और भाषा के विशेषज्ञ मन घलो के मा काम करे है, कुछ पुस्तिका निर्देशिका छत्तीसगढ़ी में राजकाज में उपयोगी जेन हो सकत है वो विषय लेके कुछ पुस्तिका वगैरह हो, इस प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित करे गए है मंत्रालय स्तर पर और विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यालय मन में। योजना ये भी रही से कि जिला स्तर मन के कार्यालय मन में भी प्रशासकीय कार्य के समय राजकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा के बने उपयोग होए करके प्रयास तो हो है, लेकिन ये कहे जा सकते है कि अभी औ कुछ प्रयास करे की आवश्यकता है आने वाले समय में, औ एखर कैसे विस्तार हो सकते है तो एखर बारे में भी औ हमला प्रयास करे की आवश्यकता है।
1: हाँ बढ़िया, हरि ठाकुर कहे है कि भाषा श्रवण कुमार सही होते, लोक संस्कृति लोक परंपरा लोक साहित्य लोक कला लोक भाषा अपन खान हम लेके चलते सब ला। तो हमारे यहाँ लेखन के भी बड़ा काम होते, अभी गद्य के बढ़िया रचना थे और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी उपन्यास के समीक्षक, छत्तीसगढ़ी साहित्य के समीक्षक, गद्यकार कहानीकार आदरणीय सरला जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कहानी लेखन द्वारा छत्तीसगढ़ी के कैसे फैलाव होवत है।
2: आज कहानी हर वाचिक परंपरा ले बहुत आगू निकल गए है और ए दिशा में हम देखा थन कि छत्तीसगढ़ राज बने के बाद कहानी लेखन है सिर्फ प्रेम दाम्पत्य एक ऊपर आधारित नहीं रह गए है। आज के कहानीकार आज के जो प्रमुख विषय है माने सियान सियानीन मन काकर कर रही भविष्य के पेट भरे के चिंता कौन करही, तो वृद्धाश्रम बनत है का वृद्धाश्रम में वो सियान सियानीन मन सुरक्षित हैं संतुष्ट हैं, ए विषय ला ले करके कहानी लिखे गई गरु बुढ़ापा जेकर लेखिका है सरला शर्मा। आउ थोड़कन आगे आइन आज के दिन में महात्मा गांधी घर कतका कन प्रासंगिक रही गए, अहिंसा के सदुपयोग या दुरुपयोग समाज में कौन तरह से हुआ थे, समाज के पिछड़े वर्ग ला कतका आगू आए के मौका मिला थे, माने महात्मा गांधी ला आज हमन व्यावहारिक रूप से कौन रूप में देखा थन, अतका ज्वलंत प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं चंद्रहास साहू और उनकर कहानी के नाम है गांधी चौरा। गांधी चौरा ला पढ़े के बाद हमन ला एक बार फिर सोचे बर पड़ जाते कि का महात्मा गांधी के अहिंसा हर जैन धर्म के अहिंसा परमो धर्म हर और बौद्ध धर्म के प्राणी मात्राणी दयालु भाव हर आज प्रासंगिक रही गए। एकर मतलब होइस कि आज के कहानीकार मन आज के समस्या ला अपन विषय वस्तु बनावत हैं और यह बहुत खुशी की बात है।
1: अच्छा बताया आपने, जैसे परदेसी राम वर्मा की मरिया बहुत कहानी संग्रह दौरान आई सभी, बिहारी लाल साहू के सूरज पोटारी संध्यार, पीसी लाल यादव के न्याव, सुधा वर्मा के धन बहार के छाँव माँ, चोवा राम बादल, रामनाथ साहू, सुशील कुमार भोले, गया प्रसाद साहू, डॉक्टर उर्मिला जी, कमलेश प्रसाद जी, चंद्रहास, आप स्वयं सरला शर्मा जी, और जो चंद्रहास जी के याद करो गांधी चौरा मंगरोहन करिया अंग्रेज गजब के उखर कहानी संग्रह भी आते हैं। तो कहानी के माध्यम से कहे जाते कि भाषा ला पुष्ट गद्य के द्वारा करे जा सकते है, तो गद्य में बढ़िया रचना होते पर केवल रचना से ही काम नहीं चलाए, हमार पठन पाठन में भी आए चाहिए, तो स्कूली शिक्षा में छत्तीसगढ़ी कैसे विकसित हुआ थे डॉक्टर रघु जी?
0: आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं जानकारी ये दे दूं कि शासन स्तर पे खासकर स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में कहीं कहीं पे पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला जो है ने अंश बनाए गए है, जैसे 2019-20 में एक प्रयोग हो इसकी जैसे छत्तीसगढ़ बहुभाषी परिवेश के हवे स्थानीय आदिवासी मन के घलोक भाषा है तो वह मन ला महत्व देते हुए छत्तीसगढ़ी ला भी शामिल करके तो कक्षा एक और दो के लइका मन पर द्विभाषिक पुस्तक बनाए गए है, माने वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी में हिंदी और हल्बी गोंडी ऐसे टाइप के, तो ये एक प्रयोग है बहुत सार्थक

0: थक रहीस आज के तारीख में पहली कक्षा दूसरी कक्षा के लइका मन ला जेखर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है जेखर बर सुगम छत्तीसगढ़ी भाषा हवे वो लइका मन ला काफी सहायता मिलिस। बाद में कक्षा 3-4-5 में भी करीब करीब 20-25% पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला रखे गिरी से। ओखर बाद 9वीं-10वीं में घलो लगभग 20-25% हिस्सा छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित विषय वस्तु रखे गिरी से। लेकिन अभी 2 साल हो गए NCERT के पुस्तक मन ला एडाप्ट करे के खातिर। अब यह नंद आगे 3-4-5 में या 9वीं-10वीं के किताब मन में जिन छत्तीसगढ़ी के अंश रही से वो नंद आगे है। एक प्रयास और चलत है अभी छत्तीसगढ़ी पर केंद्रित करते हुए सहायक वाचन के निर्माण करे जाते हैं। तो संभवतः ये सत्र में प्रकाशित हो जाए या लागू हो जाए ऐसे उम्मीद करे जाते। कहना ये चाहता हूँ मैं कि अभी पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला जतका हिस्सेदारी होना रही से वतका संतोषजनक नहीं है। लेकिन प्रयास चलत है शासन स्तर पे। तकनीकी कुछ दिक्कत आवत है शायद एकर से थोड़ा से
1: आगे हो सकत। भाषा वैज्ञानिक बहुत बड़े हो हमारी हर रमेश चंद महरोत्रा जी उखर पंक्ति है अब सुनिहा दीदी हमारे एक ठन गोठ हो छत्तीसगढ़ ही कहत माँ उघरा सब लइकन के होठ हो। याने हम दूध भाषा जो कथन वो माता से जब शुरुआत हो वो यदि हो जाए तो जो अच्छा बात बताया आप मन कि स्कूल शिक्षा में ओह जुड़ गए हैं। हमारी यहाँ कहानी के बाद गद्य के बात करी तो उपन्यास में भी बहुत बढ़िया रचना चले आते उपन्यास कलम मणिराम साहू मितान चोवाराम बादल ये महाकाव्य भी लिखे हैं। चंद्रशेखर चकोर जी ये उपन्यास में है। रामनाथ साहू परदेशी राम वर्मा स्वयं सरला जी के मितान उपन्यास तो उपन्यास विपुल मात्रा में बात है। कहानी के बाद दमदार जुन विधा है तो मैं जानना चाहा सरला जी से कि छत्तीसगढ़ी में उपन्यास लेखन के द्वारा हमारी ये भाषा के कत का विस्तार होवत है।
2: मैं एक बात आप श्रोता करवाना चाहिए कि कहानी हर जीवन के एक अंश मात्र है और उपन्यास हर संपूर्ण जीवन है। एमा एक चीज और जोड़ना चाहिए कि वो हर समस्ति चेतना ला उद्घाटित करते मतलब आम आदमी के समस्या मन ला संग में लेके चलते तो हर उपन्यास कहा थे। ये विषय में जैसे आप अभिनाम ले वो परदेशी राम वर्मा के आवा ला जब हम देखथन तो आवा उपन्यास में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगे हुए जो इलाका है तो उन इलाका के जनजीवन के थोरकुन हमें दर्शन मिलते परंतु मूलतः आवा उपन्यास हर जगन्नाथपुरी पर आधारित और जनजीवन प्रभावित दिखते। एक आगू हम चलत हन तो सन 2006 में एक उपन्यास आईस माटी के मितान वो उपन्यास और आईस तब छत्तीसगढ़ बने के पर प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई से वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के का प्रभाव समाज में पड़ीस जगह जगह ग्राम पंचायत मन में महिला मन के पढ़े लिखे बर रात्रि पाठशाला लड़की मन के कन्याशाला स्कूल और अटल सड़क योजना के द्वारा गांव गांव ला सड़क ले जोड़ना और एकर अलावा भी जैसे ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत गुड़ी के गोठ ला चौपाल से लेकर के साहित्य तक पहुंचाए के काम ए समय होइस। ऐसे समय में जब राज्य के चहुमुखी विकास होत रही से तो ये विकास ला के धारा ला आम जनजीवन से जोड़ते हुए और गड़रिया कथरी सिलवैया डंगचघा ए मन ला के जीवन ला प्रदर्शित करते हुए उपन्यास आईस तेकरे बर वो उपन्यास के नाम पड़ीस माटी के मितान। अब आओ आगे चलिन 10 साल आओ आगे चलिन तो एक नाम अभी आप ले रामनाथ साहू। रामनाथ साहू के उपन्यास है पथरा ले उठत आगी। ये उपन्यास हर गुफा मानव हर जे दिन पहली बार आगी के उपयोग देखिस सीखिस नहीं देखिस वहाँ से लेकर के आज माचिस के डिबिया में बंद आगी तक चूल्हा बारे के झंझट ले मुक्ति पा करके गैस सिलेंडर तक जो

0: परिवर्तन समाज में आइस और माई लोगन मन ला चूल्हा चौका के झंझट ले उबर के पढ़े लिखे के जौन समय मिलिस समाज हर माई लोगन मन के शिक्षा ऊपर जौन ध्यान दिस यह बहुत बढ़िया ढंग से इतिहास और के संगे संग सभ्यता और संस्कृति के विकास र प्रदर्शित करत उपन्यास है ओकर नाम है पथरा ले उठत आगी एहर बहुत सशक्त उपन्यास है रामनाथ साहू के।
1: जैसे स्कूल शिक्षा के बात हो इस हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में भी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में होए चाहे शोध कार्य के रूप में है हमार राजभाषा छत्तीसगढ़ी के का स्थिति है रघु जी?
2: उच्च शिक्षा में घलोक छत्तीसगढ़ी पर काफ़ी कुछ हो है जैसे स्नातकोत्तर में एमए में छत्तीसगढ़ी साहित्य भी रखे गए है ओखर बाद सबसे जिन बढ़िया काम उच्च शिक्षा में जिन हुआ थे विश्वविद्यालयीन स्तर पे महाविद्यालयीन स्तर पे भाखा ला केंद्रित करते हुए लघु शोध क्रियात्

0: उच्च शिक्षा में घलोक छत्तीसगढ़ी पर काफ़ी कुछ हुआ है, जैसे स्नातकोत्तर में एमए में छत्तीसगढ़ी साहित्य लभी रखे गए है। ओखर बाद सबसे जिन बढ़िया काम उच्च शिक्षा में जिन हुआ थे विश्वविद्यालयीन स्तर पे महाविद्यालयीन स्तर पे, भाखा ला केंद्रित करते हुए लघु शोध क्रियात्मक शोध और शोध पीएचडी के इमा छत्तीसगढ़ी के अलग अलग आयाम ला स्पर्श करते हुए बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। बस मोला एक ठन मने इमा लगते विषय है कि साहित्य ला केंद्रित तो हुआ थे, अब्बड़ अकन काम हुआ थे साहित्य ला केंद्रित हुए, भाखा ला केंद्रित करते हुए ये काम मल्ला यदि केंद्रित करे जाए तो औ हमार भाषा समृद्ध हो ही, ऐसे मोर मानना है।
1: हाँ, जैसे बताए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में वहाँ एमए के स्वतंत्र जब पढ़ाई होते तो भाषा विज्ञान है
0: जी।
1: पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, एक दो यूनिवर्सिटी में और वैष्णव चलत है
0: जी।
1: दूसरिया बात पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में तो भाषा लेके चलत है, पर दूसर जगह जहाँ साहित्य लेके चलत है तो ओमा एक दो पाठ एकाग दो अंश भाषा ला भी लेके प्रयास होते, पर जो आप जैसे कहा था वो हो ही चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जैसे अभी एक शोध कार्य पूरा होते इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी के खंड काव्य, वो मतलब कहानी पर होते 2000 के बाद वाले खंड काव्य में जब हो है तो जैसे मनीलाल कटकवार के नागेश्वर कन्या ये 2002 की ना, मेहता राम साहू के रतन बपरी, डॉक्टर प्रभंजन शास्त्री, डॉक्टर पंच राम सोनी, हरि ठाकुर सहित वीर नारायण सिंह, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, अमर चिन्हारी, ये खंड काव्यकर गणेश यदु, भूमकाल, बुधराम यादव, हेमनाथ यदु, कपिलनाथ कश्यप, डॉक्टर दशरथ लाल निषाद, तीमन खंड काव्य की जो रचना करे है तो ओमा अच्छा ढंग से वो भाषा है। मैं जीवन यदि सुशील कुमार यदु जी के रचना एक पढ़त रहे हूँ ओमा छत्तीसगढ़ के अमर सेनानी करके, तो ओखर जो मैं एक पढ़े और रचना तो ओमा लगीस के भाषा ला बढ़िया अच्छा अतका ढंग से रखे है कि हिंदी और दूसर भाषा के रचना के टक्कर से कम नहीं है, ओखर मुकाबला के है। यहू याद रखबे भुलाझन तो जाबे, कफन बांध के मुड़ का टायन कभू हम, हो इसका के भिनसा रहा पायन न पायन, लहू के तो लाली वो गायन कभू हम, कोनो जानिन पहचानिन एकरो न मतलब, वतन गीत मस्ती म गायन कभू हम। शहीदी लहू एक दिन सिर चढ़ के कही कि दाहकत अंगारा धध कायन कभू हम, कफन बांध के मूड़ कटायन कभू हम। तो कोनो भाषा के आप स्वतंत्रता सेना एक पंक्ति के मुकाबले हम खड़ा कर सकत हो, तो भाषा में वो जोन मार्दव चाहिए, जोन ओज चाहिए, जोन अर्थ गंभीरता चाहिए तो छत्तीसगढ़ी में है, पर ओला रचना करैया मन केवल दीदी अक्सर कथे लिख के रख देम काम नहीं चलाए। एक तुलसीदास जी जैसे और जायसी जैसे सामर्थ्यवान कबील पा के अवधि दंदनात ऊपर चढ़ गए, सूरदास जी से कबील पा के ब्रजभाषा कहाँ पहुंच गए, तो मात्रा नहीं गुणवत्ता पे ध्यान होना चाहिए। तो एक दमदार हमारे यहाँ एक ठन विधा है और ओमा बढ़िया रचना आते छत्तीसगढ़ी निबंध मा नाटक मा इखर कैसे बढ़िया प्रयोग होते और का आशाजनक है। आदरणीय सरला जी में प्रकाश डाली।
2: आज हम जो चर्चा कर रहे छत्तीसगढ़ी के 25 साल, बढ़िया विषय बहुत बढ़िया है। आप मन अभी अभी डॉक्टर राजन यादव से सुशील यदु के कविता के एक अंश ल सुने, आप मन ध्यान दे भाषा है कतका उदार हो गए है। कफन और भी एक छन उदाहरण रहे हैं, अन्य अन्य भाषा मन के शब्द मन ल बहुत उदारता पूर्वक आजकल हमन छत्तीसगढ़ी में निभात हैं। और एक सबसे बढ़िया उदाहरण यह निबंध में पड़ते, ओकर नाम है निबंध, जेकर कोई बंधन नहीं है तो भाषा के बंधन घलाह तो टूटिस ना। तो थोड़ी कन अपन मन ध्यान देबो एमेर कि भाषा के बंधन है टूटिस है। थोड़ी कन विषयांतर अगर नहीं हो बताना चाहिए हाँ, अभी मैं आकाशवाणी निकलत रहे तो मोर बाई है मोला कहिस गांव जात हूँ मैडम संडे के आऊँ, गाड़ी लेट नहीं रही तो टाइम में आ जाऊँ। ध्यान दे हो आप मन संडे के वह जाही और ट्रेन है लेट नहीं रही ना, ट्रेन लेट तो वह टाइम में पहुंच जाए। कठिन शब्द अंग्रेजी के।

0: हरे आज के छत्तीसगढ़ी। और मोर ये कहना है कि जौन भाषा हर जतके ज्यादा अन्य भाषा मन के शब्द मन ला आत्मसात कर ही अपन में मिला ही डरावा झन। अरे दूध में कतको पानी मिला रहे रही तो वह दूध है, पानी तो नहीं हो जाए। तो उसने छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी रही। दूसर एक बात, आज के निबंध जौन लिखे जात है तो उन निबंध मन ला पढ़ के हमन ला ये मालूम होत है कि हमन ये छत्तीसगढ़ी के 25 साल में हमन सबसे बड़े काम जौन करे हैं, हमन 52 अक्षर ला शहर अपना ले हैं। आज हमार भाषा में, हमार लेखन में, हमार बोली बतरा में हमन 52 अक्षर के प्रयोग करत हन। एक बात आओ ध्यान दिन ना भाई कि हमार छत्तीसगढ़ी की लिपि है तो देवनागरी चेना जौन देवनागरी संस्कृत और हिंदी के है। तो जब हम हिंदी और संस्कृत के देवनागरी ला अपना लेन, 52 अक्षर ला अपना लेन, तो हमन रास्ता ला रद्दा काबर कहबो। एक बात, और दूसर बात, आज के निबंध है आज के समस्या मन ऊपर नहीं लिखी ही, आज के लड़का मन के ऊपर भविष्य के ऊपर चिंता नहीं करी कैसे बने। तभे तो सरला शर्मा एक ठन निबंध लिखते मोर करण फूल मोबाइल। काबर ये मोबाइल है सही में करण फूल हो गए है, और कतका कन एक्सीडेंट करवावत है लड़का मन के पढ़े लिखे में चेत नहीं, कि लड़का मन के ऊपर भविष्य के ऊपर चिंता नहीं करी कैसे बने। ये हर निबंध के बारे में हो। अब एकांकी और नाटक।
1: जी जी,
0: नाटक हर समय ज्यादा लेते, एकांकी है कम। तो एकांकी घलाव हर समाज ले चित्रित करते, नाटक घलाव हर समाज के समस्या मन ले चित्रित करते। आज के छत्तीसगढ़ी नाटक हर एक बहुत बड़े समस्या समेट के चले है। आप मन ला चलो बिलासपुर ले चलत हो नंद किशोर तिवारी के अंगना में, तो उन्हें एक क्षण लिखे है कहाँ गाँव आगे मोर कुआ। काबर हल्का पटवारी नंबर खेत नंबर वहाँ टोडर मल के जमाना ले चलत आवत है, भूमि संबंधी दस्तावेज मन के ओ सब मा पटवारी हर एक ठन जमीन ले बता दी सो मैं कुआं खना गिस, कुआं खनाए के पैसा ले लीन, कुआं कहाँ गवा गए जी, अरे जमीन ही नहीं है तो कुआं कहाँ रही। अतका बड़े व्यंग और अतका बड़े सामाजिक विसंगति ला अगर कोई एकांकी या नाटक हर दर्शात है तो मैं सोचता हूँ कि पिछले 25 साल में छत्तीसगढ़ी गद्य ला संभारे में व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोकाक्षर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे
1: थे। मैं पढ़ता हूँ बीच में
0: लोकाक्षर ग्रुप में आखर के अर्घ नाम के जो निबंध संग्रह है जे मां गद्य के 16 भाग संस्मरण निबंध कहानी सब वो 16 कला के एक एक दिन उदाहरण सहित प्रशिक्षण दे गए इस लोकाक्षर में। और यह छत्तीसगढ़ी गद्य के उज्ज्वल भविष्य ला देखा थे।
1: आप मन जो चिंता करे हो भाषा कैसे एक बारगी खोजेल पर जथे छत्तीसगढ़ी ला, हरि ठाकुर बढ़िया बात करे हैं। छत्तीसगढ़ी कविता नाम कुंकर कविता है धान के कटोरा संग्रह में, भाषा हा सर्वन सही होते जब कांवर लब उतार के यति वती होते, तहाँ ले शब्द भेदी बान हा हर लेते वो कर प्राण ला, शब्द भेदी बान ले अपन भाषा ला बचाए बर होए त खांध ले कांवर ला उतारो झन, बोहे रहो औ काल खंड ला खंड खंड करके रेंगते रहो, सजग रहिल पढ़ी। हमन देखे हन के अब राजभाषा बन गए छत्तीसगढ़ी, पर सरकारी कार्यालय मन मा ऑफिस मन मा बोलचाल के रूप मा छत्तीसगढ़ी भाषा हमार गोठ बात मा कतका प्रयोग मा आथे। डॉक्टर रघु जी,
2: एकर चर्चा शुरू करे पहली मैं अभी थोड़ी देर पहली दीदी है जिन उदाहरण दिस भाषा हाँ, के हाँ, प्रयोग के संबंध में
1: हाँ,
2: वही चीज ला महू है बहुत दिन से निहारा था जाना था मैं हूँ। एक बार हमार साथी मन खैरागढ़ डाइट के हमार साथी मन एक लघु शोध करीन और भाखा के एक कतका का स्थिति है एकर बारे में चर्चा करके मने मन शोध लघु शोध करी नुमा, उमा राह चलने वाले मन से, सब्जी बेचैया मन से, रिक्शा चलैया से सबसे बात करीन। और उमा दीदी जैन उदाहरण दीस ना वही स्थिति रही से 1500 शब्द में करीब करीब 450 शब्द उमन अंग्रेजी शब्द मन के उपयोग करते स्वाभाविक रूप से, ये स्थिति रही से।

0: तो अभी जिन आप जानना चाहत हो प्रश्न हो इसकी शासकीय कार्यालय मन में दैनिक वार्तालाप मन में का स्थिति है, ये है बहुत संतोषजनक तो नहीं है। ये है ऐसे चीजें मातृभाषा या हमार भाकल स्वतः यदि हम प्रयोग नहीं करबो संवाद में तो दूसरा आदमी है वो कहाँ ले सुनी जानी।
1: हाँ, अपन बोली तो, भाषा में हाँ, गर्व तो करना चाहिए,
0: करना
1: तो,
0: चाहिए वो कार्यालय मन में जावे तो हिंदी हो अंग्रेजी
1: नहीं। मैं तो लड़का मतलब विश्वविद्यालय में पढ़ात रहता हूँ तो कथो कोई विषय पूछता हूँ प्रश्न छत्तीसगढ़ी में बोल पावे तो छत्तीसगढ़ी में बोल, या जौन प्रांत ले आए तो भाषा में बोल, हिंदी में नहीं आए तो मैं बोल बोल तो
0: नहीं।
1: तो ये उत्साह वर्धन करना चाहिए। और यदि हम जानत हन छत्तीसगढ़ी तो सामने वाले छत्तीसगढ़ी भाषा भाषी तुम्हर से बात करना चाहिए। भाषा ला पोठ करेल हे तो गद्य के एक से एक रचना आना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा लिखे कविता जाते। तो अभी जो छंदोबद्ध रचना करत हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द के प्रयोग होते, तो हमारे जो नवा कवि जी घर चर्चा करत रही हैं दीदी मन कि डॉक्टर सेवाराम पांडे जी, प्रभंजन शास्त्री जी, ये मैं 2000 के बाद के रचनाकार मन रचना जो आए उखर अनुसार बताता हूँ। मणिराम साहू मितान महाकाव्य ही खर, रामेश्वर शर्मा, बुधराम यादव, मणि मनेश्वर, डॉक्टर पीसी लाल यादव, धनेश्वरी गुल, आशा देशमुख, संगीता वर्मा, राम कुमार चंद्रवंशी, बलदाऊ साहू, चंद्रशेखर यादव, बंधु राजेश्वर खरे, चोवाराम बादल, भगत सिंह सोनी, संत राम देशमुख, राजन प्रसाद सिन्हा, रमेश सोनी, पंचराम सोनी और सुखदेव सिंह, डुमन लाल भाई, डॉक्टर रमा कांजी, पुरुषोत्तम ठेठवार, राजकुमार चौधरी, शशिभूषण, अजय अमृतांश, मणि मनेश्वर, त्रुपति साहू, विजेंद्र कुमार, अशोक पटेल, उर्मिला शुक्ल, ऐसे बहुत हमारे युवा जो रचनाकार हैं, स्थापित रचनाकार है, उखर रचना अब आते है। तो कविता के संग संग गद्य की ओर भी आगे आए। मैं आपसे दीदी एक प्रश्न करी हूँ कि आप मन संगोष्ठी सभा सोसाइटी में बहुत आज जात रहा, तो संगोष्ठी सम्मेलन और दूसर साहित्यिक आयोजन में छत्तीसगढ़ी के कतका भागीदारी होते है?
2: छत्तीसगढ़ी के भागीदारी में मोला कोई संशय नहीं है
1: जी,
2: बहुत हुआ थे, पर वही मैं पहली कहे ना कि कविता के क्षेत्र में हुआ थे। अभी कविता में का हुआ थे कि लोगन करा अतका समय नहीं है कवि सम्मेलन रात भर जाग के सुने के, उन मोबाइल में मगन है, उन आउ कुछ मगन। और दूसर बात कि कविता में छंदबद्ध रचना पढ़ाइया मन के संख्या क्रमशः कम हो जात है, सबो जन लक्ष्मण मस्तूरिया नहीं हो भाई
1: जी जी जी।
2: और तहत में पढ़ाइया जवन कवि मन है, कवि कवियत्री मन है, ओ मन जनता के श्रुति मधुर शब्द दे ही नहीं पावे, काबर के उनकर पास लय और उनकर अभाव हो जाते। तीसरा जो सबसे जरूरी बात जो आ गए है, अभी छत्तीसगढ़ी के 25 साल ला देखत खानी हमन ला एहू बात ऊपर ध्यान रखना पड़ी कि आज के जो कवि है तो उन्हें सोशल मीडिया कति मुड़ गए है
1: जी जी।
2: आज वो कवि है व्हाट्सएप मा, फेसबुक मा, इंस्टाग्राम मा, तब रील बना के, तब अपन यूट्यूब मा अपन कविता मन ला पढ़ के सुना के प्रचार प्रसार कर ले थे। दूसर बात, छत्तीसगढ़ी कविता सुनैया रात रात भर जाग के ओमन के अभाव गांव में भी देखे बर मिला थे, तो ओकर कारण भी हमन ये देखा थन कवि सम्मेलन मन के आयोजन में थोड़ा कन कमी आई से। दूसर एक कारण औ मोला लगत है कि ये जोन अभी सोशल मीडिया में जो हमन प्रस्तुत करत हन चाहे छत्तीसगढ़ी गद्य हो पन, तो एहू है तो एक क्षण छत्तीसगढ़ी के बहुत बड़े सुखद पक्ष है न भाई।
1: विशेषकर हमन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हाँ हमन देखे हन कि हमार सांस्कृतिक कार्यक्रम होइस, लोक उत्सव होइस, ओमा तो बढ़िया प्रभाव पड़ी से। नंद कुमार साहू जी राम कथा के माध्यम से बहुत बड़े काम करे, तो लोकाक्षर के जब आप नाम करें नंद किशोर तिवारी स्थापित अखबार मन तको आजकल हफ्ता में एक ठन पेपर एक पन्ना जरूर छत्तीसगढ़ी का छापत हैं। तो हमन आशा करत हन कि छत्तीसगढ़ी भाषा है विकास के पथ में बने आगे बढ़त हैं। ये 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा की जब हम बात करी तो हमन आशा के अनुकूल चलत हन, अपन पाँव जमात जाते। और अंत में मैं यही फिर कही हूँ, आप मन बढ़िया बताओ जौन जौन दिशा में छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार हो सकत है, काम करे जा सकत है, फिर वही हमार बहुत बढ़िया कवि हरी ठाकुर की बात लेके

0: कि अपन भाषा है बाँचे रही तो हमार पहचान है घलो बाँचे रही, नहीं तो हमू मन कचरा में मिझरा जाबो, जर जाबो, भूंजा जाबो और एक दिन राख बन के सिरा जाबो। लोकमान्य तिलक रही से कि भाषा में स्वतंत्रता के बीज होते, तो अपन भाषा ला बचाए रही, बनाए रखी और बढ़िया प्रयास करी। आप दोनों जन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया विचार आप मन रखे हो, धन्यवाद।
1: 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाखा ये विषय में अभी अपन गोट बात सुनत रहा और गोट बात में भाग लेवत रहीन श्रीमती सरला शर्मा, डॉक्टर राजन यादव और डॉक्टर बी रघु कुमार। अब ये कार्यक्रम के संचालन करत रहीन डॉक्टर राजन यादव। अब एक संग आज के ये कार्यक्रम ले मोला यह विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है रंग तरंग में लघु नाटिका बोर मत करो। लेखक हैं श्री उमेश कुमार सोनी और प्रस्तुतकर्ता हैं समीर शुक्ला।

0: सीन है, सिर्फ दो कमरे का ये मकान जगह जगह से टूटा फूटा, ना रंग ना रोगन, और कहते हो ये घर बहुत हसीन है।
1: नेहल नेहल नेहल, अरे क्या हो गया है तुम्हें सुबह सुबह?
0: सही तो कह रही हूँ, एक तो ऐसा टूटा फूटा पुराना मकान, उस पर खड़ूस मकान मालिक किराया दिनों दिन बढ़ाता जाएगा, लेकिन मरम्मत पर एक पैसा तो खर्च कर दे।
1: अरे नेहल क्या करें, किराए का मकान है भाई, और तुम तो जानती हो इतने किराए पर अच्छा मकान नहीं मिल सकता।
0: फिर भी?
1: अरे फिर भी क्या, हम कर भी क्या सकते हैं?
0: अपना घर क्यों नहीं बनवा लेते?
1: ऐ?
0: जैसा भी होगा इससे तो अच्छा ही रहेगा।
1: अरे तुम तो जानती हो नेहल, सारी जमा पूंजी खर्च करके बड़ी मुश्किल से हम जमीन खरीद सके, अब मकान बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? इस तनख्वाह में घर चल जाता है बस।
0: तो कहीं से फाइनेंस करवा लो।
1: वो इतना आसान नहीं है नेहल, जितना तुम समझती हो।
0: सुनो जी, तुम्हारे दफ्तर से भी तो मकान बनाने के लिए लोन मिलता होगा।
1: अरे हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं आज ही लोन के लिए अप्लाई करता हूँ।
0: इसीलिए कहती हूँ मेरी सलाह लेने की आदत डालो।
1: जो आज्ञा देवी जी।
2: हाँ तो मिस्टर विनय, बताइए क्या समस्या है?
1: जी सर, क्या है ना,

0: मैं मकान बनवाना चाहता हूँ।
1: बहुत नेक विचार है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
0: जी मुझे हाउस बिल्डिंग एडवांस लेना था।
1: अच्छा अच्छा, बिल्कुल ले लो जी।
0: इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, आप इस बारे में सब जानते हैं, बस मेरा आवेदन बनवा कर भेज दीजिएगा।
1: और चिंता मत करो पुत्र, आज ही फार्म भर कर भेज देता हूँ, बस 2 महीने में मंजूरी आ जाएगी।
0: मैं आपका एहसान मंद रहूंगा बड़े बाबू।
1: इसमें एहसान कैसा पुत्र, ये तो मेरा फर्ज है, बस मकान के उद्घाटन का पीटा मेरे हाथ से ही कटवा देना।
0: जी जी जी जी, बहुत अच्छे, इसी बहाने आपका आशीर्वाद मिल जाएगा।
1: हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो।
2: एक बंगला बने न्यारा, बंगला बने न्यारा।
3: क्या बात है विनय, मकान छोड़ अब बंगले के सपने देखने लगे हो।
2: अरे निहल, हमारा छोटा सा घर भी किसी बंगले से कम नहीं होगा। हाँ?
3: बस एक बार घर बन जाए।
2: बस बन गया समझो। ये देखो,
3: हाँ?
2: मकान के लिए लोन की स्वीकृति का ऑर्डर।
3: सच?
2: हाँ।
3: लेकिन इतनी जल्दी?
2: अरे सब बड़े बाबू तिवारी जी की कृपा है, उन्होंने अपनी पहचान के जरिए तुरंत लोन पास करवा दिया, बस 1-2 दिन में पैसा मिल जाएगा।
3: भगवान तू बहुत मेहरबान है।
2: अरे वो तो ठीक है निहल, अब एक और समस्या है भाई।
3: अब और क्या परेशानी है?
2: मकान के बारे में हमें कोई जानकारी तो है नहीं, बनवाएंगे कैसे?
3: देखो किसी अच्छे आर्किटेक्ट से एक सुंदर सा नक्शा बनवा लो, बस।
2: वो तो मुझे भी पता है, लेकिन नक्शा बन जाने से मकान तो नहीं बन जाता ना। अरे उसकी देख रेख, मिस्त्री, लाइट आदि, उसके बारे में कुछ भी तो पता नहीं ना मुझे।
3: देखो विनय, अपने वो मधुकर भैया है ना,
2: हाँ?
3: तुम्हारे बचपन के मित्र, वो अपना मकान बनवा चुके हैं, मधुकर भैया को अनुभव हो चुका है, तुम उनसे सलाह क्यों नहीं लेते?
2: हाँ ये ठीक रहेगा, इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा।
3: फिर नेक काम में देरी क्यों, बस चाय पियो और जाओ मधुकर भैया के पास।
2: मधु, ओ मधुकर, अरे कहाँ है भाई मधु?
4: अरे विनय तू, वो भी इस समय?
2: क्यों भाई, क्या तेरे घर मिलने आने के लिए कोई समय निर्धारित है क्या?
4: अरे अरे नहीं नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, वो तो बस यूं ही। आ आ चल अंदर चल। आ उषा, विनय आया है, थोड़ी थोड़ी चाय ला दो।
2: यार मधु, मैं एक खास काम से आया हूँ तेरे पास।
4: तू बिना झिझक बोल, क्या काम है?
2: मैं मकान बनवाने की सोच रहा हूँ यार।
4: क्या बात है यार, बड़ी खुशी की खबर सुना है तूने।
2: लेकिन समस्या यह है मेरे भाई कि मुझे मकान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उसी सिलसिले में तुझसे सलाह लेने आया हूँ।
4: तो पूछ ना, क्या पूछना चाहता है?
2: यही कि मकान कैसे ढंग का बनवाऊं, उसके लिए मटेरियल, मिस्त्री की व्यवस्था कैसे करूंगा यार।
5: भाई साहब नमस्ते।
2: नमस्ते भाभी जी।
5: बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आप मकान बनवा रहे हैं।
2: जी जी, सब भगवान का आशीर्वाद है भाभी।
4: विनय, सबसे पहले तो तू मकान का नक्शा बनवा।
2: अच्छा,
4: मेरे मकान का नक्शा जिसने बनाया था ना, वो बहुत अच्छा इंजीनियर है, मैं उससे बात करवा दूंगा तेरी।
2: और मिस्त्री?
4: अरे ये घर जिसने बनाया है ना, उसी मिस्त्री से बनवा लेना, काम अच्छा करता है।
2: चलो ये भी ठीक है, अब रहा मटेरियल, वो?
4: अरे यार 2-4 जगह पता कर लेना, जो अच्छी चीज सही दाम पर देगा उसी से ले लेना, और कुछ?
2: तू यार समय समय पर देखने आएगा कि नहीं?
4: अरे तू नहीं बुलाएगा तब भी आऊंगा।
2: और पानी के लिए क्या इंतजाम?
4: अरे यार बोर मत कर।
2: अच्छा बेटा, तो मैं तुझे बोर कर रहा हूँ?
4: अरे यार विनय, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो तू समझ रहा है।
2: मैं सब समझ गया मेरे यार, ये दोस्ती का ठोंग अपने पास रख, मैं चला।
4: अरे अरे विनय, विनय, अरे सुन तो यार, अरे विनय सुन तो।
5: अरे क्या हुआ विनय भैया, इस तरह गुस्से में क्यों चले गए?
4: वही तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है।
5: अरे पता करो, आखिर तुम्हारी दोस्ती का सवाल है।
4: देखता हूँ।

0: आज बड़ी जल्दी आ गए।
1: तो क्या सारी रात वहीं बैठा रहूं?
0: अब मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था।
1: अब तुम मुझे अर्थ अनर्थ मत समझाओ।
0: ये चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है और दिमाग का पारा क्यों चढ़ा हुआ है?
1: कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
0: देखो विनय, मुझसे मत छुपाओ, क्या बात है साफ साफ बताओ।
1: वो अपने आप को समझता क्या है? क्या उसके बिना मकान नहीं बन सकता?
0: अरे अरे अरे, इतना उखड़ क्यों रहे हो? आखिर क्या कह दिया मधु भैया ने?
1: तुम्हारे कहने पर ही मैं उसके पास गया था, इसलिए वो भाव खा रहा था।
0: अरे बताओगे भी, सही बात क्या है?
1: मैं उससे मकान के लिए सलाह लेने गया था।
0: हाँ।
1: मुझसे कहता है बोर मत करो।
0: लेकिन मधु भैया ऐसा कैसे कह सकते हैं?
1: तो क्या मैं कह सकता हूँ या फिर कोई मनगढ़ंत बात कह रहा हूँ?
0: तुमने ठीक से सुना था, मधु भैया ने ऐसा ही कहा था?
1: श्रीमती जी, मेरे कान बहुत तेज हैं, उसने ऐसा ही कहा था। एहसान फरामोश कहीं का, मेरे सारे एहसान भूल गया।
0: ये एहसान वाली बातें क्यों बीच में ला रहे हो?
1: बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, उसके कितने काम किए मैंने, भूल गया? और तो और, जब उसे खून की जरूरत पड़ी थी तो मैंने अपना खून तक उसे दिया है। ये खी खी खी की मत कर, क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें?
0: विनय, विश्वास हो भी तो भला कैसे, अपना शरीर देखे हो, लगता है इसमें कहीं खून है और तुम खून देने की बात करते हो।
1: अच्छा छोड़ो इन सब बातों को और तुम जाओ यहाँ से।
0: बस मैं भी यही चाहती हूँ, तुम उन सब बातों को भूल कर आराम करो, मकान बनना है वो किसी न किसी तरह बन जाएगा। आज धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, ना तो विनय ने मधु भैया का जिक्र किया और ना ही मधु भैया आए।
1: नेहल, हाँ, मैं जा रहा हूँ।
0: ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना।
1: ठीक है।
0: इस तरह नहीं चलेगा, इन दोनों दोस्तों को मिलाना बहुत जरूरी है। जरा सी बात पर इस तरह की नाराजगी भला किस काम की। हाँ, उषा भाभी को फोन करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ उषा भाभी, नमस्ते। सब ठीक है भाभी? हाँ हाँ। अब देखो ना भाभी, ये दोनों बचपन के इतने अच्छे दोस्त हैं, किस तरह मुंह फुलाए बैठे हैं। तो क्या बरसों के संबंध इतनी आसानी से खत्म हो जाते हैं? नहीं नहीं, इन दोनों को मिलवाना जरूरी है। देखो मधु भैया तुम्हारी किसी बात को नहीं टालते हैं, तुम शाम को उन्हें यहाँ ले आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है भाभी, रखती हूँ, बाकी शाम को। ठीक है विनय। ओ विनय, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ।
1: क्यों, कोई खास बात है क्या?
0: नहीं, बस शाम होते ही तुम्हारी याद आने लगती है।
1: लो, ये न जाने किसकी याद आ गई।
0: तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अरे उषा भाभी, मधु भैया, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। विनय, देखो तो कौन आया है।
1: हाँ देख लिया।
0: ये क्या, घर आए मेहमान से इस तरह बर्ताव करते हैं?
1: कहिए मिस्टर मधुकर जी, मेरे घर आने से आप बोर तो नहीं हो रहे?
0: अच्छा, तो अब तक आप भी नाराज हैं? और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। विनय भैया, आप ही बताओ क्यों नाराज हो उनसे?
1: भाभी जी, मैं उस दिन इनसे मकान बनवाने के लिए सलाह लेने गया था, पूछिए इन श्रीमान ने क्या कहा था।
2: अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था।
1: अच्छा, फिर वो यार बोर मत कर किसने कहा था?
2: कब?
1: जब मैंने पूछा था पानी के लिए क्या इंतजाम रहेगा तब।
2: अरे भाई, तुमने पूरी बात सुनी कहां थी, बस मुंह फुलाए चले गए और तब से ये गुब्बारा उसी तरह फूला हुआ है।
1: और क्या करता।
2: अरे सुनो यार, मैं समझाता हूं तुम्हें। जब तुमने पानी के इंतजाम की बात की थी ना, तब मैं कह रहा था बोर मत करना, यानी मकान में बोरिंग मत करना। तुम्हारे प्लॉट से लगी निगम की पाइपलाइन गई ही है, उससे नल कनेक्शन ले लेना। लेकिन तुमने पूरी बात कहने ही नहीं दी।
1: अच्छा ऐसा था क्या यार?
2: और नहीं तो क्या, भला दोस्त की बात पर या उसे सलाह देकर कोई दोस्त बोर होता है?
1: लेकिन अब तू बोर कर रहा है यार।
2: क्या क्या कह रहा है तू?
1: और नहीं तो क्या, इतने दिनों बाद मिले हैं,

0: चाहिए, चलो कहीं डिनर लेते हैं, और तू बातें बनाकर बोर कर रहा है।
1: ऐसी बात है तो तुरंत चलो, लेकिन अंदर जाकर तैयार होते बैठ मत जाना, यहाँ सबको बोर मत करना।

अभी आप सुन रहे थे रंग तरंग में लघु नाटिका बोर मत करो। आलेख श्री उमेश कुमार सोनी का था, प्रस्तुतकर्ता थे समीर शुक्ल, प्रतिभागी कलाकार थे दीपक हटवार, के परेश, मधु साहू और सुमिता रॉय बर्मन। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। श्रोताओं, ज़ाइलोफोन लकड़ी की पट्टियों से बना एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र होता है। इसमें अलग अलग लंबाई की लकड़ी की पट्टियां होती हैं, जिन्हें छोटे मैलेट से मारकर संगीतमय स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें पियानो की तरह पट्टियां व्यवस्थित होती हैं। छोटी पट्टियां ऊंची और लंबी पट्टियां नीची ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इन्हें बजाने के लिए कठोर या नरम रबर, नायलॉन, प्लास्टिक या लकड़ी के सिरों वाली स्टिक का प्रयोग किया जाता है। ज़ाइलोफोन का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसकी जड़ें एशिया और अफ्रीका के पारंपरिक संगीत से जुड़ी हैं। 16वीं सदी में यूरोप में इसका पहला विस्तृत जिक्र मिलता है। तब से लेकर आज तक ये दुनिया भर के संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हमारे फिल्मी गीतों में इसका बखूबी प्रयोग हुआ है। तो चलिए कुछ ऐसे ही गीत सुने जिसमें ज़ाइलोफोन की मीठी धुन बजी है। फिल्म हम दोनों के इस गीत की शुरुआत में इसकी धुन सुनी जा सकती है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म हम दोनों का गीत। गीत साहिल लुधियानवी का था और संगीत था जयदेव का।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लव इन टोक्यो का गीत अभी आपने सुना। गीत हसरत जयपुरी का था और संगीत था शंकर जयकिशन का।

0: ओम शांति ओम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल के, गीत जावेद अख्तर का था और संगीत था विशाल शेखर का।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म मन पसंद का गीत। गीत अमित खन्ना का था, संगीत था राजेश रोशन का। लीजिए अब सुनिए फिल्म अनुभव का गीत, आवाज गीता दत्त की, गीत गुलजार का, संगीत कानू रॉय का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं मदन मेहर और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये पारंपरिक जस गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लीजिए अब सुनिए रेखा दौड़िया के स्वर में ये पारंपरिक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे मदन मेहर और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश के पात्र किसानों को इस वर्ष भी पिछले खरीफ सीजन के बराबर यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पहले लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार यूरिया का वितरण किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तो किसानों को एक मुश्त यूरिया दिया जाएगा। वहीं स्टॉक सीमित होने की स्थिति में उपलब्ध मात्रा पहले वितरित की जाएगी और शेष यूरिया बाद में स्टॉक पहुंचते ही संबंधित किसान को उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि डीएपी उर्वरक के वितरण की पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी, जबकि संशोधित निर्देश केवल यूरिया वितरण के लिए प्रभावी होंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। इससे पहले राज्यपाल श्री डेका ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं। यह सूची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडे ने जारी की है। हेमलता चंद्राकर को रायपुर संभाग का प्रभारी और सुषमा खलको को सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार शीतल नायक को दुर्ग संभाग का प्रभारी और वर्षा सिंह को सहप्रभारी, रंजिता रंधावा को बस्तर संभाग का प्रभारी और जानकी कोरसा को सहप्रभारी, फुलेश्वरी पैकरा को बिलासपुर संभाग का प्रभारी और किरण साहू को सहप्रभारी, किरण मरकाम को सरगुजा संभाग का प्रभारी और रजनी तिवारी को सहप्रभारी बनाया गया है। सरगुजा जिले में कल आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि

0: एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से पुरी के लिए चलेगी। वापसी में यह ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से गोंदिया के लिए रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वहीं हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ से इस वर्ष हज यात्रा पर गए सभी 813 हज यात्रियों की सकुशल स्वदेश वापसी हो गई है। राज्य हज कमेटी के अनुसार हाजियों का अंतिम जत्था कल मुंबई पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस वर्ष राज्य से 813 श्रद्धालु हज पर गए हुए थे। इनमें से 417 पुरुष और 396 महिलाएं शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

छत्तीसगढ़ धान की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के धान की बेहतरीन किस्में देश विदेश में विख्यात हैं। धान की हरी भरी फसल जब लहलहाती है तो ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ महतारी ने धानी चुनर ओढ़ ली हो। इसी दिलकश नजारे की वजह से ही तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। हरियाली से भरे पूरे छत्तीसगढ़ में पहले पारंपरिक ढंग से खेती होती थी, लेकिन अब यहाँ के किसान उन्नत तरीके से खेती करने लगे हैं। वैज्ञानिक खेती ने भरपूर उत्पादन के द्वार अवश्य खोले, लेकिन रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी को प्रदूषित कर दिया। कृषि वैज्ञानिकों ने इस

0: समस्या को गंभीरता से लिया और किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे असरदार उर्वरकों से परिचित कराया। कम खाद में ज्यादा उत्पादन के इस तरीके को किसानों ने हाथों हाथ लिया और इसे अपनाकर अपनी खेती को भरपूर मुनाफे के सौदे में बदल दिया। इस बारे में कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कृषि उत्पाद आयुक्त और सचिव सुशील शहला निगार का कहना है,
1: एक उर्वरक जो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए बेसल डोज के रूप में रूट के ग्रोथ के लिए और शुरुआती में वो डालते हैं, तो उसका वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पर यूरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो तीन चरणों में किसान यूज करते हैं, शुरू में भी करते हैं, फिर बीच में कुछ समय बाद करते हैं धान की बोनी के, किंतु डीएपी का उपयोग शुरू में ही करते हैं। डीएपी हमारे पास 35-36% है सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को मिला करके, तो डीएपी के विकल्प के रूप में एक हम नैनो डीएपी को ले रहे हैं जो तरल फॉर्म में रहता है। ये जो हम जिस खाद की बात करते हैं वो ग्रैन्युलर फॉर्म में रहता है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो। नैनो डीएपी जो है या नैनो यूरिया, वो जो है उसकी एफिशिएंसी अधिक होती है और इसका 500 लीटर एक बैग को रिप्लेस करता है। विगत वर्ष भी कुछ उठाव हुआ था और इस वर्ष हम लोग बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नैनो डीएपी का उपयोग करें ताकि वो जो ग्रैनुलर फॉर्म में जो कमी है उसका प्रतिस्थापन किया जा सके। सो इस तरीके से हम लोगों ने जिलेवार एक रणनीति बनाई है कि जहां पर जितना भंडारण है और जो जिले की कंजम्पशन है उसको प्रतिस्थापित किया जाए इन खादों से। इसके अतिरिक्त हम लोग बायो फर्टिलाइजर को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये चुनौती एक अवसर के रूप में भी सामने है, जो सस्टेनेबल कृषि की हम लोग बात करते हैं या भारत सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा है और पूर्व से ही हमारे राज्य में जैविक खेती मिशन भी चल रहा है राज्य पोषित योजना के रूप में। तो जो प्राकृतिक खेती मिशन है वो बिल्कुल परंपरागत पद्धति है और उसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। इन सारी चीजों को भी हमने क्लस्टर के फॉर्म में राज्य ने लिया हुआ है विगत वर्ष से। तो इस चुनौती को हमने किसानों से ये अपील की है कि हम इसको एक अवसर की तरह देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो मिट्टी है इतनी उपजाऊ है, इतना बेहतर यहाँ का क्लाइमेट है, तो हम क्यों ना सस्टेनेबल कृषि की ओर जाते हुए बायो फर्टिलाइजर का यूज करें और जो प्राकृतिक पद्धतियां हैं परंपरागत उनका भी उपयोग करें।

0: नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इफको द्वारा विकसित एक तरल उर्वरक हैं। ये किसानों के लिए एक सौगात भी हैं। पारंपरिक खाद यानी यूरिया और डीएपी के प्रभावी विकल्प के रूप में इससे किसानों को खाद के भारी भरकम बोरों से छुटकारा मिला है और अब वे छोटी छोटी बोतलों में बंद पोषक तत्वों के चमत्कार से खूब खुश हो रहे हैं। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को लाना, रखना और इस्तेमाल करना अब बेहद आसान जो हो गया है। नैनो डीएपी के इस्तेमाल के बारे में ग्राम पटेवा के किसान मोहन साहू ने बताया।
1: और अभी फिर डालवा है, मतलब अभी पीठ वाले स्प्रे में डालवा, लेकिन दोनों में भी बराबर सेम टू सेम है, मतलब चना में बहुत ज्यादा ग्रोथ है भी। तो नैनो डीपी से मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिला था। और पल साल जैसे मैं पता है ना करण भाव, जैसे बूट वाला चना है मोर, तो मोर चना पहली भी के मार्केट में, तो ये मोर चना 25 रुपए किलो बिके, सामने वाला के 20 रुपए, मतलब ये अंतर इसे, मतलब ऐसे फायदा इसे एक कर सकते। मैं कहा था कि मोर अनुभव के हिसाब से हर किसान मतलब नैनो डीपी नैनो यूरिया अपनाना चाहिए।

0: दरअसल नैनो यूरिया के तरल नाइट्रोजन उर्वरक हैं। ये पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और पत्तियों को बढ़ने में मदद करता है। पौधों के लिए पारंपरिक यूरिया सिर्फ 30 से 50 प्रतिशत तक ही उपयोगी होता है, जबकि नैनो यूरिया पौधों को 80 प्रतिशत तक पोषण देते हैं। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल दानेदार यूरिया के एक 45 किलोग्राम के बोरे के बराबर होती है। यही वजह है कि पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में नैनो उत्पाद काफी किफायती हैं।
1: इफको के उप महाप्रबंधक श्री दिनेश गांधी इस विषय में और जानकारी दे रहे हैं।
2: नैनो उर्वरक जो है वो अभी आज के खेती की नई तकनीक है, जिसमें हम नैनो तकनीक का इस्तेमाल करके जो हमारे दानेदार खाद है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम उसकी जो दक्षता है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे जो एक यूरिया का दाना है वो 1 से 2 मिलीमीटर का होता है, उसको हम नैनो तकनीक से 55,000 टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसका जो एक टुकड़ा है वो एक नैनो का कण होता है जो कि 50 से 100 नैनोमीटर का होता है, जिसका और इसकी जो क्षमता है वो 10 इसकी जो सतही क्षेत्रफल है वो 10,000 गुना अधिक होता है। तो इससे उसकी जो कार्य दक्षता है वो बढ़ जाती है। फिर ये नैनो पार्टिकल्स जब हम पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो पत्ती के माध्यम से उसमें जो स्टोमेटा होता है उससे पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां जाके वो अपना काम चालू करता है, चाहे वो नाइट्रोजन के कण हो या फास्फोरस के कण हो। तो ये जब पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे पौधे अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं और बाकी का जो नैनो जो उर्वरक है वो पौधे के अंदर रहता है, तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार से पौधे इसका इस्तेमाल कर पाते हैं और इसकी जो उपयोग दक्षता है वो 90% से अधिक होती है। जबकि जो दानेदार खाद है उसका दानेदार यूरिया का 25 से 30% हिस्सा ही पौधा उपयोग करता है तथा दानेदार डीएपी का 30 से 35% ही पौधा इस्तेमाल करता है, बाकी जो है या तो जमीन में पड़ा रहता है या पानी या हवा के साथ में वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नैनो यूरिया के इस्तेमाल से हम न सिर्फ हमारी जमीन को, पानी को और हवा को सुरक्षित करते हैं बल्कि हम अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित करते हैं। इसके अलावा ये जो नैनो उर्वरक है इसकी कीमतें जो हैं वो दानेदार उर्वरक से काफी कम है, किसानों के लागत में भी खेती की लागत में कमी आती है। इसके अलावा सरकार जो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर भारी भरकम अनुदान देती है वो भी इसमें बचत होती है सरकार की। इसका छिड़काव करना काफी आसान है, किसान भाई अगर कोई कीटनाशक दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं, अलग से उनको लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इफको जो है वो ड्रोन भी किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रही है जिसमें 10 लीटर पानी की जरूरत होती है एक एकड़ के लिए और 5 से 7 मिनट में वो जो आधा लीटर नैनो उर्वरक है उसका घोल बना के हम 5 से 7 मिनट में एक एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। तो काफी आसान है और इफको जो है इसको 300 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को चार्ज करती है उसको इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा जो है नैनो उर्वरक जो है अब आगे श्रृंखला के रूप में नैनो जिंक और नैनो कापर भी इफको लेके आई है, जिसको हम खेती में बेहतरी के लिए और अपने

0: फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रासायनिक उर्वरक है उसका बेहतर विकल्प के रूप में आया है और इसकी मात्रा को हम, इसके उपयोग से रासायनिक खाद की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। तो ये आज के युग का खाद है, इसका एक किसानों के लिए वरदान के रूप में आया है, क्योंकि अब जब रासायनिक खाद की हमको कमी हो पड़ी है, विदेशों से आयात कम हो पा रही है, उपलब्धता इसकी कम हो गई है, तो ऐसे में अगर हम नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी खेती को बचा सकते हैं, हम अपने फसल की गुणवत्ता को बचा सकते हैं, हम अपनी लागत को बचा सकते हैं और हम खेती को और बेहतर की ओर ले जा सकते हैं। नैनो डीएपी जो है उसको हम बीज उपचार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसके माध्यम से वो नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कण है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब बीज उसमें अंकुरण होता है और उसमें जब जड़ें बननी चालू होती है तो ये नैनो फास्फोरस कण उसी समय पौधे को प्राप्त होते हैं, उसकी जड़ों में पहुंच जाते हैं, तो उससे उसके जड़ के बढ़वार में मदद मिलती है, उसकी संख्या अधिक बढ़ती है और पौधा मजबूत बनता है। तो ये एक तरीके से ये नैनो उर्वरक जो है वो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसकी कंसे बढ़ाने में और उसकी उपज को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे अभी नैनो उर्वरक की बात हो रही इनकी लागत को लेके, तो ये जो नैनो उर्वरक है वास्तव में देखें अगर हम तो दानेदार जो उर्वरक हम लोग विदेशों से आयात करते हैं तो इसकी कीमतें जो है हमको डॉलर में देनी होती है, जो इसके जो भुगतान होते हैं, और इसकी कीमत जो होती है वो एक बोरी की, अगर यूरिया की बात करें तो इसकी कीमत आज के समय में 5,000 रुपए तक है, जबकि किसान भाइयों से सरकार जो है 267.50 रुपए ही चार्ज करती है, तो बाकी का जो राशि है वो भारत सरकार अनुदान के रूप में देती है। उसी तरीके से अगर हम डीएपी की बात करें तो एक बोरी डीएपी जो 50 किलो का होता है वो भी आज 5,000 से 6,000 रुपए उसकी लागत हो गई है, तो किसानों से 1,350 रुपए सरकार लेती है, बाकी उसका अनुदान के रूप में देती है। तो इस तरीके से 2,00,00,000 करोड़ रुपए सालाना जो है भारत सरकार रासायनिक उर्वरक के अनुदान के रूप में खर्च करती है, जबकि जो नैनो उर्वरक है उसी के बेहतर विकल्प के रूप में है। इसकी जो कीमतें हैं वो दानेदार खाद से भी कम है, जो नैनो यूरिया है आधा लीटर का बॉटल है वो उसकी एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसकी कीमत मात्र 225 रुपए है, जबकि नैनो डीएपी जो है उसके आधा लीटर की बॉटल जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है उसकी कीमत 600 रुपए है, जबकि इसके ऊपर भारत सरकार कोई अनुदान नहीं देता है, ये बिल्कुल अनुदान रहित है और सीधे किसानों को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से न सिर्फ किसान के स्तर पे इसकी लागतें कम है बल्कि भारत सरकार के ऊपर भी कोई बोझ नहीं पड़ता है, तो ये एकदम खेती के लिए बहुत ही लाभकारी उत्पाद है।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: एक तरल फास्फोरस और नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है, जिसे इफको ने विशेष रूप से पौधों की जड़ों के विकास और मजबूती के लिए तैयार किया है। ये फसल को शुरुआती दिनों में अच्छा पोषण प्रदान करता है, जिससे पौधे मजबूत होते हैं और उनकी शाखाओं में अच्छे दाने भरते हैं। नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की एक बोतल पारंपरिक डीएपी के 50 किलोग्राम बोरे के बराबर काम करती है। इसका मतलब किसान भाई परिवहन, भंडारण और छिड़काव के कई झंझटों से मुक्त हो जाते हैं।
1: मोर नाम ताराचंद साहू है, मैं ग्राम सोनेसिली के किसान हूँ और पिछले पूर्वज मन जैसन करत रहे वैसन खेती महू करत रहे, लेकिन पिछले साल से मुला अपन खुद के अनुभव कि मोर धान हाँ 5 एकड़ में बोरे हम मर गए। गांव के हैंड पंप जवाब दे दिस कि पानी के बहुत बिगड़ाल समस्या हुई। वो स्थिति में ये निर्मित हुई कि भविष्य में सोचो कि अगर हम तो आज पानी के मतलब उपलब्ध है, हमार आने वाला भविष्य जो हमार छोटे बच्चा है ओकर मन के बिना पानी के भविष्य कैसे निकल। तो ये में ना मैं अभी चना लगा हूँ, चना में नैनो डीएपी के पहली उपयोग करे मैं ओकर पहली नैनो डीपी का हर मोला मालूम ही नहीं रही से। 80% आदमी धान निबो है, दलहनी तिलहनी के उपयोग करे है और फसल है बहुत बढ़िया।

0: नैनो उर्वरकों के आसान इस्तेमाल की सलाह के लिए कृषि वैज्ञानिक हमेशा तैयार रहते हैं। बस किसानों को उन्हें ये बताना होता है कि वे कौन सी फसल ले रहे हैं। साथ ही ये जानना भी आवश्यक होता है कि किसान इनका उपयोग बुवाई के समय करना चाहते हैं या खड़ी फसल पर। आजकल छत्तीसगढ़ के किसान परिवर्तित फसलें भी ले रहे हैं, इसलिए दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भी नैनो उर्वरकों की सही मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिक आरएस राठौर कहते हैं,
1: ये जो नैनो तरल खाद आए हैं, मतलब नैनो तरल डीएपी और नैनो तरल यूरिया, ये तो नई तकनीक अभी तक की जो है, नैनो तकनीक जिसका कि हम विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है इसका, कि इसका आकार छोटा होता है लेकिन क्षमता ज्यादा होती है। तो उसी पद्धति पर या उसी तकनीक के अनुसार ये बनाया गया है नैनो तरल डीएपी। मैं देखने में तो मात्र आधा लीटर की बोतल, 500 ml की बोतल एक बोरी के लगभग बराबर काम करती है, तो ये इसमें अंतर है। वैसे ही यूरिया की भी 500 ml की बोतल आती है कि यूरिया का काम करती है। जिस प्रकार से यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, उसी प्रकार से इसे तरल यूरिया या नैनो यूरिया से भी नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन नैनो फॉर्म में मिलता है, जिसकी वजह से इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दानेदार खाद भी उपयोगी है और तरल भी उपयोगी है। दोनों के अलग अलग अंतर है कि हम जो दानेदार खाद का उपयोग करते हैं वो पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जमीन के माध्यम से करते हैं, कि हम या तो बोते समय जमीन में खाद देते हैं दानेदार डीएपी या एनपीके या सुपर फास्फेट जो भी खाद आते हैं उनको देते हैं, या हम बाद में खड़ी फसल में यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति खड़ी फसल में वो भी जमीन के माध्यम से करते हैं। लेकिन जो नैनो के तरल खाद हैं वो नैनो तकनीक हमारे पौधों पर पत्तियों के ऊपर छिड़काव के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं, और वो पत्तियों के माध्यम से जो पोषक तत्व इसके माध्यम से मिलते हैं वो पत्तियों के माध्यम से घोल में अवशोषित करती हैं पत्तियां, और वो पौधों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर में उनके में पौधों में प्रवाहित होते हैं, जिससे उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति होती। तो दोनों की कार्य पद्धति में अंतर है। एक समय वो था जब हमारे किसान भाई डीएपी एनपीके इन खादों का बहुत कम मात्रा में उपयोग करते थे, लेकिन चूंकि हमारे देश की आवश्यकता, समझें कि जब हम विदेशों से अन्न आयात किया जाता था तब हम लोगों का पेट भरती थी सरकार, तो धीरे धीरे उसमें खाद की एक प्रमुख भूमिका रही है उत्पादन बढ़ाने में। तो जब किसान भाइयों को, हमारे को ये समझ में आया कि खाद डालने से उत्पादन बढ़ सकता है, तो धीरे धीरे वो डालते डालते अब वो एक सीमा रेखा से कहीं ज्यादा खाद का उपयोग करने लगे हैं। तो अंतर ये है कि दोनों में कि खाद जो बोरी वाला खाद या दानेदार खाद आता है, वास्तविकता ये है कि हमारे देश की जितनी खपत है प्रतिवर्ष की वो हमारे देश में उसका उत्पादन उतना नहीं है। तो आज अगर हम यूरिया की बात करें तो लगभग 30-35% यूरिया हमारे पूरे देश की प्रतिवर्ष की खपत का विदेशों से आयात होता है, और अगर हम डीएपी की बात करें तो लगभग 60-65% हिस्सा जो है खपत का वो भी विदेशों से आयात, हम विदेशों के ऊपर निर्भर है। ये इनका अंतर। अगर हम बात करें अगर उर्वरक की, तो जो नैनो खाद है वो नवीनतम तकनीक है, दानेदार खाद है वो पुरानी पारंपरिक तकनीक चली आ रही है, उसमें कार्य क्षमता कम होती है, नैनो की ज्यादा होती है। अगर हम बात करें रखने की या उसको लाने ले जाने की, तो किसान भाइयों के लिए बहुत आसान है, एक तरफ आधा लीटर की बोतल और एक तरफ 50 किलो की बोरी, तो उसको वजन भी ज्यादा है, जगह भी ज्यादा चाहिए, गाड़ियों से ट्रकों में मालगाड़ियों में जो भर के आता है उसकी बहुत कम आवश्यकता होगी, और इसके साथ साथ हमारी

भारत सरकार जो है इस पे अनुदान भी देती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस अनुदान वाली मतलब बोरी को उपयोग करके और हमारे ही जल मिट्टी और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। तो सरकार की सोच ये है कि हमारी भविष्य के लिए हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहे, हमारा पानी भी सुरक्षित रहे, जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे और हमारे किसानों को समय पे और उचित मूल्य पे खाद मिल सके। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में धान प्रमुख फसल है और अभी धान की बुवाई अथवा रोपाई का काम चल रहा है। कुछ लोग सीधे धान की बुवाई करते हैं, कुछ लोग उसकी नर्सरी बनाकर उसकी रोपाई करते हैं। तो जहां हम सीधे बीज की बुवाई करते हैं उसमें एक किलो बीज पर नैनो डीएपी की 5 मिलीलीटर मात्रा, मतलब एक कुंटल बीज अगर है तो उसको शोधन किया जाना है, बीज उपचार किया जाना है। उसके लिए एक क्विंटल बीज को उपचारित करने के लिए आधा लीटर की एक बोतल पर्याप्त होती है। एक किलो बीज के लिए 5 ml और 5 किलो बीज के लिए बोतल जो आती है उसका ढक्कन 25 ml का रहता है। किसान भाई साधारण भाषा में उससे भी समझते हैं कि 5 किलो बीज पर एक ढक्कन भर के नैनो डीएपी डालना है और उसको बीज में मिलाना है। अगर आवश्यकता पड़े तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भी आवश्यकता अनुसार मिला के नैनो डीएपी में, फिर उसका छिड़काव बीज के ऊपर करके और उसको थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो डीएपी, नैनो डीएपी का जो घोल है वो बीज के अंदर समाहित हो जाता है और फिर उसकी बुवाई कर दी जाती है।

0: यूरिया और नैनो डीएपी कृषि के क्षेत्र में नवाचार की नई पहचान बन रहे हैं। बेहतर पोषण, दक्षता, कम लागत, आसान उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन के साथ ये आधुनिक उर्वरक खेती अधिक उत्पादक, लाभकारी और टिकाऊ बना रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान सहित विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर विकास खंड और ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इफको के उप महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार गोले कहते हैं,
1: नैनो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर की दुनिया में एक नया क्रांतिकारी कदम है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो दानेदार खाद हम डाल रहे हैं उसकी उपयोग क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम जितना डालते हैं उसका मात्र 40% यूरिया उपयोग होता है, 60% खेत में पड़ा रहता है। इसी प्रकार से डीएपी और दूसरे खाद भी 25% उपयोग हो पाते हैं कि पौधों के द्वारा बाकी खेत में पड़े रहते हैं। इसलिए आपने देखा हो खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है। सभी ने अनुभव किया खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है। खेत में जो लाभदायक जीवाणु थे, केचुए थे और दूसरे जीवाणु थे, वो कम होते जा रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए अच्छा जो ये पड़ा हुआ खाद है, ये आप देख रहे हैं बोतल में, आज हम पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि ये सब खाद जो है नाइट्रेट के रूप में पानी में जाके मिल रहा है, नालों में, ट्यूबवेल में। और उसके कारण आप देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है या डायबिटीज हो रही है, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं। 40% उपयोग होता है और 60% जो है पॉल्यूशन कर रहा है। उस पॉल्यूशन से निपटने के लिए हमको पैदावार भी नहीं घटाना है और पॉल्यूशन से हमको निपटना है, बचना है। के लिए जो नैनो उर्वरक है ये सीधे पत्तियों पे उपयोग होता है और पत्तियों पे उपयोग होने से क्या होता है कि जमीन में नहीं जाता है। जब जमीन में नहीं जाता है तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जीरो है। तो ये किसान भाई कोई भी फसल जो 35 से 40 दिन की हो जाती है, चाहे वो धान हो, मक्का हो, गेहूं हो या दूसरी जो भी साग भाजी है, जब पर्याप्त पत्ती आ जाती है तो इसको आप 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या मोटी भाषा में कहें एक टंकी जो 15 लीटर की, 2.5 ढक्कन नैनो यूरिया मिलाकर उस पे स्प्रे कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आज किसान समझ चुके हैं कि बिना किसी नुकसान के नैनो उर्वरकों को अपनाकर वे अपनी उपज का अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यही कारण है कि प्रदेश के किसान अपनी फसलों के लिए अब नैनो यूरिया और

NO-DAP का चुनाव करते हैं। इसका फायदा ये हो रहा है कि दानेदार खाद से प्रदूषित हुई मिट्टी अब उपजाऊ हो रही है और साथ ही किसानों की झोलियां भी धन धान्य से भर रही है। और ये सब हो रहा है किसानों के प्रति सरकार के समर्पण के कारण। इसीलिए तो परस्पर आस्था और विश्वास लेकर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है उजाले की।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: केके की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आशिक बनाया आपने का गीत, गीत समीर का था और संगीत था हिमेश रेशमिया का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
5: यादें
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने

0: को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर। सुनिए

अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं। मंगलवार 30 जून 2026 को यानी आज प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे इस स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पुणेन्द्र साहू अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय साचा बेमेतरा। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 30 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा का गीत। गीत समीर का था और संगीत था अनु मलिक का। लीजिए अब सुनिए फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत आनंद मिलन का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म यारा दिलदारा का गीत, आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत जतिन ललित का।

कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सलामी का गीत। गीत समीर का था और संगीत था नदीम श्रवण का। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्ये को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान

0: ये संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण कर किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कन्नड़ भाषा में समूह गान शिक्षा। रचनाकार हैं बी आर गीथा।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
1: हाँ।
0: हाँ। हारू तिहवु
1: हारू तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला यनी तो मुगीला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला जी की दानी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: हाँ। आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा।
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ।
0: उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तिश्र नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धादीना धातीना धादीना धातीना धादीना धातीना धादीना धातीना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: तकी

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समूह गान शिक्षा के कार्यक्रम में कन्नड़ भाषा में समूह गान शिक्षा। रचनाकार थी B.R. गीता। लीजिए अब सुनिए समूह स्वर में सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में सुगम संगीत। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म तेरे घर के सामने का नगमा। गीत हसरत जयपुरी का था और संगीत था सचिन देव बर्मन का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ।

0: आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: लीजिए अब सुनिए फिल्म छाया का गीत, आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत सलिल चौधरी का।

0: शैलेंद्र के लिखे गीत के लिए धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। फिल्म चोरी चोरी के इस गीत के लिए आवाजें थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हो, फिर पढ़ के भुला जाते हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: तो काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: लीजिए अब सुनिए फिल्म।

0: वैसे वर्षा युवाणी माँ तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत हमार गांव आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह एक के कार्यक्रम में इतना कुछ तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा तेना 6 तक चलते जेमा तह मंगलवार गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: लीजिए अब सुनिए फिल्म तुम सा नहीं देखा का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत ओपी नैयर का,

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म मधुमती का गीत। गीत शैलेंद्र का था और संगीत था सलिल चौधरी का। लीजिए अब सुनिए फिल्म कश्मीर की कली का नगमा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत SH बिहारी का, संगीत OP नैयर का।

0: सुन रहे थे सदाबहार नखमे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी। और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। सरगुजा जिले के रामगढ़ में चल रहे 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज समापन होगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कल इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने रामगढ़ महोत्सव के 50 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा और रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वे मुख्यमंत्री निवास में खेल और युवा कल्याण विभाग की बैठक लेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित झिरमिति स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर वे रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे खरसिया रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। कल रायपुर में इसका शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सहकारिता आंदोलन के जनक पंडित वामन राव बलिराम लाखे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को गांव गांव तक सशक्त किया जा रहा है और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा रेलवे स्टेशन के पास स्थित ओवरब्रिज पर 2 मोटरसाइकिल की हुई टक्कर में सड़क पर गिरा एक युवक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत फरार हो गया। वहीं राजधानी रायपुर में ट्रैक्टरों से लदा ट्रेलर पलट गया, जिससे दुर्ग रायपुर मार्ग बाधित हो गया है। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए राहगीरों को एम्स महोबा बाजार मार्ग से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बालोद जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य सचिव से पहचान होने का झांसा देकर नौकरी लगाने का दावा करती थी। आरोपी महिला ने 7 लोगों से 25 लाख रुपए से अधिक की राशि की ठगी की है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले के रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
2: जी,
1: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे, जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं,

0: भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए
1: जी।
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही, पर अजीत जी अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
2: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
2: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
2: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना,
2: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जल

0: सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते।

0: कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
1: जी
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काव काव काव।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात हाँ, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
4: क्या
6: क्या क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
4: नीचा
3: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
0: हाँ, हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
3: शाबाश, सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलू उसे भी ले आऊं मैं, ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम। ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं।

0: पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोद ने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है तुम भी चलो कुछ मदद करो।
1: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का का का
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पानी पपीहा ना पिए दूजा पानी, हाँ हाँ पपीहा ना पिए दूजा पानी, पपीहा ना पिए दूजा
1: पानी। इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँ, गाँ, गाँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँ, गाँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
6: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
6: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूम

0: ब्राह्मण मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
1: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौए? क्या मैंने गलत कहा?
2: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
1: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल? इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
0: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
2: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है?
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: ये मर गया।
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव FM बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

आओ कार्यक्रम की शुरुआत करथन और देखथन ए दाव हम पोस्टकार्ड जिन आए हैं अपन फरमाइश के ओखर से शुरुआत करथन। तो देखथन सबले पहली हमार कौन संगवारी के पोस्टकार्ड हमर साथ में आए हैं। तो बनियापारा धमतरी ले हैं शरद डोडवानी, श्रेया और पूनम वाघवानी। शीतलानगर दुर्ग ले हैं शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। पलारी ले हैं प्रकाश वर्मा, निखिल शर्मा, प्रिंस यशस्वी वर्मा। मगरलोड ले हैं श्रीचंद यादव, भारती, कशिश, चांदनी और सनातन यादव। बेलरगांव सिहावा ले हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। बंगला मटिया ले हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। सिमगा ले हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव। गैनलाल मिश्रा, चंद्रकांति, अर्चना, धनंजय मिश्रा आपन हो धवलपुर ले। सौंगा मगर लौट ले हैं कोमल सेन, तोसन सेन और विनायक सेन। इन्हें ले हैं वो आपके कोटा रायपुर ले हैं अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा, दिनेश सेन। और इन्हें ले हैं योगिता वर्मा, रुचि वर्मा और खुशी और ओजल वर्मा। महासमुंद खट्टी ले हैं सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, टिकेश्वर साहू, कीर्तन और शिवाय। केजूराम मालेकर, ठाकुर राम, अश्वनी मालेकर आप मरहो मगर लौट ले। शिक्षक नगर दुर्ग ले हैं राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा और अरमरी खुर्द ले हैं चुरावन लाल वार्डे, जैनी वार्डे और मिराज वार्डे। नंगनिया पाटन ले हैं सुप्रिया कश्यप, मेघा कश्यप, अंजू और दीक्षा कश्यप। तो आओ आप सबके पसंद में आप मन सुनवा थन जीवनदास शिंदे और कविता खापरड़ी के गाए ये गीत।

आप शुरू करथन जेन फरमाइश हमला ईमेल में मिले हे तेमें हे राजापुर सूरजपुर ले मालिक राम बुड़गहन ले रामदुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति लघान पंडरिया ले उत्तम बघेल रुक्मणी बघेल भारती बघेल नेपानगर ले सुदर्शन साह पल्लवी साह प्रखर साह कुशल साह बदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू भाटापारा ले हिमकेश्वर साहू करण राहुल औ चंपा साहू बोड़सरा नैला ले प्रमोद कुमार साहू वैभवी विनोद विभूति अंशु प्रियांशु साहू बनियापारा धमतरी ले रामचंद्र माखीजा सविता माखीजा दर्शीवा ले छेदूलाल यादव सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा रिंगनी ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा सहिया मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी चंद्रवंशी आकाश चंद्रवंशी प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी हजदा नंबर दो ले कमलेश साहू जितेंद्र साहू पायल साहू परसाटोला अंबिकागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी मसिया खुमेंद्र मसिया और तुषारणी मसिया ढोंडरी घोटिया ले महेश कुमार निषाद रंभारानी निषाद निखिल कुमार निषाद नैतिक कुमार निषाद पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार निषाद और आदिपुर ले हैं जगदीश सोनार प्रवीण पुजारी प्रफुल्ल और प्रतिभा देवी आप सबके पसंद में आओ आप मतलब सुनवा थन निखिल निका साहू के गाए ये गीत।

मिथले साहू और संगवारी मन के गाय ये गीत भर हमला ईमेल पठोए हैं गैंदा टोला बाजार राजनांदगांव ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि गुप्ता योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव चर डोंगरी पिपरिया ले दुर्गाराम साहू अजय कुमार साहू जय किशन साहू पोटिया कला दुर्ग ले संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू और सीमा साहू बीरनपुर कला दनिया गंडई ले सुरेश कुमार साहू मास्टर तन्मय साहू सरधाना मेरठ ले अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जीवनम जैन पलारी ले नीतीश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पूनाराम देवांगन कृष्णा देवांगन जैसा कर्रा चरामा ले असाड़ू राम निषाद खिलावन निषाद ऋषभ निषाद जिला कच्छ भूंज ले सरोज शिमाली कंचन राधिका और रूपल शिमाली फुलझर घटा रानी ले योगेश्वर साहू डुमेश्वरी साहू यामिनी साहू मुस्कान साहू और हर्षिता साहू भानपुरी मूसरा ले आत्माराम यादव सुखदेव विदेशी होमेश्वर मानेश्वर साक्षी और तुलसी यादव पलारी ले हैं प्रकाश वर्मा निखिल देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंघेल शकुन जंघेल और आरुषि बैयाटोला मोहला मानपुर ले मालिक राम सिन्हा और तारामती सिन्हा भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव बसंत फ्रिगु और विनय ठाकुर।

मोहनी साहू और भरू यादव के गाय एक गीत पर हमला ईमेल पटवाए हैं। सरगेनी ले तेजराम सेन, जानकी सेन, दुष्यंत सेन, जागृति सेन, डोंडी लोहरा बाहरत ले हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, गिर्रा पलारी ले हैं वीरेंद्र साहू, सोनू साहू, आशीष और कपिल साहू, कुर्मा जंजगिरी चांपर ले हैं दिलदार मिरी, मजेदार मिरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मिरी, कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर, पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर, बाजारवाड़ महासमुंद ले भीषम दास मानिकपुरी, लक्ष्यदास और दीपक दास, भाटापारा ले सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोगेश जोशी और पायल, लालपुर मारोले कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव, निशांत ध्रुव, खमरिया बिलासपुर ले हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, कोरासी छत्तीसगढ़ ले हैं पवन कुमार साहू, कांति देवी साहू, पंकज साहू और सुष्मिता साहू, छत्रपति संभाजीनगर ले हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, अमलेश्वर ले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, अड़ार नांदघाट ले हैं माखन वर्मा, चांदी वर्मा, भूपेश और दीपेश वर्मा, दहियान बांधा बाजार राजनांदगांव ले हैं हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानू साहू, सरस्वती साहू, प्यारीराम साहू, परमानंद साहू, गुजरात गांधी ग्राम लेहे प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, पूजा पायल, प्रथम राजेश और कृष्णा और कलावती सोनी, बाघामुड़ा कुमाखान ले प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, पुतकी कला कवर्धा ले वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नैन पांडे, सुमांशु पांडे और राधेश्याम पांडे, हिच्छा महासमु

ले अदालत दास वैष्णव, मानस दास वैष्णव, सतीश कुमार वैष्णव, रीचा और गायत्री भाटापारा ले दान सिंह और पद्मिनी। मन की लोर मिले नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे, समीर खांडे। पलारी ले नीतीश कुमार देवांगन, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन और डुग्गू देवांगन। हटोत बाजार लाहौर ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमार पटेल। नागर कोहरा राजनांदगांव ले झगर राम साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। आप सबके पसंद में आओ अपन सुखासन मोहनी साहू और भरू यादव के गाय ये गीत।

दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर लेहे बलदाऊ राजेश्वरी अवस्था यादव धरदेई सरगांव लेहे चंदूलाल पटवा सुनीता पटवा कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव सिंगारपुर पैलीमेटा ले चिंताराम धुर्वे कामीन चंद्रध्वज अवसानु धुर्वे धरसिंहवा ले छेदूलाल यादव सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा और अपना यादव भाटापारा ले विष्णु साहू पूरब साहू वीरा साहू कुमकुम साहू दीपिका साहू योगेश्वरी साहू पथरिया भरेवाले चंदूलाल सिंहरौल नारायणी सिंहरौल नोमेश और नेहा चिरमिरी कुरासिया ले महेंद्र भान सिंह इंद्र भान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह और राम सहोदर नंदिया गंडई ले मूलचंद पटेल मीनाक्षी पटेल आशीष पटेल और सीमा पटेल दत्रिंगी ले भागवत वर्मा गुलाब दास और प्रकाश सिंह गोले भाटापारा ले हिमकेश्वर साहू करण राहुल और चंपा साहू तेंदुभाटा मगरलोड धमतरी ले उमेद कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर और किशन निषाद हिंगोली महाराष्ट्र ले शाहजी बोड़खे नंदा बोड़खे हनुमान बोड़खे छत्तीसगढ़ ले पवन कुमार साहू कांति देवी साहू पंकज साहू और सुस्मिता साहू बारगांव ले अनार साहू खुर्सी

पर मोहला मानपुरले विष्णु राम यादव बसन्ता यादव कविता अनि सौगीतांश यादव चरडुङ्गिरी पिपरियाले कमलकान्त गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता ग्राम लोर्मी चचेडीले कमलकान्त मरावी प्रमिला मरावी नेहा मरावी पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी धजाभाटा ओडिशाले नन्दकुमार ठाकुर भड़गा कोदवा गुणाले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी मरावी रानी और रजनी मरावी कुईग्राम भंगीटोलाले ननकाराम ध्रुवे जामुनबाई ध्रुवे फिरतराम ध्रुवे। तो आओ आपके सबके पसंद में सुनत हैं मोतीदास मानिकपुरी और बीरबल साहू के गाए और संगवारी मन के गाए ये गीत।

0: एकरे संग सिरावत है एदारी के आप मन के गीत आपके सेवा प्रस्तुत करें संजय पाठक। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइसी कार्यक्रम आप मन के गीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 1 बजने को हैं हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण

0: मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने

लिया है फिल्म वारिस से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के, बोल वर्मा मलिक के, और धुन बनाई हैं उत्तम जगदीश ने।

अभी आपने सुना फिल्म वारिस का गीत। संगीत उत्तम जगदीश का था, बोल वर्मा मलिक के, आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, इसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म है स्वर्ग से सुंदर।

लीजिए सुनिए वसंत देव की रचना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वर में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म है सुर संगम।

सुर संगम के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियावे और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ओवल लंदन में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा शाम 7 बजे से शाम 7:30 तक, रात 8 बजे से 8:45 तक, रात 9:15 से लेकर खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:45 पर आप सुनेगा सुनंदा शर्मा का राग बागेश्वरी में गायन। अब से थोड़ी ही देर बाद दोपहर 1:30 पर प्रसारित होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज के गोठ में चर्चा होगी बड़े बुजुर्ग खुली किताब आए एक हर मान बनाए रखो। साथ ही सुनेगा गीत ले भरी कहानी वसीयत। आलेख और वाचन संध्या परगनिया का, संयोजक होंगे रमाशंकर और संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की होगी। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर छत्तीसगढ़ी में अपन गोठ में चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस पर। साथ ही होगा सवाल जवाब और माटी के गीत। शाम 7:30 पर किसानवाणी में सुनेगा फोन इन कार्यक्रम। इसमें उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमित्रा के अधिष्ठाता तेजेश्वर साहू हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण इसकी जानकारी देंगे। संचालन करेंगे तेजेश्वर साहू और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का समय होगा शाम 5:05 और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियां सुनेगा शाम 6:30 पर। श्रोताओं, हम आपको पुनः एक बार बता दें, दिल्ली से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ओवल लंदन में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ टीवी कमेंट्री का प्रसारण होगा शाम 7 बजे से शाम 7:30 तक, रात 8 बजे से रात 8:45 तक, रात 9:15 से लेकर खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:30 पर किसानवाड़ी में सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम। इसमें उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरा के अधिष्ठाता डॉक्टर पुणेन्द्र साहू से साहू बताएंगे हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण। संचालन करेंगे तेजेश्वर साहू और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख

कार्यक्रमों का विवरण मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

बड़े बुजुर्ग घर के दिया ज्ञान के पोथी खोल, पन्ना पन्ना आशीष भरे, जिंदगी बनथे अनमोल, जिंदगी बनथे अनमोल। इही शुभ भाव संग आज के घर आंगन में झोंको अपन बहनी संध्या परगनिया के राम राम। कही थे ना बहनी हो, जहाँ सियान साम्राज्य बन के मान गौन होते, वहाँ सुख शांति समृद्धि अपन डेरा बना लेते। कतका सिर तुन बात है ना, हमर बड़े बुजुर्ग हमर सियान मन घर के वो छहिया आए जिन खुदे घाम सही के परिवार ला जुड़ छाव देते। वो मन सिर्फ परिवार के सदस्य भर नहीं हुए, बल्कि अनुभव संस्कार और जिंदगी जिए के सीख के खजाना होते। बड़े बुजुर्ग न बहनी हो एक खुला किताब असंत होते, काबर ओला कहूं लौटा के देखबो ना तो उनकर जिंदगी के हरेक पड़ाव मा, जिंदगी के हरेक पन्ना मा उनकर संघर्ष मेहनत उनकर त्याग और अनुभव लिखाए रही थे। जिन बात ला हमन कई ठन किताब ला घलो पढ़ के नहीं सीख सकन, ओला हमर दाई बाबा मन ले हमर सियान मन ले सुन के सीख सकथन। तभे हमर पुरखा मन कहे है जेन रुख के जड़ मजबूत होते वो रुख हर अंधोर गरेर में घलोक डट के खड़े रहते। ऐसे ही बहनी हो, परिवार के जड़ हमर सियान मन होते, उकरे आशीष और मार्गदर्शन ले परिवार मजबूत बने रही थे। और देखन ना तो आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बेर हमन अपन काम काज में अतका विधुन हो जथन कि हमन उकर मन पर बेरा नहीं निकाल पावन। तो ऐसा झन करन भाई, अपन घर के बड़े बुजुर्ग मन संग बैठन, गोठियावन, सुख दुख बांटन। काबर उनला जिंदगी के ये पड़ाव में रुपया पैसा ले ज़्यादा जरूरत अपनापन सम्मान और दो मिठ भाखा प्यार के जरूरत होते। अतका ला कर लेवन ना तहन देखन हमर सियान मन कतेक खुश हो जाते। एक ठन बात हो बहनी हो, बड़े मन के मान करबो यही हमर संस्कार, उकर आशीष ले महके हमर घर परिवार। और बहनी हो आज तो महीना के पांचवा मंगलवार है और आप मल्ला गोरा है गीत ले भरे कहनी के, ता आवाओ आप मल्ला सुनवाथन गीत ले भरे कहनी वसीयत। एक हर आलेख और वाचन हमर यानी संध्या परगनिया के है, संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू के है और संयोजक है रामा शंकर। तो आवाज सुनो गीत ले भरे कहनी वसीयत।

दुदी ठन जेठ के गर्मी ले हलाकान होगे लोगन मन, लकलकावत घाम ल झेलत झेलत धरती दाई के छाती म दनगार तको पड़ गे। नदिया नरवा तरिया मन अपन पानी के आखिरी बूंद ल बचाए बर जुझत रहिन। गांव के गाय गरु पानी के खोज म भटकत रहिन। चिरई चुरगुन रुख के सुखा डारा म चुपचाप बैठे हे, जैसे जिंदगी ह निचट सुखागे हुए। हवा म तको गर्मी के ऐसे तपन रहिस कि पाना तको प्यूरा गे। कहिथे ना, जब धरती प्यास थे ता आकाश घलोक बेचैन हो जाते। किसान मन घलो रोज उवत बिहनिया ले बुड़त बेरा तक आकाश कोती निहारत रहिन। सब्बो के मुंह ले एक के गुहार फूटे, हे भगवान पानी तो बरसा दे। धरती तो ऐसे लागत रहिस जैसे कोनो महतारी अपन लईका बर तरसत हुए। खेत के फाटे दनगरा मन आकाश ले पानी के भीख मांगत रहिन। ऐसे कहिथे ना कि किसान के आस और धरती के प्यास दोनों के सहारा तो बादर होते। फिर एक दिन भगवान सब्बो के गुहार ल सुनिन। आकाश मा करिया करिया बादर घपटिस और जैसे ही पानी के पहली बूंद धरती ऊपर परिस, माटी महर महर ममहागे, जैसे प्रकृति अपन मन के दबे भाव ला खुल के बता।

आवत हुए। ये बरसा के पहली बूंद सिर्फ पानी नहीं रहिस, ओ हतो किसान के सपना मा पहली जरई फुटिस। देखते देखत झमाझम पानी बरसे लागिस, धरती दाई तो मुस्कियाबे करिस। काबर बरसो बरस के प्यासे कंठ ला दो बूंद पानी जो मिल गए, चिरई चिरगुन मन खुंदरा ले निकल के फुदके लागिस। लईका लोग मन पानी मा चिहुर पार पार के नाचे ल धरलिस, और किसान मन अपन नांगर बखर लधर के खेत कोती निकल पड़िस।

पानी के हर बूंद म किसान के सपना ह तौरत रहिथे, और जेन दिन बरखा बरसथे उही दिन ओकर आस घलो हरिया जथे। बरखा हर सिर्फ धरती ल नहीं भिंजोइस, किसान के सुखावत मन म घलो नवा उम्मीद ल जमो देस। बरसात के पानी के झीप ह विशाल और ओकर गुसैन के सुखावत मन के आस ल घलोक भिंजोइस, और दोनों परानी के सुन्ना मन के एक ठन कोन्हा जिन कई बछर ले जैसे माटी के भीतरी दबे रहिस, आज बरसात के पानी लपा के छक छक ले उजरागे हुए। विशाल के गोसैना कहा थे, हमर चार जन बेटा है और छोटे बेटा है घलोक 10 साल के तको हो गए है। मोला बेटी के आस है, तब विशाल है कही थे, बेटी बिना घर कतेक सुन्ना लागते ना, बेटी घर के रौनक होते, बेटी है त राखी तिहार है, बेटी है त तीजा तिहार है, नूनी बिना अंगना सुन्ना, फूल बिना बगिया सुन्ना जैसे लागते। चार बेटा के महतारी तुलसी चौरा मा दिया बार के भगवान ले एक किच प्रार्थना करे, मोर सुन्ना अंगना ला बेटी के किलकारी ले भर दे। ऐसे देखन ना तो बेटी सिर्फ दाई ददा के दुलौरीन भर नहीं हुए, बल्कि हरेक रीति रिवाज और संस्कृति के दर्पण होते। काबर बेटी घर के आधार होते, बेटी घर के सिंगार होते।

एक दिन विशाल खेत ले तो उखर गोसाई मने मन मुस्कियावत रहे। तब विशाल ह अपन गोसाई ला पूछिस, का बाते अकेला अकेला काबर हासत हस? तो उखर गोसाई ह लजावत विशाल ला कहिस, अपन कोरा एक घाव औ हरियाए के बात ला कहिस। बेटी के आस दोनों के आँखी में फरिया गे। बेरा हा बीतत गिस, आखिर वो दिन आगे मानी जचकी के दिन। विशाल अपन घर वाली ला अस्पताल ले गिस। डॉक्टर मन जांच करीन तब पता चलते कि एला तो जचकी में बड़ समस्या है। तुरते ऑपरेशन थिएटर में लेग गिन। इति विशाल डॉक्टर नर्स मन के भाग दौड़ा देख के घबरा गे।

और मने मन भगवान ले विनती करेला लागिस। कोनो ऑपरेशन थिएटर ले निकले तब विशाल हाल चाल जाने बर दौड़ जावे। फिर कही थे ना डॉक्टर भुइया के भगवान आए, फिर कई बेर ये भुइया के भगवान घलो नतमस्तक हो जथे विधि के विधान के आगू। काकरो बस तो नहीं चले और लईका तो दुनिया में आगे, फिर जचकी के दर्द ला उखर महतारी है नहीं सह सकीस और ये दुनिया ले चल बसीस। मानो विशाल के दुनिया है उजर गे।

कभू कभू ना दुख और सुख घर में एक के संग रहा हम आ जाते। भाग्य के लेखाला कोनो टाल नहीं सके। विशाल के हाथ मा जिहा एक कोती नवा जन्म धरे नोनी रहिस, त दूसर कोती जिंदगी भर के संगवारी के बिछोड़ना रहिस। विशाल अपन घरवाली के जाए के पीरा में टूट गए। दुख मा बुढ़े मन कई बेर सही ल गलत घलोक समझ लेते। नोनी के रंग हा सांवर रहिस और वह एक पांवले दिव्यांग घलोक रहिस। विशाल के मन में यह बात है बैठ गए कि जन्म लेते साठ अपन महतारी ला खा डरी से कुलक्षिणी है। दुख के धुंधरा में कई बेर अपन हा घलो बीरान दिखे लागते। जैसे तैसे चारों भाई मन और गांव के बड़े सियान मन नोनी के नामकरण करिस और ओकर नाव रखिस गंगा। दाई के मया भगवान ओकर किस्मत में नहीं लिखे रहिस और ददा के मया ओकर नसीब में नहीं रहिस। समय के संगे संग गंगा जल्दी समझदार हो गए। बने बड़े बिहनिया ले घर अंगना ला ली बहा डरे, खोर मा छरा छिटका दे डरे, गाय गरु बर दाना पानी दे डरे, रन्ना गढ़ना करे, सरी काम बुतल करे, फिर ददा के चिटीक भर मया बर तरसत रहे। मया के भूख ना रोटी के भूख ले पड़का होते।

भाई मन पढ़े लिखे बर शहर चल दिन और पढ़ लिख के बने नौकरी चाकरी मन लग गए और बिहाव के बाद अपन अपन घर गृहस्थी में रम गए। बेरा पंख लगा के उड़त गिस गंगा अब बिहाव के लिख हो गे। फिर किस्मत है जैसे जन्म ले कर परीक्षा लेवत रहीस सांवर रंग ऊपर ले दिव्यांगता कई रिश्ता इस और गिस दुनिया घलोक ना मेनखे के मन ला नहीं ओखर रूप रंगला देख के तौल थे। गंगा के बिहाव परोस के गांव मा कमजोर परिवार मा माढ़िस गंगा के बिहाव के दिन आगे डोली दुआरी मा खड़े रहिस विशाल के मन इसे तड़प उठिस जैसे कई बछर ले दबा के रखे मया अचानक आँखी मा आंसू बन के छलक गए। कहते घलोक ना बेटी के विदाई मा निर्मोही बाप के आँखी घलोक भींच थे। गंगा दादा के पाँव परिस तब विशाल के हाथ अनजाने में आशीष देवत उकर मुड़ पर रखा गए।

तैसे ही गंगा के डोली दुआरी ले आगू नाकिस विशाल के मन में जुन्ना घाव फेर हरी आगे। घर वाली के गुजरे के सुरताहा आगे जेन मया के बूंद अभी अभी अंतस मा उगरे रहीस वो फेर भीतरे भीतर सुखागे। गंगा जैसे ही अपन कदम ससुरार के डेहरी मा राखेस ओकर बूढ़ी सास सरक सिधार गे। दुब्बर लदू असाड़ कहन करिया होए के ताना तो सुनबे करे, अब मनहूस होए के ताना घलो सुने बर पड़े। ओखर पति घलो रात दिन पिए खाए परे रहे, मार पीट करे तो आम बात होगे। बिचारी सब्बो दुखला सहाय और अपन मया सेवा और अपनापन ले घर ला जोरी के कोशिश करत रहा। बपरी सब्बो दुखला समास के चले, काबर डोली मा जेन घर मा आए हबो उही घर ले तो मोर अर्थी हा निकल ही कहा। कहते नहीं कि नारी के सहन शक्ति धरती जैसन होते, सब कुछ सही लेते फिर टूटना भर नहीं जाना है। ये घर में कहूं कोनो गंगा के दुख ल समझत रहिस तो वो हा ओकर ससुर रहिस। गंगा हा जब दुखा के रोवे तो ओकर ससुर ओला बेटी असन समझावे, फिर शराब के नशा में माते ओकर पति ला कुछ समझ में नहीं आवे।

करिया होए के ताना तो सुनबे करे, अब मनहूस होए के ताना घलो सुने बर परे। ओखर पति घलो रात दिन पिए खाए परे रहे। मार पीट करई तो आम बात होगे, बिचारी सब्बो दुख ल सहाय और अपन माया सेवा और अपनापन ले घर ल जोरे के कोशिश करत रहा। बपरी सब्बो दुख ल सवास के चले, काबर डोली मा जेन घर मा आए हबो उही घर ले तो मोर अर्थी ह निकल ही कहा। कहते नहीं कि नारी के सहन शक्ति धरती जैसन होते, सब कुछ सही लेते फिर टूटना भर नहीं जाना। ये घर में कहूं कोनो गंगा के दुख ल समझत रहीस तो वो हा ओकर ससुर रहीस। गंगा हा जब दुखा के रोवे तो ओकर ससुर ओला बेटी असन समझावे, फिर शराब के नशा मा माते ओकर पति ला कुछ समझ में नहीं आवे। ऐसने ऐसने करत साल दू साल हा बीत गए, अत्याचार दिनों दिन बाढ़ते गिस। एक दिन गंगा के ससुर कहिस, बेटी दुख सहे के घलो एक सीमा होते, अरोसी पड़ोसी मन घलो कहिन, जिंदगी भगवान के दे वरदाने, ओला आंसू में झन बुड़ो बेटी, जा ते अपन मैके जा बेटी। गंगा हा बुट बिटा गे, गंगा के आंखी आंसू ले भर गे। जेन घर ला अपन संसार माने रहे हूं, आज उही घर मोला बिरान कर दे।

गंगा ससुराल के डेहरी ला लांग के मैकेट के डेहरी मा कदम राखिस। मन में एक आस रहिस कि अब कहूं मोर दादा मुला अपना लही, फिर ओखर दादा के व्यवहार मा मैं या तो कौन जनी बोझा होए के एहसास ज्यादा करावे। गंगा ला सब समझ में आवे, फिर कभू शिकायत नहीं करिस, अपन दुख ला अपन कमजोरी नहीं अपन संगवारी और अपन ताकत बनेस। गंगा हर ठान लेस अब काखरो ऊपर आश्रित नहीं रहो कहके, घर के काम बुतला तो करबे करे, संग मा अपन हुनर सिलाई कढ़ाई ला अपन रोजगार बनेस। एक मशीन ले शुरू होए काम चार मशीन तक पहुंच के गांव के और कई झन महिला मन ला घलो काम देना शुरू कर दिस। जिन गंगा ला दुनिया बोझ समझत रहिस, आज उही गंगा चार झन के चूल्हा मा आगी बारत है। गांव के सियान मन कहे ला धर लेन, जेन नोनी ला किस्मत हरोइस गा, आज उही नोनी दूसर मन के सहारा बन गे, ओकर आस बन गेगा।

समय के संगे संग एति विशाल कमजोर होवत गिस। बेटा मन ला फोन करे त बेटा मन का है, बाबू पैसा कौड़ी भेज देवन कागा, काम के मारे फुर्सत नहीं मिला थे, अभी तो नहीं आ सकन। फिर सियनहा बाप ला पैसा कौड़ी नहीं चाहिए रहिस, ओला अपन बेटा बहू अपन नाती नतरा ला देखे के आस रहिस। विशाल मने मन की हिस चार बेटा नाम के कौड़ी ना काम के, नाती नतरा ला ससन भर के देख लेते हो, सबो झन मोर संग दू घड़ी बैठ के गोठिया लेतीन, का ये आस तुहर पैसा कौड़ी ले बिसाए जा सकते। गुनत गुनत आंखी की कोर ले आंसू ढरकत रहिस। गंगा रहे तेन बाप के मन के पीरा ला समझत आंसू ला पूछत है, बिना कुछ कहे लाचार बाप के दिन रात सेवला करत रहिस। विशाल के हृदय टघल के मोम बन गे, आंखी मां पश्चाताप के आंसू झरे ला धर लिस और कहिस, बेटी मैं तोर संग बड़ अन्याय करे, तोला अपन दुख के कारण समझे, जिन दिन तोर जन्म हुईस उही दिन तोर मातारी चल बसिस, मैं दुख में अंधरा हो गए रहे बेटी, फिर आज मुला सब समझ में आ गई बेटी। बेटी दोष किस्मत के रहिस और सजा मैं तोला दे डरे। गंगा के आंखी ले घलो आंसू के धार बुहागे। विशाल की हिस दुख पीरा मा जेन साथ दे थे उही अपन होते, चारो बेटा मोरे खुनाए, फिर मोर दुख के घाम मा मोर छैया ते बनेस बेटी। आज मैं समझे बेटा वंश चला थे, फिर बेटी संस्कार बचा थे। विशाल के मन आज पूरा बदल गए, कले चुप वकील ला बलेस और अपन पूरा जायदाद घर और खेत खार ला गंगा के नाव कर दिस और कहिस, जेन सेवा करिस संपत्ति के असली हकदार तो उही हराए, फिर ये बात के जानकारी कोनो ला नहीं रहिस।

कुछ महीना बीते के बाद विशाल ये दुनिया ले चल बसिस और चारों बेटा मनाइस। फिर खर्चा, जिम्मेदारी और चीज बस के बंटवारा के बाद शुरू होइस। गंगा हा दोनों हाथ लजोर के बिनती करिस कि भाई हो, दादा के सबो कामला होवन दो, चार समाज के आगू अपन फदीता झन करावाओ और दादा के क्रियाक्रम के सबो जिम्मेदारी मैं लेवत हूँ। दस गात्र के दिन सबो काम कारज निपटे के बाद वकील ऐस वसीयत ल धर के और चार समाज के आगू में पढ़ीस, मैं विशाल एक किसान अपन पूरा खेत खार अपन घर बार अपन बेटी गंगा के नाव करत हूँ। अतका सुन के चारों भाई शर्मिंदा हो गए और मुड़ी ल नवा दिन गांव वाले मन तको एक दूसर के मुंह ला देखे ला धर लीन। गंगा के आंखी मा आंसू के छड़ी लग गए। आंखी के आंसू ला पोछत अपन भाई मन ला कहते, ये धन दौलत ये जमीन जायदाद मोर बर कोनो मायने नहीं रख है, मैं ये जमीन जायदाद ला अपन चारों भाई मा बांटत हूँ और आज मोला मोरो हिस्सा घलोक मिल गए जेला मैं काखरो ले नहीं बांट सकूं। जिन मया दुलार असीज वर में ननपल ले तरसत रहे हो वो हमोला मिलिस। मुर ददा मोला बेटी के मान दीस, कापत हाथ ले असीस दिन मुर सेवा भाव के कदर करीन, मोला बेटी कही के हृदय ले लगाइन, यही मुर सबले बड़े वसीयत आए।

0: अभी आप मन सुने गीत ले भरे कहनी वसीयत जेखर आलेख और वाचन रहीस हमर यानी संध्या परगनिया के संयोजक रहीस रमा शंकर संपादन और प्रस्तुति रहीस वीर भानसाहू के तबनी हो ये कार्यक्रम आप मल्ला कैसे लागिस पाते हो ईमेल के माध्यम ने जरूर बताओ भाई हमला अगोरा रही हमर संग बस यही तक आज के घर आंगन ले अपन संगवारी संध्या ला देवो विदा और लेवो हमर राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। दो बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म शौतन से, आवाज किशोर कुमार की है, गीत लिखा है सावन कुमार ने, संगीत उषा खन्ना का है।

बोलो साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं करवा ली की जय

अभी आपने सुना मंचली का गीत, आवाज मुकेश की थी। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी की संगीत से सजी फिल्म हम तुम और वो का गीत। आवाज किशोर कुमार की है और बोल वर्मा मलिक के।

0: अभी आपने सुना फिल्म हम तुम और वो का गीत, आवाज़ किशोर कुमार की थी, बोल वर्मा मलिक की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इसी के साथ चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना

0: समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इनकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1,021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1,021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बात

0: आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म पाप का गीत। आवाज राहत फतेह अली खां की है। गीत लिखा है अजमत इस्लाम ने और संगीत साही का है।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के

एमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: एम एम करीम की संगीत के संगीत से सजी फिल्म सुर का एक गीत अभी आपने सुना महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में। इसे लिखा था निदा फासली ने। आइए अब सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। इसे संगीत से संवारा है जतिन ललित ने। आवाजें हैं अलका याग्निक और हरिहरण की। फिल्म है खामोशी द म्यूजिकल।
1: मैं एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन, लेकिन मैं

अभी आपने सुना अलका याग्निक और ए हरिहरन की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। संगीत जतिन ललित का था और फिल्म थी खामोशी द म्यूजिकल। आइए अब सुनते हैं फिल्म शिकारी का ये गीत।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर ते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लग हलो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडी वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 3 हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 इसी फ्रीक्वेंसी पर पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना

पत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान के संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, खोज और बचाव अभियान भी चला रहे हैं और प्रभावित समुदाय को जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। इससे पहले कल भारत ने वेनेजुएला में राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान तैनात किए थे, जिनमें 41 सदस्यीय बचाव दल, 1 भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल, 30 टन राहत सामग्री, 6 टन दवाएं और चिकित्सा उपकरण और 2 भीष्मक्यू पोर्टेबल अस्पताल थे। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ऐसा ही कुछ इश्क है एफएम गोल्ड सुनने वालों को इस चैनल से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता, लेकर मन भावन। और इस शो के लिए आप सबका प्यार हमें दिखता है आपके ईमेल के रूप में, जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने मुझे नज़र आ रहा है।

और जो लोग जानते हैं ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है, वो ऑलरेडी हमें ईमेल्स भेज रहे हैं, और जिन्होंने आज ट्यून इन किया है उनके लिए मैं ईमेल आईडी दोबारा बता देती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। इस पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट लिखकर भेज सकते हैं, जो गाने आज आप यहाँ सुनना चाहते हैं अब से लेकर 4 बजे तक। तो कीजिए आप रिक्वेस्ट, तब तक हम सुनवा रहे हैं आपको रफू चक्कर फिल्म से एक बहुत ही प्यारा गाना।

और मधु किरण कहते हैं कि प्रोग्राम इन्हें पसंद है, अनोखी अदा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। इनके साथ हैं भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा और आप सब हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं, स्वागत आपका एक बार फिर। कुमकुम का मैसेज मिला हमें और विजय सुरलकर मुताला महाराष्ट्र से संदेश भेजते हैं, रतनमाला सुरलकर आपके साथ हैं। रामपुर का लक्ष्मण, इस फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। जगदीश जी ने संदेश लिखकर भेजा है और आप ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी भी। गंगाधर सवानकर का मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ विजय लक्ष्मी सवानकर, राजेश, राकेश, ऋषिता आप सब भी हैं और आपने अपने मैसेज में ये बताया है कि आपको ये प्रोग्राम सुनना कितना पसंद है, इसमें आप अलग अलग तरीके के या फिर यूं कहें कि अलग अलग समय के गाने, सबकी पसंद के गाने सुन पाते हैं, शुक्रिया। और लैला मजनू फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप आप सब इस फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज हमें मिला है, अच्छा मास्टर अशोक वर्मा के बारे में जिनके संदेश अभी हमने शामिल किया, ये बता दें कि आपने एक मेल बॉक्स का पूरा एक पेज जो है ना वो आपके मैसेजेस से भरा हुआ है, तो आपका नाम लिया जा चुका है। और मैसेजेस ना भेजें और लिसनर्स के मैसेज मैं शामिल करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि किसकी पसंद का गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारे पास चंडीगढ़ से मैसेज आता है, अनीता फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, तो आपकी पसंद का गीत मैं ऑलरेडी प्ले कर चुकी हूँ और प्रिल्यूड म्यूजिक के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और नाम शामिल कर दूँ। ओम बगड़िया प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा आपके साथ हैं, साजन मेरा उस पार इस फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं, बोधराज खोरवाल भी हैं हमारे साथ और उत्तम नगर से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल के साथ। आइए सुनते हैं अनीता फिल्म से ये गाना।

बहुत सारे आपके संदेश पहुंच गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और नीटू मल्होत्रा याराना फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी चंद मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का भी मैसेज में नाम अपने शामिल करवा रहे हैं। राधेश्याम देवांगन प्रोग्राम सुन रहे हैं, हीरा पन्ना से गाना सुनना चाहते हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से आपके साथ हैं चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन। और अगला मैसेज है मोहम्मद इम्तियाज का, आपके साथ हैं सलमा बेगम। जवाहर कैम्प कीर्ति नगर से आप हमें मैसेज कर रहे हैं, शराबी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। और मैं मानती हूं कि आप सभी की रिक्वेस्ट एक से बढ़कर एक है, लेकिन अगली फरमाइश किसकी पूरी होने वाली है ये जानने के लिए तो कुछ और नाम सुनने पड़ेंगे। कुमकुम जी का मैसेज मिलता है हमें विजय सुरलकर रतनमाला के साथ, और मेरे हमदम मेरे दोस्त से आप गाना सुनना चाहते हैं। गणेश सूतर का मैसेज आया है, आपके साथ हैं चेतन सारिका, और आप कोल्हापुर से फर्ज फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजते हैं। आफताब अंसारी हैं और आप शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपके साथ है रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, और आप हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। ये भी अच्छी बात है ना, आप राजिता की पसंद का भी गाना सुने। वैसे यकीन मानिए जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है, और तो इसे अगर हम वाइस वर्सा करके बोले तो जो मेरी पसंद है वो आपकी पसंद भी होनी चाहिए, है ना। तो अगला गाना जो सुनना चाहते हैं उनका मैसेज हमें मिला है जलालाबाद से, और आप हैं सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी, निमित और प्रिया। आप सबके लिए आपकी कसम फिल्म से ये गाना आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

बिल्कुल, कस्में वादे जो हैं हमने भी आपसे किए और हमने कहा कि आपकी पसंद के गीत यहाँ आपको सुनवाएंगे, जो हम सुनवा रहे हैं मन भावन में। अगली जो पसंद है वो होगी किशन वंजनी, नीलम स्वाति किशु की पसंद का गाना होगा यहाँ पर। ये हमें आनंद विहार से मैसेज भेज रहे हैं और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सॉन्ग आपकी पसंद का है मैं कहीं कवि ना बन जाऊँ, बहुत ही खूबसूरत ये गाना, प्यार ही प्यार फिल्म से आप सुनना चाहते हैं, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कुछ नाम मैं यहाँ शामिल कर लेती हूँ। नईम खान है हमारे साथ विष्णु गार्डन से, और आपके साथ है अक्रम सुभाष, और जी धीरे से धीरे चलो ये गाना आप सुनना चाहते हैं। संदीप मक्कड़ का मैसेज हमें मिलता है और आप क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। एक दूजे के लिए, फिल्म एक दूजे के लिए से आप गाना सुनना चाहते हैं। और ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गौरैया जालंधर से आप हमारे साथ हैं। और आज ज्योति जी और संदीप जी की एनिवर्सरी है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एफएम गोल्ड सुन रही हैं तो आपका दिन तो बहुत सुहावना जा ही रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ, है ना। इस समय में आप अपनी रिक्वेस्ट लिखकर भेज रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँ। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और आप सबके, आपके परिवार के सभी लोग हमारे साथ हैं। बुलंदशहर से संजय साहू पोटिया कला दुर्ग से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके साथ हैं सुजाता, शशांक, सीमा साहू। काला पत्थर फिल्म से आप एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। अरुण सेन भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। मेरे महबूब कयामत होगी ये गाना सुनना चाहते हैं हम। गौतम सेन,

के साथ और मध्य प्रदेश से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। परमिंदर सिंह रंधावा का मैसेज हमें मिलता है, चौकीदार फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ हैं संगरूर से लखनपाल रंधावा और सुरिंदर कौर रंधावा। फिलहाल हमने नाम लिए थे एक परिवार का और आपकी पसंद का गाना, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, पहुंचा रही हूं आप तक प्यार ही प्यार फिल्म से। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो एफएम गोल्ड AIRDelhi@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं।

अगर आपने अभी ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, तो मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं मन भावन, मैं हूं आपके साथ अपराजिता, और ये है रिक्वेस्ट बेस्ड शो। आप अपनी पसंद के गाने यहां सुन सकते हैं, और अब लगभग आधा टाइम जो है वो शो का जा चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास करीबन 23 मिनट हैं। आप अपनी पसंद के गाने अभी भी सुन सकते हैं ईमेल भेजकर अपनी रिक्वेस्ट के साथ। अगली ईमेल जो हमें मिली है वो गंगाधर सावनकर की आई है, और आप निकाह फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ विजय लक्ष्मी सावनकर भी हैं, मोहम्मद फरमान प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और आप अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेजते हैं। जिला मुरादाबाद से आपके साथ मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। भाई मूसा शेख प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपने भी निकाह फिल्म से गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। ओम कुमार का मैसेज मिलता है, कुदरत फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, और आपके साथ हैं शेख जागीर, शेख वजीर, विजय कुमार बाजार चौक मुताला से आप हमारे साथ हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया और सोनू एंजल पप्पी भाटिया का मैसेज हमें जमशेदपुर से मिला है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं आप। प्रकाश वर्मा भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। पिघलता आसमान फिल्म से आपने एक रिक्वेस्ट लिख भेजी है। प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा आपके साथ हैं। तो अगला जो मैसेज है या अगली जो रिक्वेस्ट है वो किसकी पसंद की होगी, मैं आपको बता देती हूँ। संदीप और ज्योति मक्कड़ का मैसेज हमें मिला था इस गाने से पहले जो हमने गाना सुनवाया, और क्योंकि आज आप लोगों की एनिवर्सरी है, आपने गाने की रिक्वेस्ट की एक दूजे के लिए फिल्म से, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये गाना आप तक पहुंच रहा है। तब तक कुछ और नाम शामिल करना चाहती हूँ। हमारे पास संदेश आया है, देखिए पढ़ते पढ़ते मैसेज कैसे सेकंड पेज पर भाग जाते हैं। जगदीश कुमार प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके साथ है राहुल, रितिका नांगलोई से। साथ ही मैसेज मिलता है उजमा शेख का, आप आन फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं गंजुंडवारा से। शिफा शेख और रिफा शेख आपके साथ हैं। राजू मिगलानी प्रोग्राम सुन रहे हैं, ममता फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं दुर्गा कॉलोनी हासी से। बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू आपके साथ हैं। और नेक्स्ट ईमेल जो आई है वो अकरम हुसैन प्रिंस की है। आप मुसर्रत जहां, नाज, तलत जहां, फरहत जहां, रिफत जहां, नुजहत, साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज के साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल ये गाना आप सब इंजॉय कीजिए, मैं भी कर रही हूँ स्टूडियो में बैठकर।

गिरीश बम, वैशाली बम, अजिंक्य बम हमारे साथ हैं वडोदरा से, और आप गाना सुनना चाहते हैं बॉर्डर फिल्म से। अगली जो ईमेल आई है वो कुणाल सिंह की हम तक पहुंचती है। दादरी गेट भिवानी से आपके साथ है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, और आप कोई भी गाना हमारी पसंद का सुनना चाहेंगे एफएम गोल्ड पर। इसी के साथ मैसेज आता है हमारे पास अमन सचिन जयराम खोरवाल का। आपके साथ दीपांशु खोरवाल भी हैं, अनोखी अदा से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, उत्तम नगर से। तुलसी मस्कीन का मैसेज हमें मिलता है, आपके साथ शहादरा से हैं वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। अगली ईमेल आती है शमशूल कमर राही की, गंज डुंडवारा से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, और आपके साथ है शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान। इसी के साथ धर्मेंद्र छीपा का भी मैसेज हमें मिल जाता है भोपालगढ़ राजस्थान से। कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार आपके साथ हैं, और शिकायती संदेश है, मैं ज़रूर इसे भी शामिल करूंगी। आप कहते हैं कि 45 मिनट पहले आपने संदेश भेजा था, लेकिन आप ये बताइए कि कब मैंने ऐसा किया कि किसी और का संदेश ना शामिल किया हो, और ऐसा वादा किया हो कि मैसेज शामिल करूंगी और ना किए हों। कॉन्टिन्यूस मैसेज शामिल कर रहे हैं, इतनी सारी ईमेल्स आप लोगों की आती हैं कि सभी को समेट पाना, ऐसा मैं कई बार कहती हूँ इस शो के दौरान, सभी को समेट पाना 50 मिनट के भीतर थोड़ा असंभव होता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम बैक टू बैक आपके संदेश गानों के साथ शामिल करने का प्रयास करते रहें, और वो हम करते भी हैं। तो आपका नहीं ईमेल शामिल होता तो आपके किसी दोस्त का नाम उस समय पढ़ा जा रहा होता है। सुरेश नारंग हमारे साथ हैं।

आप सहारनपुर से आशा नारंग के साथ और सोनाली नारंग के साथ प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। घर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे पास रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद इरशाद और दिलावर खान की। आपके साथ है हसीना बानो, दिलावर खान, एलिजा नायब और लड्डू, और पिघलता आसमान फिल्म से ये गाना आप सुनना चाहते हैं। मैं पहुंचा रही हूं आप तक किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में। खूबसूरत ये गीत मेरे भी दिल के बेहद करीब है।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और प्रोग्राम है मन भावन, जहां हम आपकी पसंद के गीत, आपके रिक्वेस्ट किए गए गीत, आपके दिल के बेहद करीब जो गाने हैं, ऐसा मैं मानती हूं, उन्हीं की हम रिक्वेस्ट करते हैं ना। जो गाने हमें बेहद पसंद होते हैं उन्हें हम बार बार सुनते हैं और कई बार सुनना पसंद करते हैं, अलग अलग मौक़ों पर सुनते हैं। कई बार तो एक दिन में एक साथ ही कई बार एक ही गाने को सुन लिया जाता है, तब भी कम लगता है, ऐसा भी होता है ना। तो चलिए देखते हैं कि अब किसका पसंदीदा गाना जो है वो हम यहाँ सुनवाएंगे। अगला मैसेज हमें भारत भूषण का मिलता है और आपके साथ है अंजू श्रीवास्तव। दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष, बेंगलुरु से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। अफरोज शेख प्रोग्राम सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका नाम शामिल नहीं होता, तो अफरोज जी खुशी मना

ने का समय आ गया है। आपका नाम तो हम शामिल कर चुके हैं, जॉन डिकोस्ट्रो, पर्ल विलिस और रोजी आपके साथ है जनकपुरी सहारनपुर से। यादों की बारात फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट की है। मैसेज आता है हमारे पास भगवती सिंह का, और प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं, दिल्ली से ही हमारी पुरानी लिसनर हैं। नवाब अहमद का मैसेज आता है, आपके साथ है अशरफ अली, सिराज बबलू खुराना। और अगला मैसेज संजय ढींगिया का हमें मिलता है बागपत से, आपके साथ नमन ढींगिया और अपार ढींगिया भी हैं। प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं आप और हमारी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। बबलू ठेकेदार का भी मैसेज हमें मिलता है, शेख वजीर शेख शगीर और साहिल शेख आपके साथ हैं। अगला मैसेज जो है वो कौशल्या देवांगन का हमें मिला है, आपके साथ डिंपल और हेमलता देवांगन भी हैं। धनवान फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट की है। मोहम्मद इरशाद प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपके साथ हैं अहमद शाह, शाह जहां बेगम और कस्बा बिलराम से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। अगला संदेश अंकित कांगड़ा का है, और आप प्रिंस पोर्ट, मूनी कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा के साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और आप ही के साथ आपके दोस्तों के कुछ और संदेश हमारे पास पहुंच गए हैं। लश्कर सुशील अकेले हम अकेले तुम फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ हैं करण, पारस, शिवानी, रुद्रांश और मुनी। इसी के साथ डीबी राणा साहब का मैसेज मिलता है हमें, आरजू फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में। बोधराज खोरवाल प्रोग्राम सुन रहे हैं, जॉन सीना, बिया टेलर, सुमन सरिता के साथ नांगलोई से। और मैसेज आता है दिलावर खान का, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू आपके साथ हैं। असलम मंसूरी मैसेज करते हैं हमें, फहीम मंसूरी के साथ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। नवाब अहमद हमारे साथ हैं, सलीम अख्तर, सुराज मिथुन और बबलू कश्यप हैं आपके दोस्त, उनके नाम भी आपने शामिल किए। अनिल मोहन का मैसेज हमें मिलता है मुल्तानी डांडा से, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक आपके साथ हैं। नवी हसन अब्बासी का भी मैसेज हमें मिलता है, एटा से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी के साथ, और सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी भी हैं आपके साथ। किदवई नगर सिद्धपुरा से जुबैर अली खान का भी आपने नाम शामिल कर दिया, डीकेपी परिहार यानी कि धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार प्रोग्राम सुन रहे हैं। जगदीश कुमार का मैसेज हमें मिलता है नांगलोई से, और कुछ और मैसेज हैं, फैज़ अहमद खत्री, भारत भूषण, राजकुमार डूडी, महेश साहब, यूनिस खत्री, नासिर शेख, असलम मंसूरी, राजवीर सिंह, दिग्दर्शन गौर, सीताराम कांगड़ा, अल्तमश खत्री, संजय ढींगिया, बब्बल, अनिल मोहन, एसपी गोयल, गुरप्रीत, गुरमीत सिंह, दारा सिंह, इशाक मोहम्मद और आपके साथ हैं खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, हसनैन रजा और गसैया फातिमा। तो इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची है छत्तीसगढ़ से, जो नाम अभी हमने शामिल किए, उमराव जान से यह खूबसूरत गीत आप सभी सुनने वालों के लिए जिन्हें लगता है कि हमारे नाम शामिल नहीं हुए, तो पूरी कोशिश रही सभी के नाम शामिल करने की, और आप मान लीजिए आप हमारे दिल में बसते हैं, कुछ नाम छूट जाते हैं समय की कमी की वजह से। ये गाना आप सबको सुनवा रही हूँ।

इस गीत के साथ आप सबको छोड़े जा रही हूँ फिलहाल कुछ समय के लिए, आपसे लूंगी विदा। समाचारों के बाद एक बार फिर आपसे मिलना होगा FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तथा देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय

0: किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपी। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज सचेत ने मंगलुरु के तट पर एक समुद्री खोज और बचाव अभियान के दौरान मुश्किल में फंसी भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब समुद्र में मंजू माथा के ढांचे को नुकसान पहुंचने और नाव में पानी भरने के बाद सभी बचे हुए लोगों को रिमोट से चलने वाले लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बचे हुए लोगों को मदद और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मैंगलोर लाया जा रहा है। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना की आशंका वाले और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Indian Coast Guard ship Sachet has rescued 6 fishermen from the distressed Indian Fishing Boat or IFB Manju Matha in a maritime search and rescue operation off the coast of Mengaluru. In a social media post, ICG said that all the survivors were rescued using remote-operated life buoys after IFB Manju Matha suffered hull damage and flooding in rough seas yesterday. ICG added that survivors are being brought to New Mangalore for aid and handover to local authorities. The Ministry of Defence said that the operation stands as a testament to the Indian Coast Guard's unwavering commitment to safeguarding life at sea. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise, in Delhi over 13,000 booth level officers or BLOs will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of electoral rolls. Addressing media, Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar said that claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India, enabling Indian customers to transfer money almost instantly at minimal costs. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India, NPCI, International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the inauguration of services at the Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. India has reaffirmed its strong support for the Financial Action Task Force, describing it as an indispensable pillar of the global fight against terrorism, against terror financing and money laundering.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और सुनवा रही हूं आपको अमर अकबर एंथनी से एक बहुत ही प्यारा गाना।

0: दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का विवरण इस प्रकार से है। पदों की श्रेणी समूह क शिक्षण में सहायक प्रोफेसर के कुल दो पद और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nsut.ac.in। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वाणी चिकित्सक, वरिष्ठ आशु लिपिक, रेडियोग्राफर ग्रेड वन और प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड वन। इसके लिए विस्तृत जानकारी यदि आप चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट recruitment.svnirtar.in। राष्ट्रीय डोपरोधी एजेंसी नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक निदेशक, विधि अधिकारी और निजी सहायक। इन रिक्तियों के लिए आवश्यक भर्ती का विवरण अर्थात निर्धारित योग्यता, पात्रता मानदंड आदि की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय डोपरोधी एजेंसी की वेबसाइट www.nadaindia.org। भारतीय प्रेस परिषद में प्रधान निजी सचिव का एक पद रिक्त है जिसे भरा जाना है और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रेस परिषद की वेबसाइट www.presscouncil.nic.in। कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ओडिशा आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कर सहायक आशुलिपिक ग्रेड दो, बहुकार्य कर्मचारी। कुल 12 रिक्तियां उपलब्ध हैं इन पदों के लिए। पात्रता मानदंड और आवेदन प्रारूप की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त हो गया है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रोज की तरह चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, ये जानने क्या कुछ है उनके पास खास। और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती ही है हमारी नजर बराबर। और उसके बाद हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संक में मैं हूं मुनीष शर्मा और हमारे साथ हैं सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
3: नमस्कार मुनीष, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एंड एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ परिक्रमा। मुनीष ने आपको बता ही दिया है क्या कुछ है आज के हमारे शो में, एंड ऑफ कोर्स विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द शो मुनीष विद द लेटेस्ट हेडलाइंस। Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion.
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू।
3: India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency.
0: ईरान के दोहा में बैठक से इनकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार।
3: IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, central Maharashtra, Konkan and Goa for the next 2 days.
0: और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हार कर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है।
3: And now, हस्बे दस्तूर मुनीश, हम लोग शुरू करते हैं देश की परिक्रमा, लेकिन उससे पहले हमारा सबसे पहले जो सेगमेंट होता है डेटलाइन इंडिया, ऑफ कोर्स इन विच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स दैट

0: take place at the national or global level. Today we are going to talk about three special days that are observed today, Monish. Of course, first is World Social Media Day, second is International Day of Parliamentarism, and World Asteroid Day is also observed today. Lekin sabse pehle jo hai social media ki baat ki jaye, Monish.
1: Bilkul Saira, dekhiye aadim gufaon ki deewaron par ukere gaye jo bhitti chitra yani shail chitra bhi jinhe kehte hain, unse lekar aaj smartphone ki screen tak insaan ne hamesha apne vicharon, apne anubhavon aur bhavnaon ko saajha karne aur dur daraz ke logon se जुड़ने की इच्छा का परिचय दिया है और यही यात्रा भाषा लिपि मुद्रण क्रांति और अंततः इंटरनेट के जरिए सूचना क्रांति तक आ पहुंची, जिसका सबसे प्रभावशाली और व्यापक स्वरूप आज हमें दिखाई देता है सोशल मीडिया के रूप में, है ना?
0: That's right, Monish. Today is 30th of June, a day that is observed across the world as a social media day. Well, social media day is all about recognizing how social media has transformed the way we connect, communicate and share our lives. Whether it's posting a photograph, learning something new or just chatting with friends across the globe. Social media has become a part of our everyday routine, and not just routine, I think it dictates our lives today, isn't it?
1: बिल्कुल, ये सोचना अद्भुत है सायरा कि सिर्फ एक क्लिक से हम हजारों किलोमीटर दूर वैसे बैठे हुए किसी भी इंसान से जुड़ जाते हैं, विचारों को साझा करने से लेकर उपलब्धियों का जश्न मनाने तक। सोशल मीडिया ने सचमुच दुनिया को बहुत ही छोटा बना दिया है।
0: That's right, Monish. And it's not just about staying connected, but social media has become a powerful platform also for students, artists, entrepreneurs and creators to showcase their talents and reach audiences worldwide.
1: दरअसल 21वीं सदी में सोशल मीडिया सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि विचारों के आदान प्रदान, जनमत निर्माण, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, सामाजिक आंदोलनों और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सशक्त वैश्विक मंच भी बन गया है। इसने समय और दूरी की सीमाओं को लगभग खत्म कर दिया है और पूरी दुनिया को एक जीवंत वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। कोविड-19 के दौरान यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे मंचों ने लाखों विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई, वहीं प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों, रक्तदान, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और लापता लोगों की खोज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया का समाधान प्रतिबंध नहीं बल्कि प्रभावी नियमन, डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार उपयोग है।
0: That's right, Monish. It has made possible for people to stay in touch with friends and family who live very far away, to connect with people who share their interests and to learn about news and events from all over the world. Social media has also had a significant impact on businesses. Companies use social media to connect with customers, promote their products and services and build brand awareness. It can also be used to gather customer feedback and insights, which can help businesses improve their products and services.
1: लेकिन सोशल मीडिया के कई फायदे होने के साथ साथ इसका समझदारी से इस्तेमाल करना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मुनीश, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन विच हैज बिकम द नॉर्म अनफॉर्चुनेटली दीज डेज, और प्रॉब्ली बिलीविंग इन फेक न्यूज, क्योंकि बहुत से अभी भी लोग हैं जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते हैं विदाउट इवन री चेकिंग, हम लोग जो है उनको जो है बिलीव कर लेते हैं, एंड दैट ऑब्वियसली गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ रूमर्स एंड फेक न्यूज, और इवन कंपेयरिंग आवर सेल्स विद अदर्स, बिकॉज सबकी दूसरों की जिंदगी जो सोशल मीडिया पे लगाते हैं, ऐसा लगता है कि वाह कितनी परफेक्ट लाइफ है, बट ऑफकोर्स वी नोबडी post their struggles, their hard days on social media. So one should not believe that, you know, everything on social media is, you know, rosy. We have to, of course, counter its negative effects on human psychology as well. That's why we say that digital responsibility is very important. Always think before we post or even forward. Verify information before sharing it. And remember that kindness matters online just as much as it does offline. इसलिए जो ट्रोल एक वर्ड हम लोग ने साथ साथ जैसे सोशल मीडिया का यो कह सकते हैं कि राइज हुआ, तो ट्रोलिंग का भी बहुत ज्यादा उसमें राइज हुआ. सो वी शुड रिमेंबर दैट रिस्पेक्ट शुड मार्क आवर कन्वर्सेशंस ऑन सोशल मीडिया.
1: जी हाँ, विश्व सोशल मीडिया दिवस सिर्फ उत्सव का अवसर नहीं है बल्कि आत्म मंथन का भी एक दिन है. यह हमें प्रेरित करता है कि हम सोशल मीडिया की अपार संभावनाओं का सकारात्मक, जिम्मेदार और तथ्यपरक इस्तेमाल करें और इसे मानवता, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के हित में अधिक उत्तरदायी और रचनात्मक माध्यम बनाएं, और शायद इसीलिए

0: सायरा आप जानती हैं कि अब नाउ इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर न्यूज़ बुलेटिन ऑल्सो टू प्रेजेंट फैक्ट चेक बिकॉज इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ओनली फैक्ट रीचेज आर ऑडियंस एंड स्पेशली दोज हु फॉलो अस एंड हैव फेथ इन अस और बाकी क्या कहा जाए वर्ल्ड सोशल मीडिया डे हमें सोशल मीडिया के संभावित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों की याद दिलाता है.
1: That's right, and at the end of the day, social media is just a tool. It can inspire, educate, entertain, and connect us, but it's up to us to use it in a positive or meaningful way, as you rightly said, Monish. So on this day, let's celebrate the incredible opportunities that it offers, while also remembering to stay safe, respectful of others, and balance in our online lives.
0: सोशल मीडिया का जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करके हम एक ज्यादा सकारात्मक और उत्पादक ऑनलाइन समूह बनाने में मदद कर सकते हैं.
1: Now let's talk about our second topic, Monish. We are observing the International Day of Parliamentarism. This day celebrates the important role that parliaments play in strengthening democracy and giving people a voice in how their country is governed.
0: दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये दिन 30 जून को मनाया जाता है क्योंकि 1889 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिसे IPU भी कहते हैं की स्थापना हुई थी.
1: एंड इन 2018 द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली डिक्लेयर 30th ऑफ जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड.
0: और अब आपसे एक छोटा सा सवाल. दोस्तों जब आप पार्लियामेंट या संसद शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है?
1: Well, debates, discussions, of course, making laws is the place where elected representatives come together to discuss issues that affect the lives of all the citizens.
0: आधुनिक संसदें ज्यादा महिलाओं और युवा प्रतिनिधियों को शामिल करने तथा नागरिकों की बेहतर सेवा के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही हैं.
1: And I think that's the beauty of democracy, Monish, that it gives people the opportunity to participate, express their opinions and contribute in building a better society.
0: और भले ही हर कोई सांसद नहीं बनता, लेकिन हर नागरिक की भूमिका होती है जानकारी रखना, जिम्मेदारी से वोट देना, अलग-अलग विचारों का सम्मान करना और नागरिक जीवन में हिस्सा लेना.
1: Well, Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to all elected representatives on International Day of Parliamentarism and to democratic institutions across the world. So, on this International Day of Parliamentarism, let's appreciate the institutions that help uphold democracy and remember that good governance begins with active and informed citizens.
0: क्योंकि जब लोग हिस्सा लेते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है.
1: Now coming to our last topic, Monish, we are also observing World Asteroid Day today on 30th of June. It's a United Nations recognized day that is dedicated to raising awareness about asteroids, space science and the importance of protecting our planet from potential asteroid impacts.
0: वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 2014 में अंतरिक्ष के शौकीनों के समूह ने से शुरू किया था जिनमें एस्ट्रोफिजिसिस्ट ब्रायन मे, अपोलो 9 के अंतरिक्ष यात्री रस्टी श्वेकार्ट, फिल्म निर्माता ग्रेगोरिच रिजर्ट्स और B612 फाउंडेशन की प्रेसिडेंट डेनिका रेमी शामिल थे.
1: Later in 2016, the United Nations officially proclaimed 30th of June as World Asteroid Day, highlighting the need for global cooperation in monitoring objects that travel close to the Earth. In fact, aaj 30 June hai, 3 din pehle hi agar aapko yaad ho, har taraf news mein tha that a very large asteroid is just passing through the Earth aur khali choti telescope ya even binoculars se wo visible tha. So I think thank God that obviously it did not impact the Earth, but of course asteroids continue to intrigue a lot of curiosity.
0: और अब एक मजेदार सवाल दोस्तों, जब आप एस्टेरॉयड शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? अंतरिक्ष में तेजी से घूमते विशाल काय चट्टानी टुकड़े और शायद कुछ साइंस फिक्शन फिल्में, है ना?
1: But in reality, asteroids are actually fascinating objects that help scientists learn more about the history and formation of our solar system.
0: बिल्कुल, दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पता लगाते हैं, उन पर नजर रखते हैं ताकि उनके रास्तों को बेहतर ढंग से समझा जा सके और ये पक्का किया जा सके कि हमारा ग्रह सुरक्षित रहे.
1: Well, World Asteroid Day is a wonderful reminder that anyone interested

0: The observance of World Music Day in Manipur symbolized the importance and inseparableness of music with the Manipuris. The ritual singing and drumming named Nat Sankirtana of Maitri community is recognized on the UNESCO Intangible Cultural Heritage List, and traditional music of the state is the foundation to local folklore and myths. Jeje Thoksom, Akashvani News Parikrama, Imphal.
1: पूरी तरह से बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने देश के बच्चों और माताओं की पूरी बेहतरी के लिए, मैं आपको कह रहा था कि बहुत ही बड़ी डिजिटल छलांग लगाई है, और वहीं गुजरात में भी हेल्थ सेक्टर में पहले से हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और जन्म से 18 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के नतीजों में बड़े बदलाव लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई पहल की है। इसके तहत मातृत्व और बाल विकास के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसके साथ ही अब गर्भावस्था से किशोरावस्था तक हर बच्चे पर इस पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की नजर रहेगी। इतना ही नहीं, अब कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का सारा ब्यौरा एक मंच पर रहेगा। इस परियोजना की सफलता को मापने के लिए एक विशेष परिणाम उन्मुख संकेतक तय किए गए, उन्हें प्रत्यक्ष निगरानी में रखा जाएगा। इसमें उच्च जोखिम वाली गर्भधारण, एनीमिया, बीएमआई और टीकाकरण की स्थिति की निगरानी शामिल होगी, और 1.5 किलो से कम वजन वाले नवजात शिशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पायलट परियोजना की सफलता के बाद इसे पहले चरण में पूरे गुजरात में और फिर देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्मार्ट ट्रिगर्स कैपेबिलिटी है। अगर कोई खतरा पता चलता है तो सिस्टम अपने आप अलर्ट कर

0: देगा और वह अलर्ट तालुका, जिला या राज्य स्तर के अधिकारी को भेज दिया जाएगा। समस्या हल होने तक एक्शन ट्रेकिंग जारी रहेगी। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियचा।
1: And from the western coast, we come back to the northeast. In a historic moment for the Indian Armed Forces and Indian Parasports, Subedar Hokato Hodorje Sema of the 9th Assam Regiment has become the first Indian Paralympian to be conferred the Ati Vishisht Seva Medal. President Draupadi Murmu presented the prestigious award during the Defence Investiture Ceremony.

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी यानी अपने दोस्त जो आनंद जी थे उनके साथ मिलकर हमें बड़े ही प्यारे प्यारे यादगार से ऐसे गीत दिए जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। वर्ष 1992 में संगीत के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उन्हीं के संगीतबद्ध कुछ रचनाएं जिन्हें आज भी उनके चाहने वाले याद करते हैं।

0: दोस्तों ये थी वो यादगार रचनाएं जिन्हें कल्याण जी ने अपने भाई जिनके साथ उनका व्यवहार जो है वो बड़ा ही दोस्ताना था उनके साथ मिलकर के ये संगीत रचनाएं हमें दी। और अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आगे दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और सायरा को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, सोनहत, नवगई, गैना के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, खलीबा, पड़ौली, अमड़ी, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सस्कालो, ढेकी डोली, एरंड, नवापारा, गढ़गांव, बर्डा।

0: बाण चोरकी पानी दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थलगांव बगीचा दुलदुला में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, गट्टी बुड़ा, हल्दी मुंडा, ढोढ़ा डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 126 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गठघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। और अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ओवल लंदन में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे शाम 7 बजे से 7:30 तक, रात 8 बजे से 8:45 तक और रात 9 बजे से मैच की समाप्ति तक। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें अपन गोठ में चर्चा होगी आधा बछर बीते थे इस विषय पर, साथ ही होगा क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:45 पर सुनिएगा सुनंदा शर्मा का गाया राग बागेश्री में ख्याल। और अब कुछ कार्यक्रम कल के। पहले दिल्ली केंद्र के कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:30 पर। और कार्यक्रम चर्चा का विषय है आप सुन सकते हैं कल रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर आप सुनेंगे कल सुबह 7:05 पर। श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम आपके पत्र में कल सुबह 8:30 पर। गांधी चर्चा में सुनेगा महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ, प्रसारण समय कल सुबह 9:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे मनोज वर्मा। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। और इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन। ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, श्रोताओं की पसंद पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन में 11:05 पर। महाभारत की शकुंतला, ये नाटक सुनेगा कल दिन में 1:30 पर। लेखक और निर्देशक होंगे श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी कल शाम 5:10 पर। इसमें आप सुनेंगे क्रम आजकल, पत्र मिला और यादें। चौपाल कार्यक्रम होगा कल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में चिट्ठी मिलिस पत्रोत्तर और ए महीना के कृषि कार्य इस विषय पर चर्चा। आज के सलाहक्रम में सुनेगा जैव उर्वरक बनाएं उत्पादन बढ़ाएं, इस विषय पर दीपमाला लकड़ा विषय वस्तु विशेषज्ञ पौध रोग कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा की सलाह। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा बिजोली पांडा का सितार वादन, राग होगा किरवानी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: होगी गोधुली के पेरा और बर्दी के संग्राती महु आ गयो तुहर दुलरवा संगवारी सुमित तिवारी
1: और मैं हूँ आप मन के संगी ऋषभ देव साहू ता हम दोनों के कुतिले स्वीकारो सुघर राम राम जय जोहार। सुमित, जब दिन भर के थकान ले संझा कुन घर आबे ता दिन भर के थकान हा मिटा जाते ना।
0: बिल्कुल भाई, घर जब घर के लोगन के चेहरा देखबे ना तो मन इसने प्रसन्न हो जाते है ना। और ऋषभ, हमन युवा मन है ना भारी अकन सोचतन, माने बड़ा कन सपना हमार मन के रही थे कि ये करबोन वो करबोन गाड़ी घोड़ा नौकरी पैसा और सपना के पाछू ना भागत रही थन भाई, और एक चक्कर मा अपन जिंदगी जिले भुला जथन।
1: हाँ श्रीतोन के सुमित, सुमित बछर के शुरुआती मा सबो मन के योजना ऊपर योजना बनाते फिर कतका कन पूरा कर पाते कौन जनी।
0: आधा जन तो दूसर दिन भुला रहे थे संगी, और कुछ मन तो कठिनाई आते था, और आलसी मन के तो का कहना।

0: ये दे बछर हा आधा हो गए पता ही नहीं है का करना है, कीके तोरा पता ही नहीं का करना है,
1: पता है ना?
0: हाँ नहीं पता रहना चाहिए भाई।
1: संगी पोट गोट उसारे हस ते हा सिरतोन मा, ए बछर के आधा महीना आज सिरा गे।
0: बिल्कुल
1: भाई। अब हमला सोचे के विषय हरे कि जौन सपना हम संजो रहे कि ए बछर करबो की के वो अभी कतका कन पूरा हो है।
0: यही तो गुने के सीख है संगी। भाई फिर ये बता मोला तोर बर बिहाव हो गए कि करत हस कि नहीं करत हस?
1: अब काला बताओ संगी, खोजत खोजत बछर सिर आगे, पैसा सिर आगे और पाए कुछ नहीं
0: है। या अबे दे 15 दिन हो तहां ले देव सुतनी के बाद मुहूर्त तको सिराजी है। तान भाई ढलंगे तो बिहाव
1: बेरा कतका जल्दी ढलंग जाते पता नहीं, घलो नहीं चले सुमित।
0: बिल्कुल भाई ऋषभ, बेरा हा चुपचाप चलते, वो कोनो ढोल नहीं बजावे कोनो नगाड़ा नहीं बजावे, बस निकल चलते।
1: बहुत जन ता कैलेंडर ला देख के घबरा जाते, साल के आधा हो गए कुछ खास नहीं पाए हो कही के।
0: भाई एक काकर से तू जानता संगी, एक हर से ती होते कि हम सोचथन काली करबो की के, और भाई के काली करे नहीं पावन। देखे से ती तो कहे जाते काल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। संगी हो जिसे खेल में पहली पारी खराब हो जाते तो दूसर पारी हा ले जीते जा सकते हैं ना, वैसे जिंदगी में घलो आधा बछर भले निकल गए है फिर आधा बछर बाद भी नवा शुरुआत हो जा सकते।
1: सिरतोन के संगी, हमर जिंदगी घड़ी के काटा सरीखे, वो रुके नहीं, चाहे हमन खुश होवन दुखी होवन काम में रहन या आराम में, वो अपन बेरा ले ही चलते।
0: संगी हो सोचो ना, बछर आधा बीत गए है तो ये आपके स्वयं सोचे के विषय आए कि हमन हाँ का सीखें का खोएन का पाएन, ये जम्मो सवाल के जवाब कोनो किताब में नहीं मिले संगी हो, या ककरो जाए बाद हमला ना नहीं मिले, बस हमला उस सवाल के जवाब मिली खुद बर ईमानदारी ले वो विषय के बारे में गुने ले।
1: आज के युवा मन बहुत जल्दी में रही थे, उखर हाथ के मोबाइल में पूरा दुनिया भरे हवे, फिर जानकारी और समझदारी में फर्क होते सुमित।
0: बिल्कुल भाई,
1: वीडियो ले देखे के सीखना और अनुभव ले सीखना दोनों में जमीन आसमान के फर्क होते हैं।
0: बिल्कुल भाई, वो की थे ना रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में अंतर होते हैं। उसने चाहे सिरतोन संगी हो आधा साल तो बीत गया भाई, माने सिर्फ तारीख बदल, आधा साल के बीतना मतलब खाली तारीख बदलना नहीं हुआ संगी हो, ये असली मौका रही थे अपन रद्दा ला पहचाने के, अपन आप ला चिन्हे कि हम कौन मेर हवन, अपन जे हमन गलती हमन अलग थे ओला तुरते सुधरा लो। जिंदगी में सबले बड़का नुकसान असफल होना नहीं हुआ संगी हो, भलुक कोशिश करेला छोड़ना ही हमार सबले बड़े भूल होते और असफलता के चिन्हानी होती।
1: सिरतोन के संगी, संगी हो मैं कहतो कि जब तक मन में विश्वास हो तब तक देरी नहीं हो है।
0: बिल्कुल,
1: परीक्षा के आखिरी एक घंटा तको महत्ता रखते संगी हो, खेल में आखिरी दाव तको जिता देते।
0: पोटगोट के भाई जी सब हैं। अब संगी हो जैसे पोटगोट कहते थे तीसने अब 6 महीना हवा है, अभी कम मत समझो, अपन बेरा ला, अपन बेरा ला शिकायत ला मत करो, अपन बेरा ले भाई वो बेरा ना तैयारी में लगाओ और तुलना नहीं सुधार लावा।
1: एकर ले ये हो ही संगी हो कि बाद में हमला कोनो अफसोस नहीं हो कि काबर नहीं प्रयास करे हन कही के।
0: तो संगी हो मेहनत करो और बाकी आधा साल ला सार्थक बनावा और संग में विश्वास संग अपन रद्दा ला सुधारो और आवा, यही संग में अषाढ़ के सुघर मजा लो उड़ावा।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत, जेकर बोल रही मजा आही एसो के असाड़ मा, और जेकर सोर रही है कृष्ण कुमार पाटिल और साथी मन।
4: अवेला अपन अंतसले सुने पर चाहरीन हमारे ये संगी मन हा, जे मन है सिरे गाथा पाले, धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका, पूनम साहू मन। पिपरिया ले संगी हावे कमलकांत गुप्ता, दीपा रिम झिम गुप्ता। दरचूरा ले है ददुआ साहू, भूरी रेखा, मोतीलाल साहू। देवरी भाटापारा ले है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। और शिक्षक नगर दुर्ग ले संगवारी हावे राकेश वर्मा, सचिन वाणी वर्मा संगी मन। तरी सब भाई, आज कौन सा बार हरे?
3: आज हरे मंगलवार।
4: मंगलवार, मंगलवार माने आज होते ज्ञान के खजाने के दिन, है ना? और ज्ञान के खजाने बगराए बार चल शुरू करथन हमारे क्रम सवाल जवाब। तो संगी मन हा गोरा

0: करत होही कि सुमित ह हमला पाछू अंग में पूछे गए सवाल ओकर सही जवाब ला बताती छ कि के है ना तेख बार संगवारी मन जन सही सही जवाब पठो तेख मन के नाम ला बता दरबू है ना त एक काम करथन ऋषभ ते है ना संगवारी पाछू अंग में पूछे गए सवाल मन ला बोलत जा मैं ओकर जवाब मन ला बता जत संगवारी मन
1: त संगवारी हो पाछू अंक में सवाल जवाब पूछे रही जेकर अंक रही से 236 जेकर पहली सवाल रही से संगवारी हो 52वां G7 शिखर सम्मेलन कौन शहर में आयोजित करेगे
0: क्रम सवाल जवाब अंक 236 के पहले या सवाल के सही जवाब हरे संगी हो एविथन शहर फ्रांस में जेकर स्थापना G7 की स्थापना में वर्तमान में 7 देश शामिल करेगे रहा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला विशेष रूप से अतिथि के रूप में आमंत्रित करे गए रही हावे
1: संगवारी हो ए अंक के दूसरिया सवाल आए भारत के नवा थल सेना प्रमुख कौन ला नियुक्त करे गए है
0: और संगी हो ए अंक खातिर एकर सही जवाब हरे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ
1: संगवारी हो तीसरिया सवाल रही से टाइम मैगजीन मा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल भारत के कौन ला कौन खिलाड़ी ला शामिल करेगे है
0: एकर सही जवाब है संगी हो स्मृति मंधाना जेनहा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उप कप्तान है
1: संगवारी हो चौथैया सवाल रही से बछर 2026 मा कौन क्रम के विश्व योग दिवस मनाएगी
0: एकर सही जवाब है संगी हो 12वां और एला 21 जून के मनाए जाते और एसो के थीम रही से स्वास्थ्य और वृद्धावस्था के लिए योग
1: संगवारी हो पचवैया सवाल रही से राजीव लोचन मंदिर मा मिलैया प्रसाद ला का कही थे
0: एकर सही जवाब है संगी हो पीड़िया जेनहा मीठा कलेवा हरे
1: संगवारी हो छठवैया सवाल रही से रेंगे के बेर चुकिया आसन बैठे के बेर दिया आसन खाना के का अर्थ
0: एकर सही जवाब है संगी हो माड़ी या घुटना तो संगी हो ये तरी समार पाछू अंक क्रम सवाल जवाब 236 के सब वो सवाल होकर सही जवाब मन हा अब संगी मन हा जान लेथन सही जवाब पठोया संगवारी मन के नाम ला जेन मन हा हवे त ऋषभ भाई सबले पहली 4 सही जवाब पठोया संगवारी मन के नाम ला जान लेथन है ना तेखा बार फिर 5 तेखा बार फिर 6 सही जवाब पठोया संगवारी मन के नाम ला जानबो त 4 सही जवाब पठोया संगवारी मन के नाम हवे भैंस मुंडी मगर लोडले पूजा तुलेंद्र साहू पूर्वांशी साहू लक्षणपुल्य संगवारी मन हवे रामजी साहू जीवालाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू संगी मन हा और 5 सही जवाब संगवारी मन के नाम ले जान लेथन जेन मन हवे तेंदु भाटा मगर लोडले उमेद कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन दिव्यांश भूपेश शिवा निषाद मन हा गेंदा टोला बाजार राजनांदगांव ले विवेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगेश गजेंद्र गुप्ता श्यामनगर दुर्ग ले प्रदीप नीता खंडेलवाल बाघामुड़ा कोमा खान ले हवे प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी और इंच ले संगवारी मन हवे गायत्री यशवर्धन यशस्वी मन भाटापारा ले संगवारी मन हवे बचकामल मोतीलाल यादव बसंत भिगु विनय चुवाराम अब्दुल मजीद कुरैसी रेहाना बेगम मन बाजार वार्ड महासमुंद लिहे भीष्मदास मानिकपुरी नर्मदा हिरमानी दीपक लक्ष्यदास मन हम भानपुरी मुसरालय संगवारी हावे रोशन लाल वर्मा शरद मुकेश राजू वंशिका देविका रूपेश मानवी वर्मा मन खम्हार मोड़ा रे संगवारी हावे सतीश गिरी श्रेयांश शिवास एकांशी मन हम और सेजारपाल बस्तर ले हावे दुलेश्वर कुमार कश्यप कुंती कश्यप मन हम
1: और यहू संगी मन पास सही जवाब भेजे हवे ग्राम पुरैना खैरागढ़ ले पूजा जंघेल बेबी धारनी रेखा ध्रुव जंघेल मन हा ग्राम फुलझर घटा रानी ले संगवारी मन सही जवाब भेजे हवे योगेश्वर साहू डुमेश्वरी यामनी मुस्कान हर्षिता साहू मन हा रिंगली ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा मन हा ग्राम चतुर्भू सिरकट्टी पांडुका ले टीकम चंद धुरवा भूषण कुसुम वासुदेव मोक्षदेव जीतू गैंदी पुष्पा लेख गोपाल दीप्ति लक्ष्मी लवली शशि कीर्तिमान झम्बू मनहा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर वर्मा मनहा खमरिया ले साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार मनहा रानीगांव नगरी जिला धमतरी ले किलेश कुमार चित्ररेखा शुभम सेजल मनहा गुड़ाराज ले मनोज चित्ररेखा देवेंद्र लवीना चंचल वासनी और गरिमा साहू मनहा
0: अब जान लेथन संगवारी हो 6 सही जवाब पठोया हमर संगी मन के नाम ला जिन मनहावे खलारी भीम खोजले पीएल साहू सरोज छोटी पिंकी साहू मनहा पहरा हिवारा ले हावे पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर मनहा और बन बघेरा राजनांदगांव ले हावे योगेश सारवा नीरज नीलेश अंजलि योगी रोशनी सारवा मनहा चिनमिरी कुरासिया ले संगवारी मनहावे इंद्रवान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर दिनेश

0: नारायण प्रसाद कलिंद्री लहरे मनहा मदनपुर कमरधाली है सोनकली साहू श्रवण राहुल योगेश गोलू साहू मनहा लगान पंडरिया लिहा है उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल भारती बघेल बागबहरा भदरसी लेहे पन्ना लाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन मन रूपा पाली बसना लेहे हीरा लाल जगत चंद्रिका देवेश ब्रिजेश जगत मनहा मदनपुर कमरधा लिहा है श्रवण कुमार साहू योगेश साहू मनहा और ममना जिला हरी हमीरपुर उत्तर प्रदेश लिहे रामशरण लखमनी विश्वकर्मा साहिल प्रियल दिव्यांशी विश्वकर्मा मनहा और पिपरिया लेहे कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता संगी
1: और यहू संगी मन छह सही जवाब पठो है कांकेर ले फागू राम यादव ज्योति ओजस्वी यादव मनहा जवाहर नगर दुर्ग ले आरसी कामड़े विपुल करुणा मीना अश्वनी कामड़े मनहा दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ यादव मनहा पुरेना छुही खदान ले धर्मेंद्र जंगेल संतराम नागेश्वर जंगेल मनहा कोहका भिलाई ले उत्तम जंगेल मोरस अनिल अजीत आयुष नंदिनी जंगेल मनहा रोहांसी ले मुकेश साहू नंदिनी मनीष मयंक साहू मनहा बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन मनहा गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन कचरी बाई दीपक कुमार जयश्री देवांगन ऋषभ ऋचा देवांगन मनहा और यहू संगी मन है सही जवाब पठो है लुकाऊ पाली छतवन ले पुनित राम सूर्यवंशी निर्मला निहारिका पंकज सिंह सूर्यवंशी मनहा भाटापारा दतरेंगी ले नोखीलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि मनहा
0: तो ये दरही हमार सही जवाब पठोया संगवारी मन के नाम मन ला तो संगी हो जिन जन आप मन सही जवाब पठो हो तेन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई हवा और आप मन सुघर अपन पाती में अपन सवाल अपन जवाब ल पठो हो ते खबर गाड़ा गाड़ा धन्यवाद हवा इसने वो पाती अपन पठवत रहू तो संगी हो ये तरही से सही जवाब पठोया संगवारी मन के है ना तो ऋषभ अब संगी मन गोरा करत है कि कब सुमित और ऋषभ हमला अगला अंक के सवाल बता दी कि के है ना तो संगी हो आप मन पेन और कागज ला धर के तैयार रहो और ये सुघर गीत के बाद हमन आप मन ला सवाल बताबो तो आवाज सुनथनी सुघर अकर गीत ला

0: संगवारी हो भी आप मन सुनत रहे सुघर अकन माटी के गीतला जिला पंसौर म सजाय रहिन राम नारायण ध्रुव अउ साथी मन ह
1: अवेला अपन अंतस ले सुने बर चाहरिन हमर ये संगी मन ह जेन मन हे कसडोल ले कौशल्या साहू रामीलाल साहू मन ह हिंछा महासमुंद ले हावे अदाला दास वैष्णव सतीश मानस ऋचा गायत्री वैष्णव भीष्म दास मणिपुरी मन नर्मदा धाम सुरसुरी लेहे कैलाश यादव सुरेंद्र यादव डिकेन्द्र योगेश यादव मन रिंगनी छत्तीसगढ़ संगवारी हावे दिनेश करुणा वर्मा मन और सिंगा लेहे लौकु सेन प्रहलाद आदित्य आशीष प्रकाश सेन संगी मन हा तरी सब वही संगवारी मन तो अब पेन और कागज धर के अगोरा करत हो ही सुमित मन बता देतीस की के है ना तो चल झटकुन बताथन संगवारी मन ला हमार अगला अंक के सवाल मन ला
0: तो संगवारी हो सवाल जवाब अंक 237 के ये सवाल आप मन हा लिख लो पहले यह सवाल आए गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन रहीस
1: संगी हो क्रम सवाल जवाब अंक 237 के पहले यह सवाल है गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन रहीस
0: संगवारी हो ए अंक खातिर दूसरिया सवाल आए हाल ही मा छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिक खोज ले हीरा कहाँ पाएगीस
1: यंग खातिर हमारा दूसरी यह सवाल है संगी हो हाल ही मा छत्तीसगढ़ मा वैज्ञानिक खोज ले हीरा कहाँ पाएगीस है
0: संगवारी हो ए अंक खातिर तीसरिया सवाल आए छत्तीसगढ़ के सबले ऊंचा जगह कौन से है
1: यंग खातिर हमार तीसरिया सवाल हवा है छत्तीसगढ़ के सबले ऊंचा जगह कौन से है
0: संगवारी हो ए अंक खातिर चौथिया सवाल आए सिरपुर हा काकर यानी कौन से वंश के बेरा मा बौद्ध शिक्षा के केंद्र रहीस
1: यंग खातिर चौथिया सवाल है संगी हो सिरपुर हा कौन से वंश काल मा बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहीस
0: संगवारी हो पचवैया सवाल आए इंद्रावती नेशनल पार्क कहा कौन से जानवर बर प्रसिद्ध है
1: यंग खातिर हमार पचवैया सवाल हवा संगी हो जिन्हें इंद्रावती नेशनल पार्क कहा कौन से जानवर बर प्रसिद्ध हवा
0: ए अंक के आखिरी सवाल आए संगवारी हो हाल ही मा समाज सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में पद्मश्री ले सम्मानित कुल करेगी
1: यंग खातिर हमार छठवैया और आखिरी सवाल है हाल ही मा

समाज सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ले पद्मश्री ले सम्मानित कौन ला करेगे हवे। तो संगी हो ये तरीस क्रम सवाल जवाब अंक 237 के सबो सवाल मन है। अब आप मन अपन झटकून एखर जवाब ल खोजाओ और हमला पाती और ईमेल के माध्यम ले पथो डराओ। हमर जुन्ना श्रोता मन तो हमर पता ल जानते छे, फिर हमर नवा श्रोता पर हमन अपन पता ल बता देथन। तो अपन चिट्ठी के माध्यम ले हमन ला अपन जवाब पठे पर हमर पता ल लिख लो। क्रम सवाल जवाब अंक 237 युवाणी अनुभाग पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ और पिन कोड है संगी हो 492001। और आधुनिक पाती माने ईमेल के माध्यम ले घलो आपन हमला अपन जवाब ल पठो सकत हो। जे खबर हमर ईमेल आईडी हावे aiyouth9@gmail.com और संगी हो क्रम सवाल जवाब के सब्जेक्ट कोड हावे y13 जिला लिखे बार आप मना झन भूला हो। तो संगी हो एकरे संग क्रम सवाल जवाब इहे तक।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ऋषभ भाई, आज के हमारे युवा मन हावे जेखर हाथ में जिला कहे जाते कि हमारे देश के भविष्य है, है ना, ये मतलब जागे के बड़ जरूरत है।
5: बिल्कुल,
4: है नी भाई संगी हो, हमन तो शिक्षा पाए बार हम बड़े बड़े स्कूल कॉलेज ला तो जाथन, फिर हमारे बुनियादी शिक्षा ला हमन है ना भुला देते हैं, है नी, जेन होते हमारे घर के संस्कार। संगी हो, बाहरी शिक्षा तो कतको ले लो, फिर घर के सियान मन के संग में बैठ के जिन शिक्षा मिलते ना तेखर बातें चला करी थे, उखर वो पूरा जिंदगी के जिन अनुभव रही थे ना तेन हा ऐसे गाढ़ा गाढ़ा हमला मिलते अनुभव मन हा जेखर से हमारे पूरा जिंदगी संवर जाते
5: सिरतोन
4: में, है नी, तो समय है, ये बेरा है संगी हो कि हमला हम खासकर युवा मतलब जागे के है और अपन सपना अपन रद्दा अपन देश अपन समाज पर कुछ आगे बढ़े करे के हावे, है ना, तो इसने सुघर विचार सन, चलो सुनथन संगी हो ये सुघर अकन गीत ला।

0: मोर पर गंगा मोर पर काशी मोर पर चारो धाम किसानी
1: मोर पर चारो धाम किसानी मोर पर चारो धाम किसानी
0: मोर पर गंगा मोर पर काशी मोर पर

0: दुनिया माँ चित कहे हमर कुरिया,
1: चित कहे हमर कुरिया, चित कहे हमर कुरिया।
0: छत्तीसगढ़ के भुइया माँ चित कहे हमर कुरिया,
1: चित कहे हमर कुरिया, चित कहे हमर कुरिया।
0: गाँव के ताई दीदी बहनी बड़े अब्बड़ है मोर प्रिया,
1: अब्बड़ है मोर प्रिया, अब्बड़ है मोर प्रिया।
0: गाँव के ताई दीदी

0: उठो रे जवान जागो रे, संगवारी आपन सुनत रहे सुघर अकन गीत ला, जेला अपन सुरमा पिरोए रही से दुर्वा राम मरकाम और साथी मन
1: और संग मा यहू संगी मन सुने पर चाह रहीन जुनवानी दुरुगले सुरित रमेश साहू तारा विद्या जितेंद्र किशन हिरेंद्र नीलकंठ सुनीता ऋषिवन चंद्रहास संजीव त्रिलोक रंजीत और राजा साहू मन हा ग्राम भिलोरी बौलखा जिला बेमेतराले रोहिणी सी रोहिणी साहू डगेश्वरी खुलासा छविता भामिनी विधि दीपिका कविता सृष्टि रिद्धि सिद्धि डिविसा और हेमंत साहू मनहा करही बदल ले यहू संगवारी मन सुने पर चाहे रहीन पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा श्रद्धा लोचन देवेंद्र कुमार लक्ष्मीना गीतिका गुड़िया मनहा ग्राम पलौदले डोमार साहू दीपक गरीबा राम ओम प्रकाश रिखीराम साहू मनहा सुमित मया बने आए कि नो हरे
0: वाह कैसे गुठिया था जी मैं तो सबले परवित जिनिस आए बस मन के साफ होना चाहिए
1: सिरतुन कहे सुमित फिर आज के बेरा मा आरोग मया कम देखेला मिलते
0: सिरतुन संगी भई मतलब ही दुनिया हवे एमा आरोग मया कम थे छा देखेल मिलते जी
1: मया सिर्फ दू प्रेमी के नो हरे संगी मया निश्चल भाव आए जिन दू प्राणी ला एक संग्रह भाव मा जोड़ थे
0: बिल्कुल भई दू प्राणी ला एक संग्रह के भाव मा जोड़ देते दाई के पुचकार मा मया है ददा के खिसियाई मा और भाई के बड़प्पन मा मया है बहिनी के दुलार मा
1: त चल संगवारी हो सुनथनी सुघर अकन गीत ला

0: संगवारी हो भी आप मन सुनत रही है सुघर अकन गीत ला जेल अपन सुर में सजाए रहीन है सुखियारीन मानीपुरी और साथी मन
1: और संग में यहू संगी मन सुने पर चाहे रहीन बिलाईगढ़ ले रोशन लाल देवांगन कौशल्या हिमलता डिम्पल देवांगन मनहा ग्राम जुलुम ले गुहरी साहू मनहा नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत सीमा शारदा और दामनी वर्मा मनहा डोंगरगांव गावड़े राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिस्का तन्मय गजभिये मनहा भाटापाराले नारायण यदु पुनिया राकेश आरती यदु मनहा धरसीवाले छेदूलाल यादव सीता अरुणा अर्चना अनुराधा अल्पना यादव मनहा शीतला नगर दुरुगले शिवचंद्राकर और भगवान चंद्राकर मनहा
0: ऋषभ भाई असाढ़ के आती हुआ थे और पानी कहाँ है तेखर आरोप नहीं मिला थे जी
1: सिरतोन माँ बिगड़त पर्यावरण के संतुलन के सेती आए
0: बिल्कुल भाई पर्यावरण के संतुलन बिगड़ा था ना अब इखर जिम्मेदार कौन है जानथस कोनो नहीं हमन अरन नहीं तो पहली आषाढ़ और सावन के पानी के का कहना आहा भुइया के प्याज बुझाए के संगे संग ना सबो कोती हरिया पाना देके ना नवा उमंग आ जाती सावे
1: से तो उनके है सुमित पानी बड़ जरूरी है संगी पानी तब मिल जाते फिर ओला अपन बरो

0: पर उपयोग करन अउ बाचे पानी हाला संजो के राखन ये जवाबदारी घलो हमरो होते।
1: भाई बिल्कुल, विशेष रूप ले संगी हो बरसा के पानी हा के संग सबो कति नवा जन्म के महत्ता देखे बर मिल जाते और संगे संग सीख मिलते कि पानी के एक बूंद भी ना कतका बड़का भूमिका निभाते हमर भुइया के जीवन बर।
0: त सुमित, सुघर अकन बरछा के गोट ला ते सोरियावत हस, त चलना सुनथन सुघर अकन बरछा के गीत
1: ला औ नहा लेथन ए बरछा के गीत मा।

0: संगवारी अभी आप मन सुनत रहे सुघरकन माटी के गीतला जेमा पंसवर देरहीन पवन चंद्राकर अउ साथी मन ह
1: अविला सुने बर चाहरीन हमारे संगी मन ह जेन मन हे बेमेतराले सुरेश सारथी पूर्णिमा सारथी मन कुर्मी पारा बेमेतराले हे कमलकांत सारथी रुद्र सारथी अउ पेंशन बाड़ा रायपुर ले हे रोमनाथ यादव वंदना सूर्य प्रकाश शीला कनक गुनगुन बेबी आदित्य तन्मय यादव मन ह साकरा भूमिया ले हावय मनोज निषाद प्रतिभा पूर्वी खुशांत निषाद बना तो संगी हो जाए के बेरा हो गए तो काली के कार्यक्रम के बारे में जान लेता
0: तो संगवारी हो काली के कार्यक्रम सजी हिंदी में जेमा क्रम रही पत्र मिला औ यादे
1: तो संगी हो आज के कार्यक्रम आप मानला कैसे लगी समल अपन पाती लिख के जरूर बताओ संगे संग अपन सेहत के विशेष ध्यान रखो एक संग ही विचार संग अपन संगी सुमित तिवारी
0: और अपन संगवारी ऋषभ देव साहूला देव विदा
1: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में

0: पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब चार दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के छह मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी छह मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
3: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। वीबी जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली ले हो ही लागू। राज्य सरकार ह सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे है। और सरगुजा जिला में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आज सिरागे। समापन समारोह में मुख्यमंत्री होइन शामिल। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में काली 1 जुलाई लागू हो जही। ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के जगह लिही। एकर तहत हर एक ग्रामीण परिवार मल्ला हर वित्तीय बछर में 125 दिन के रोजगार देवाय के गारंटी दे जाही। ये योजना के तहत कोनो भी मनखेला बेरा मा काम नहीं मिली त ओला बेरोजगारी भत्ता दे के प्रावधान घलो है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र मन मा सड़क तरिया जल संरक्षण सिंचाई वृक्षारोपण सार्वजनिक परिसंपत्ति के निर्माण और आने आने विकास काम मन ला प्राथमिकता दे जाही। छत्तीसगढ़ में ये योजना के प्रचार प्रसार पर ग्राम सभा चौपाल पोस्टर बैनर मुनादी रथ प्रचार और डिजिटल माध्यम के उपयोग करेगी। उन्हें सरपंच सचिव रोजगार सहायक स्व सहायता समूह के माई लोगिन जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन रहा ले लोगन मल्ला योजना के जानकारी देगी। एकर अलावा ग्राम और जनपद पंचायत के संगे संग जिला स्तर में प्रशिक्षण बैठक और ग्राम सभा के आयोजन करेगी।

0: केंद्र सरकार ह पेट्रोल और डीजल के बेची और खरीदी में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध ला 1 जुलाई ले हटाए के फैसला करे है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है कहे है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनी के खुदरा पेट्रोल पंप में अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय डहाले कहे गए है कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पाद के आपूर्ति सामान्य हो गए है और पेट्रोल डीजल पूरा मात्रा में हवे। एकर सेती जनहित में ये अस्थायी रोक ला वापिस लेके फैसला ले गए है। नई दिल्ली में राखे गए 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक ला राष्ट्रीय स्तर में सराहना मिले है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विकसित ये मॉडल के सराहना करत ग्रामीण आवास निर्माण लग गति देने वाला बतायें। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व तो उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा करें। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहने कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत के सपना पूरा नहीं हो सका है। हरियाणा के हिसार में खेत बचाव अभियान के समापन समारोह ला संबोधित करत श्री चौहान कहने कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करे में काम करत है जौन माटी और ओमा जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी दी है। ओमन किसान मला जैविक खेती अपनाए के सलाह दी। राज्य सरकार ह सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे है। अब किसान मन ला पाछू खरीफ बछर जैसन उखर पात्रता के मुताबिक एक मुश्त यूरिया देवाय जाही। प्रदेश में यूरिया के पर्याप्त मात्रा देखत पहली लागू कुछ एक रोक मल्ला खत्म कर दे गए है। जांजगीर चांपा जिला के कृषि विभाग के उप संचालक राकेश शर्मा बताइन है कि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होए के सेती किसान मल्ला एक मुश्त यूरिया दे जाही। उन्हें कोनो समिति में स्टॉक के कमी हुए मा बाचे मात्रा ला यूरिया पहुंचते किसान मल्ला बांटे जाही। उन्हें वैश्विक परिस्थिति के सेती रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता में पड़त प्रभाव ला देखत कृषि विभाग डहाले राज्य में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग ला बढ़ावा दे जावत है। राज्य सरकार हा किसान मन ला नैनो उर्वरक के प्रति जागरूक करे बर अभियान चलावत है। कृषि विभाग हा किसान मन ले अपील करे है कि अपन तीर ले सहकारी समिति और कृषि विभाग के अधिकारी मन ले संपर्क करके नैनो डीएसपी और नैनो यूरिया के वैज्ञानिक उपयोग के जानकारी लेवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ माचे समाचार कोती। सरगुजा जिला के रामगढ़ में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आसिर आगे समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुदेश साय शामिल हुई। ये मौकमा श्री साय कहने कि रामगढ़ सरगुजा के हजारों बछर जुना सांस्कृतिक चेतना कला आस्था गौरवशाली इतिहास के जीवंत प्रतीक हरय। ओमन कहने कि विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात ये स्थल संस्कृति इतिहास साहित्य और पर्यटन के संगम हरय। ओमन कहने कि छत्तीसगढ़ के धरती प्राकृतिक संपदा के संगे संग सांस्कृतिक और पुरातात्विक रूप में घलो विश्व स्तर में बड़का चिन्हारी राखथे। ये मौका मुख्यमंत्री ह रामगढ़ के विकास पर 1 करोड़ रुपया और उदयपुर डूमर डीहला मिला के नगर पंचायत बनाए के घोषणा करी। ये दौरान मुख्यमंत्री ह विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीता बेंगरा गुफा जोगीमारा गुफा और क्षेत्र के अनूठा प्राकृतिक धरोहर हाथी पोल के अवलोकन करी। ये मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत आने आने जनप्रतिनिधि मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी हा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारी और सह प्रभारी मन के नियुक्त करे है। ये सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के सहमति ले प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मारकंडे जारी करीन है। हेमलता चंद्राकर ला रायपुर संभाग के प्रभारी और सुषमा खलकोला सह प्रभारी नियुक्त करे गए है। ऐसने है शीतल नायक ला दुर्ग संभाग के प्रभारी और वर्षा सिंह ला सह प्रभारी बनाए गए है। रंजीता

0: भावाला बस्तर संभाग के प्रभारी और जानकी कोरसाला सह प्रभारी, फुलेश्वरी पैकराला बिलासपुर संभाग के प्रभारी और किरण साहूला सह प्रभारी के संग किरण मरकामला सरगुजा संभाग के प्रभारी और रंजनी तिवारीला सह प्रभारी बनाए गए हैं। रथ यात्रा के मौका में यात्री मन के सुविधा बर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाए के फैसला ले है। ये विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई के गोंदिया ले पुरी पर चलही। वापसी में ये ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई के पुरी ले गोंदिया बर रवाना होगी। ट्रेन के स्टॉपेज डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर समेत कई ठीन प्रमुख स्टेशन मन में रही। उन्हें हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल ट्रेन के अवई जवई 15 जुलाई तक बढ़ाई गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ मां आरक्षक के पद में भर्ती पर कथित रूप से फर्जी जातीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे के मामला में आरक्षक के सेवा खत्म कर दी गई है। उन्हें उतई पुलिस आरक्षक के पद में चयनित आरोपी मोहित के खिलाफ अपराध दर्ज करके मामला ला कार्यवाही के बर मध्य प्रदेश पुलिस ला भेज दे है। मिले खबर के मुताबिक एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के तहत भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरोपी मन फर्जी जातीय और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे रहीन। दस्तावेज के सत्यापन के बाद जातीय और निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाएगी, जेखर बाद आरक्षक के सेवा समाप्ति के कार्यवाही करेगी। अब मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरा छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गए है। एकर असर ले पूरा प्रदेश में हल्का ले मध्यम वर्षा के दौर शुरू हो गए है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है आकाशवाणी समाचार ले गोट बात करत बताएंगे कि जुलाई महीना में मानसून की गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यही बीच सरगुजा जिला में काली हवा गरे और तेज वर्षा के दौरान गाज गिरे ले 5 साल के लड़का समेत 3 जिन लोगों की मौत हो गई। उन्हें 1 जिन्नूनी गंभीर रूप से घायल हो गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। वीवी जी रामजी योजना छत्तीसगढ़ समेत देशभर में काली ले हो ही लागू। राज्य सरकार है सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे है। और सरगुजा जिला में रखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आज सिरागे, समापन समारोह में मुख्यमंत्री हो शामिल। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। यूरोबैंक संस्थया ग्रीसतः भारतं प्रति यूपीआई आधारित धनप्रेषण सेवा समारब्धा। उपक्रमोयम् ऐतिहासिकः वर्तते इति वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सबलम् अवोचत्। पाकिस्तानस्य FATF संस्थायाः ग्रे लिस्ट इत्यस्य निरीक्षणस्य आलोचनायाः अनन्तरं भारतेन एतां संस्थां प्रति स्वीय दृढ़ समर्थनं पुनः प्रकटीकृतम्। जनरल धीरज सेठः जनरल उपेन्द्र द्विवेदीतः भारतीय सेनायाः 31वें सेनाध्यक्षत्वेन पदभारम् गृहीतवान्। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तायाः भविष्यं प्रति अनिश्चितता वर्तते यतो हि तेहरान प्रशासनेन अमेरिका राष्ट्रपतिनः ट्रम्पस्य दोहा नगरे मेलनस्य विषयः दृढ़तापूर्वकं खण्डितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को देशेन नीदरलैंड दलं पराभूय राउंड ऑफ 16 इत्यत्र प्रवेशम् अवाप्तम्।

0: नाम विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य तृतीयः चरणः समारब्धः। उपक्रमस्यास्य अन्तर्गतं देहल्यां 13,000+ मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिणः आगामि मासस्य 29 दिनांकं यावत् प्रत्येकं गृहं गत्वा मतदात्री सूचीनां प्रमाणीकरणाय नवीकरणाय च पूर्वमुद्रितानि प्रपत्राणि प्रदास्यन्ति। देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवोचत् यत् मतदात्री सूचौ आक्षेपान् प्रस्तोतुम् अगस्तमासस्य 5 दिनांकतः सितम्बर मासस्य 4 दिनांकपर्यन्तं समयः निर्धारितः अस्ति। अन्तिमा मतदात्री सूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। कर्णाटकराज्ये अस्मिन् अभियाने राज्यस्य 31 निर्वाचन कार्यालयैः सह सम्बद्धाः 950,000+ BLO अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति। मेघालयराज्ये च ईस्ट खासी हिल्स जनपदस्य उपायुक्तः अभिलाष वरणवालः सूचितवान् यत् BLO अधिकारिणः जनपदे स्थितेषु सर्वेषु 21,000+ मतदानकेन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्यः प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामि 2 दिवसेषु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारंगी वर्णीया संचेतना प्रकटिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे उपहिमालयी, पश्चिम बंगालस्य च भागेषु संभाव्यन्ते। अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्ण तरंगस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकरः न्यगादीत् यत् भारतेन 26,000+ देशैः सह 28 प्रवासन गतिशीलता सहभागिता सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। तेन अवैध प्रवासं शोषणात्मक प्रथाः कपटपूर्त मध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेषरूपेण उपादिष्टम्। हूल दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य अन्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिंधो काहू, चंद भैरव, फुलो झानु इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पैराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानं सुरक्षितवन्तौ। मैक्सिको देशस्य ग्वाडालूप नगरे आयोजिते रमणीय द्वन्द्वे मोरक्को दलेन नीदरलैंड दलं 3-2 इत्यंकैः पराजितम्। अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सास प्रान्ते आइवरी कोस्ट तथा नॉर्वे इत्यनयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। आप हमारा पता जरूर लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
3: श्रोताओं, छोटी छोटी गलत फहमियों से हो रहे हैं रिश्ते खत्म। इन गलत फहमियों को मिटाकर रिश्ते बचा लीजिए। जी हाँ, ऐसे ही रिश्तों की डोर को टूटने से बचाने के लिए पहले सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जी हाँ, बिना सुने ही अगर आप अपने विचारों को दूसरों को सुनाने लगे तो यकीन मानिए आप अपनों से दूर हो जाएंगे। श्रोताओं, कभी कभी सामने वाला हमारे फायदे की बात या फिर हमारे फायदे का काम करता है। जी हाँ, परंतु हम उसकी बात या हम उसके काम के मतलब को

0: सुने व समझे बिना ही अपनी नकारात्मक सोच से उसको गलत समझ लेते हैं और अपने शुभ चिंतक को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। जी हाँ, बाद में पछताने से अच्छा है कि समय रहते ही हम सामने वाले के कहे गए या किए गए कार्यों के बारे में पूछ लें। जी हाँ, पूछ लें कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो श्रोताओं, आज मैं आपको कार्यक्रम शुरू होने से पहले इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक केकड़ा समुद्र के किनारे घूमने निकला। वो समुद्र के किनारे घूमकर बहुत ही खुश हो रहा था। जी हाँ, अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पैरों के निशान, जो कि गीली रेत पर बने थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखकर वो केकड़ा बहुत खुश हो गया। अरे वाह, मेरे पैरों के निशान कितने प्यारे लग रहे हैं। परंतु उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक ना रह सकी। जी हाँ, समुद्र की एक लहर आई और उस केकड़े के पैरों के निशान को मिटा गई। अब ये देखकर तो केकड़े को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में समुद्र की लहर से बोला, अरे ओ लहर, तुम तो मेरी सबसे अच्छी और प्यारी मित्र हो, फिर तुमने मेरे इतने सुंदर पैरों के निशान क्यों मिटा दिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना दुख पहुंचा है? ये सब सुनकर लहर ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, भाई मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया है और बहुत बुरा भी लगा है, परंतु जरा नजर उठाकर दूर देखो, वहां कुछ मछुआरे आ रहे हैं और वो केकड़ों का शिकार करते हैं। तुम्हारे पैरों के निशान देखकर वो यहाँ जरूर आ सकते हैं। वो मछुआरे यहाँ ना आए इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान को मिटा दिया, जिससे तुम्हारी जान बच सके। जी हाँ, समुद्र की ये बात सुनकर केकड़े को अपनी बात और अपनी सोच पर पछतावा हुआ और अपने मित्र पर बहुत ही गर्व हुआ। जी हाँ, कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है हमारा आज का नाटक।
1: यह एक पारिवारिक नाटक है जिसमें सभी मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आइए सुनते हैं कि इस नाटक में कब और क्यों एक गलतफहमी ने जन्म ले लिया और उसको कैसे दूर किया गया।

0: अरे अंजलि, देखो तो दरवाजे पर कोई आया है।
1: जी माँ जी। अरे महक दीदी, आप कैसे हो?
2: ठीक हूँ भाभी।
1: आओ दीदी, आओ अंदर आओ, लाओ सामान मुझे दे दो।
2: भाभी, माँ कहाँ है?
1: दीदी वो तो अपने कमरे में है।
2: ठीक है, मैं माँ के कमरे में ही जाती हूँ।
1: ठीक है दीदी, मैं आपके लिए वही चाय और पानी लाती हूँ।
2: ठीक है भाभी। माँ, माँ जी नमस्ते, कैसे हो?
0: अरे महक बेटा, आओ आओ।
2: क्या बात है माँ, बहुत आराम हो रहा है, तबीयत तो ठीक है आपकी?
0: हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, तेरे सास ससुर और रमेश सब ठीक है ना?
2: हाँ माँ, सब ठीक है।
0: और सुना, कैसे आना हुआ?
2: अरे माँ, रमेश को कहीं कुछ काम था और मेरी ननद सुदेश आई हुई थी। मैंने माँ जी से पूछा कि मैं अपनी मम्मी को मिलने जाऊंगी और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। तभी मम्मी जी ने बोला, हाँ हाँ चली जाओ, सुदेश तो आ ही गई है, सब काम देख लेगी। तो मैं यहाँ आ गई तुमसे मिलने के लिए।
0: अच्छा किया बेटा।
3: तभी अंजलि चाय और कुछ गरम गरम पकौड़े लेकर आती है, जो महक को बहुत पसंद थे। पकौड़े को देखकर महक बहुत खुश हो गई।
2: अरे वाह भाभी, मजा आ गया पकौड़े खाकर।
0: अरे अंजलि बेटा, तू भी बैठ हमारे साथ, पकौड़े खा।
1: अरे मम्मी जी, किचन में काम पड़ा है बहुत।
0: अरे हो जाएगा काम, दो घड़ी हमारे साथ भी तो बैठ।
1: पर मम्मी जी।
0: पर वर कुछ नहीं।
1: ठीक है माँ जी।
2: भाभी, सच में पकौड़े बहुत स्वाद थे, पेट भर गया पर मन नहीं भरा।
1: कोई बात नहीं, कल फिर बना दूंगी।
2: ओहो भाभी, आप बहुत अच्छी हो।
0: बस बस, अब मेरी बहू को नजर मत लगाओ।
3: ऐसे ही बात करते करते पूरा दिन निकल जाता है।

0: डिनर की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ महक आ जाती है।
1: अरे भाभी, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
2: तुम्हारे पसंद के राजमा चावल और साथ में आलू का रायता।
1: अरे भाभी, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाती हूँ।
2: अरे अरे नहीं, मैं कर लूँगी।
1: अरे भाभी, जल्दी काम करके आराम से बैठकर बातें करेंगे फिर।
2: ठीक है दीदी।
0: तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। महक दरवाजा खोलती है तो पास की एक आंटी जी आती है। महक उनको अपनी माँ के कमरे में ले जाती है। तीनों कमरे में खुश होकर बातें करते हैं। आंटी जी बोली,
3: अरे कमला जी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। आपके पास तो इतनी अच्छी बेटी और बहू है।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी तो बहुत मीठी है और बहू नमक है नमक।
0: उनकी ये बातें सुनकर अंजलि चुप रहती है। उसको बहुत बुरा लगता है, परंतु कुछ बोलती नहीं और अब पहले की तरह काम में लगी रहती। परंतु अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह सोचती है, मैं सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ और माँ का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देती। फिर महक अपने घर चली गई, पर अंजलि अभी भी चुप ही थी। कमला जी ने उसके बदले व्यवहार को देखकर उससे बात करने की सोची।
4: अंजलि, क्या बात है, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो, कोई बात है क्या? तबीयत तो ठीक है?
2: ठीक है मम्मी जी।
4: फिर ऐसी चुप चुप क्यों हो?
2: मम्मी जी, एक बात पूछूं?
4: हाँ हाँ बेटा पूछ।
2: जब सरोज आंटी आई थी तब उनके सामने आपने महक को तो मीठा और मुझे नमक बताया, आखिर मेरी सेवा में क्या कमी रहेगी जो आपने मुझे नमक बताया?
4: हे भगवान, तुम बस इस बात से परेशान हो?
2: हाँ मम्मी जी, आपकी वो बात मुझे चुभ गई। तब से मुझे समझ नहीं आ रही आखिर आपने मुझे ऐसा क्यों बोला।
4: अरे बेटा, तुम मेरी बात को समझी नहीं।
2: क्या मतलब मम्मी जी?
4: सुन बेटा, महक मेरे लिए मीठा है। अब ये बात बता, मीठा क्या मैं रोज खा सकती हूँ? रोज मीठा खाकर मैं रह सकती हूँ क्या?
2: नहीं मम्मी जी।
4: अब ये बात बता, नमक के बिना मेरा एक दिन भी गुजर सकता है क्या?
2: नहीं मम्मी जी।
4: इसलिए तुझे नमक कहा, क्योंकि बेटी तो महीने दो महीने में आ जाए उतना ही बहुत होता है। मेरे लिए तो बेटा तू तो मेरा नमक है नमक, तेरे बिना तो मेरा एक काम भी नहीं हो सकता। तू ही तो है जो मुझ बुढ़िया का सहारा है, तू तो मुझे हर दिन हर पल चाहिए।
2: अरे मम्मी जी सॉरी, अब समझी कि आपने मुझे नमक क्यों कहा।
4: शुक्र है समय रहते तूने मुझसे पूछ लिया, नहीं तो मन ही मन ना जाने क्या क्या सोचकर मन खट्टा करती रहती।
2: अरे मम्मी जी वो मैं बस।
4: बेटा, मन में कोई बात आए तो पूछ लिया कर, आखिर हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं।
2: मुझे माफ करना मम्मी जी।
4: बेटा जी, माफी नहीं, तुम्हें तो सजा मिलेगी। तुझे मेरे लिए चाय बनाने की सजा मिलेगी।

0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि कमला जी ने अपनी बहू को नमक क्यों कहा। सच है, सच है, एक सास के लिए उसकी बहू नमक की तरह ही होती है, जो उसके अंतिम समय तक उसकी देखभाल करती है।
1: तो श्रोताओं, सुना आपने किस तरह से कमला जी की कही हुई नमक और मीठे वाली बात का अंजलि ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। इस कारण अंजलि मन ही मन अपनी नकारात्मक सोच में उलझने लगी और अपनी सास से भी इसके विषय में नहीं पूछ पा रही थी। परंतु सास कमला जी ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो बहू आनाकानी करने लगी, परंतु सास के बार बार पूछने पर बहू ने सास से पूछ ही लिया, मेरी सेवा में

कहां कमी रह गई जो आपने मुझे नमक कहा। और सास कमला ने भी बात की नजाकत को समझते हुए उसकी शंकाओं को दूर किया और बहू ने भी उनकी बात को समझा और अपनी गलत फहमी को स्वीकार करते हुए सास से माफी भी मांगी। तो श्रोताओं, बहुत से घरों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सामने वाला आपसे कुछ और कहना चाहता है, परंतु आप उसके शब्दों के मूल्यों को ना समझकर उसका अपने विचार अनुसार मतलब निकाल लेते हैं, या सामने वाला आपकी बात को सही से समझ नहीं पाता, जिससे कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है और दो और सालों के रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं। तो श्रोताओं, गलत फहमियों को अपने रिश्तों से दूर करें और इसका एक ही उपाय है। जी हाँ, आपस में बैठें और बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के कहे हुए बातों को सुने। आपस में बातचीत करने से बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। श्रोताओं, ये समय है कि हम अपने कुछ श्रोताओं के नाम कार्यक्रम में साझा करें। जी हाँ, हमारे श्रोता हैं कृपाल सिंह उर्फ मंत्री जी सीतापुर यूपी से, गंगूरदास जी समस्तीपुर से, नसरुद्दीन सिद्दीकी जी यूपी से, डॉक्टर शिव प्रसाद प्रतापगढ़ से। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर आज की कहानी से संबंधित अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

0: हमारी बेड़ियां, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार

0: आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में कल से लागू होगी। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त की। राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को दिया अंतिम रूप। अब इन्हें शासकीय सेवा में लेने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज से पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में कल 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब, जल संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण और अन्य विकास कार्यों को

0: इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब, जल संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी है।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: इस बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के अंतर्गत मढ़ी ग्राम पंचायत में खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त कर दी है। अब किसानों को पिछले खरीफ वर्ष की भांति उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पहले लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में कृषि विभाग के उपसंचालक राकेश शर्मा ने बताया कि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने पर किसानों को एकमुश्त यूरिया प्रदान किया जाएगा। वहीं किसी समिति में यदि स्टॉक की कमी है तो किसानों को किस्तों में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीच वैश्विक परिस्थितियों के कारण रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा राज्य में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। इस सूची में 156 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। ये खिलाड़ी 20 अलग अलग खेलों से संबंध रखते हैं। अनुमोदित खिलाड़ियों की सूची को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। विभाग द्वारा इसे अधिसूचित करने के बाद इन खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में लेने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 182 उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जा चुके हैं। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बिलासपुर उर्गा खंड पर आम नागरिकों और सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस निर्माणाधीन सड़क पर आवागमन रोकने के लिए सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बंद कर दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। श्री साय ने कहा कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात ये स्थल संस्कृति, इतिहास, साहित्य तथा पर्यटन का अद्भुत संगम है।
2: सरगुजा का ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र है, सांस्कृतिक रूप में बहुत ही सुंदर है और हम लोगों की आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक का एक साक्षात उदाहरण है ये रामगढ़। और इस रामगढ़ का उल्लेख हमारे देश के वेद, पुराण, उपनिषद सब में मिलता है। विख्यात कवि कालिदास मेघदूतम की रचना यहीं पर किए हैं।

0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए और उदयपुर डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ से इस वर्ष हज यात्रा पर गए सभी 813 हज यात्रियों की सकुशल स्वदेश वापसी हो गई है। राज्य हज कमेटी के अनुसार हाजियों का अंतिम जत्था कल मुंबई पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस वर्ष राज्य से 813 श्रद्धालु हज यात्रा पर गए थे। इनमें 417 पुरुष और 396 महिलाएं शामिल हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विषय पर राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता से धार्मिक आस्था, पूजा पद्धति और धार्मिक परंपराएं प्रभावित नहीं होंगी। उन्होंने यूसीसी के संबंध में लोगों से जागरूक होने और भ्रांतियों से बचने का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। इसके असर से पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि जुलाई में मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: आज दिनांक 30 जून तक साउथवेस्ट मानसून जो है पूरा प्रदेश कवर कर चुकी है। पूरा प्रदेश में वर्षा का गतिविधि जो है 1 जुलाई से लेके आगामी 4-5 दिन तक वृद्धि होने की संभावना है। मानसून सक्रिय होने की संभावना है, जिसकी वजह से हर रोज 1-2 स्थानों पर मध्यम से लेके भारी वर्षा होने की संभावना है। आज का स्थिति में देखा है तो पूरा प्रदेश में डेफिशिट रेनफॉल लगभग -64% जो है वो डेफिशिट में है, और आगामी 3-4 दिन में मानसून सक्रिय होने के वजह से ये थोड़ा कम होने की संभावना है।
0: इस बीच सरगुजा जिले में कल आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 साल के बालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से पुरी के लिए चलेगी। वापसी में ये ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से गोंदिया के लिए रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव डूंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वहीं हटिया LTT हटिया समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। यह सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडे ने जारी की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में आरक्षक पद पर भर्ती के दौरान कथित रूप से फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में उतई पुलिस ने संबंधित आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस आरक्षक की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। बलरामपुर में आग बुझाने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने फायर इंचार्ज समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बालोद जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने 7 लोगों से लगभग 25 लाख रूपये से अधिक की ठगी की है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 94 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 9,40,000 रुपए आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में कल से लागू होगी। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त की। राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को दिया अंतिम रूप। अब इन्हें शासकीय सेवा में लेने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज से पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़े ही देर में होगा। मीडिया वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 7 बज रहे हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: ஃபேமிலி கட்டுப்பாடு பாரதிய சேனா.
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत. गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर.
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन. अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

इल्जाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच पहले सेमीफाइनल ओवल लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम तेजेश्वर।
1: राम राम पूजा दीदी, और संगे संग कार्यक्रम सुनैया हमार जम्मा संगी मल्ला हमार दोनों के
0: राम
1: राम राम।
0: राम।
1: संगी हो भी किसान वानी के बेरा है, प्रोजेक्ट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: पूजा दीदी, अदे कभी के बेरा ऐसे हावे कि हमर किसान संगी मन ह लगभग अपन जन धान के थरहा है ओकर बुवाई के बीजा के तैयारी कर रहे हावे।
1: बिल्कुल।
0: फिर जन खर्री बावत करके बैठे ना हमर संगवारी मन ह, ओ मन ह तो भाई के ऊपर वाला के भरोसा बैठे हावे और ओकरे अगोरा करत हावे कि कब पानी बादर गिरतीस तो हमर जन फसल है वो अंकुरण लेतीस बाढ़तीस कही के।
1: बिल्कुल तेजेश्वर, फिर देखना ज्यादा परेशान होए के जरूरत नहीं है, ऐसे हमारे विशेषज्ञ बन कही थे कि धान के फसल कहूँ अच्छा नहीं हुआ थे तो एक घलोक विकल्प है हमारे पास, दिगर फसल घलोक हम ले सकत हन, ऐसे हमारे विशेषज्ञ बन गई थे, जैसे कि मशरूम उत्पादन करके अपन जो नुकसान होते धान के फसल के जो नुकसान होते तेकर भरपाई करे जा सकत है।
0: और जेन मन लगते दीदी कि हमन धानेज के फसल लगावन ओमन ह कहान की जोन पछेती किस्म है वैसन धान के अपन जोन किस्म है ओकर चयन कर लेवे, ओकर बाद फिर जोन बारिश होही ओकर बाद अपन जोन बाजार के मांग है ओकर हिसाब ले अपन फसल के तैयारी ल करे। संगमा भी के समय ऐसे हावे कि भाई आत्मनिर्भर होए के बहुत ज्यादा जरूरी हावे और दीदी मन खास करके आत्मनिर्भर होत हावे। आजकल जगह जगह ड्रोन दीदी मन ल देखे ल मिलते जेन मन ह महिला किसान मन ल सशक्त बना दे हावे, ओमन ल मजबूत बनात हावे, ओमन ह जगह जगह में कमती बेरा में बड़ा कन जोन क्षेत्र हावे कहान की खेत हावे ओमन में दवाई छिड़क सकते जोन कतको कन जोन दवाई हमन जिला स्पेयर ले या अन्य अन्य जिनिस ले हमन छिड़कथन वो आजकल ड्रोन के माध्यम ले हमन कर सकथन। ड्रोन के माध्यम ले हमन अपन खेत के जम्मो जानकारी घलो ले सकथन कि का का हमर में रोग राई होए हावे।
1: और एकर तो सरकार घलोक एकर ये योजना चलावत है, ड्रोन तकनीक के जो प्रशिक्षण है बहुल देवत है आत्मनिर्भर बनाए बर हमर ग्रामीण क्षेत्र के बहिनी मन ना माई लोग मन आत्मनिर्भर बनाए बर इमन प्रशिक्षण घलोक देवत है, तो एकर बर पंजीयन करा करके हम एकर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र घलोक पा सकत हन और एकर लाभ ले सकत हन स्वरोजगार के रूप में घलोक।

0: एला अपना सकत हन। तो ये तो हुई से द्रोण दीदी के बारे में जानकारी।
1: और दीदी अभी फोन इन कार्यक्रम हेलो की सनमानी के बेरा हो गया हावे, तो एक क्रम में सुनबो आज के विषय हमर कि हमर सुरक्षित भविष्य के आधार कृषि जैव विविधता और ओकर संरक्षण। ये विषय में जानकारी देवत है हमर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णेन्द्र साहू और अधिष्ठाता है मनो उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरामा। इकर सन होय हमर गोड़ बात ला सुनथन।

0: संगी हो, खेती मा उपयोग होइया अलग अलग फसल हे, बीजा हे, फल हे, सब्जी और पशुधन हवे, संग मा किसान के जन मित्र सूक्ष्म जीव हवे, ये जम्मो मा विविधता पाए जाते। और जब ये बात ल हमन ह जानबो, एकर संरक्षण ल करबो, तो हमर बड़ लाभ के हवे। आज हमन ह फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी मा ऐसने विषय रखे हन, हमर सुरक्षित भविष्य के आधार जैव विविधता के संरक्षण। एकल ले जुड़े आपन के प्रश्न के जवाब देवर, शंका के समाधान करे बर हमर संग उपस्थित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्णेन्द्र साहू। एमन हा अधिष्ठाता हैं उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरामा। संचालन करत हों तेजेश्वर साहू। तकनीकी सहयोगी है प्रियंका डिक्सेना, क्रांति कुमार साहू। प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे। डॉक्टर साहब, सबले पहली हमारे कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में आपके स्वागत है। राम राम।
1: राम राम।
0: हेलो, हेलो किसानवाणी।
2: हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम।
0: राम राम भैया, कौन बोलत हो, कहाँ ले बोलत हो?
2: मैं नारायण प्रसाद वर्मा बोलत हूँ भैया, नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले।
0: हाँ वर्मा भैया, आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में।
2: हाँ भैया, हाँ जैसे भैया भी हमने खेती किसानी लगे हवन, और बिल्कुल पानी का गोरा भैया, खेती मन हमर तैयार हो गया हवा है। तो आज मैं डॉक्टर भैया में ले पूछा था कि हमर खेती खार पर्यावरण और दैनिक जीवन ला सुरक्षित रखे बर ये जैव विविधता कहाँ होते, एकर उपयोग हमन कैसन करी, एकर महत्व कहाँ है, यही जम्मो बात ला पूछे बर फोन लगाए हूँ भैया।
0: जी, आपके सवाल के जन जवाब है वो हमारे विशेषज्ञ सुनथन।
1: वर्मा भैया नमस्कार।
2: नमस्कार भैया। राम राम।
1: राम राम। बहुत ही अच्छा प्रश्न करे हो आपन है। सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूँ कि जैव विविधता होते का, तो प्रकृति में जो पाए जाने वाले जितना भी पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, ओकर बीच के जो पारस्परिक संबंध और ओकर जो प्राकृतिक आवास है, ओकर पारस्परिक संबंध जो है वो कहलाती जैव विविधता। तो अब इनमें बहुत सारे जैसे पेड़ पौधा के अलग अलग जैव विविधता है, जीव जंतु के है, सूक्ष्म जीव के है, तो ये सारा जो है जैव विविधता के अंतर्गत आते भी है।
0: हेलो, हेलो किसानवाणी।
3: हाँ हेलो किसानवाणी, जय राम जी।
0: राम राम भैया, कौन बोला तो कहाँ ले बोला तो?
3: जिसे सर राम साहू, ग्राम नांगलगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़।
0: साहू भैया, आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज के जन हमारे विषय है उकले जुड़े का सवाल है आपके?
3: मौसम के देखते हुए जैव विविधता में कौन सा फसल बोना चाहिए?
0: तो आपके जन सवाल है उकले जुड़े हमारे विशेषज्ञ ले सुनथन।
1: साहू भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न करे आप मन है। सबसे पहली तो ये है कि आजकल जो है जलवायु परिवर्तन जो इतना हुआ थे, है पहली हमन देखन कि बिल्कुल समय पे पानी मानसून आना है मतलब आ जाए, लेकिन धीरे धीरे का होते जलवायु में परिवर्तन हो जाते, पानी जो समय में गिरना है वो समय में गिर नहीं पाते, तो एक कारण जो है हमर जैव विविधता के जो हमन नुकसान करत हन। जहाँ तक जैसे अंधाधुंध पेड़ों के कटाई होते, वन जो क्षेत्र है धीरे धीरे हमन नष्ट करत जात हन, शहरीकरण की ओर बढ़त जात हन, तेकर कारण तो ये सारे जो कारण है वो हमर जो जलवायु परिवर्तन में जो है ये प्रभाव डालते, और ओकरे कारण आजकल हमन देखत हन कि समय बेसमय पानी गिरना, जब जरूरत है तब पानी नहीं गिरत है, तो ये सब कारण ओकरे कारण है। अब जैसे मैं बताना चाहूँ कि आप मन के सवाल है कि पानी नहीं गिरत है तो कौन से फसल लगाना चाहिए, तो फसल ऐसे है कि अभी बरसात के मौसम जो है खरीफ सीजन, पानी तो गिरबेच कर ही, भले थोड़ा सा लेट से गिर ही, तो इमें ऐसे कर सकते हैं मन कि जैसे हमारे

0: सिंचाई के अगर साधन है तो कुछ ऐसे फसल है जैसे धान के कुछ लेट वैरायटी हमन थोड़ा सा ले सकथन, है ना। किस्म के जो चयन है ओकर ऊपर हमन थोड़ा सा फोकस कर सकथन। जैसे हमन हा जो पहली बुआई करन वैसे किस्म के जगह में थोड़ा सा लेट से जेकर हमन बुआई कर सकन, लेट जो किस्म है तो वो देरी से वाला जो किस्म है ओला चयन कर सकथन। अगर फल के सब्जी के है चुनाव करना है तो ओकर बर थोड़ा सा हमन कोशिश करन कि कम पानी में जो है जैसे ड्रिप इरिगेशन है टपक सिंचाई पद्धति हम ओला लगा सकथन, ताकि जो है कम पानी में हमन ज़्यादा फसल के ले सकन। और समय बेसमय जैसे पानी नहीं भी गिरत है तो हमन अपन पास अगर सिंचाई के साधन है तो हमन ओला उपयोग करके अभी जो समय के या मौसम के जो प्रभाव है ओकर से थोड़ा सा बच सकथन। जैव विविधता के संरक्षण नहीं कर पाथन तेकर दुष्परिणाम ही है जो आज के समय में हमर जो वाटर लेवल है धीरे धीरे नीचे जात जात है। शहरीकरण एकर एक प्रमुख कारण है जेकर कारण से जगह जगह जो है शहरीकरण व बोर खोदे जात है ना। भूमि के जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो जात है। तो हमन ला ऐसे करना है कि जो कम पानी में जो फसल जो हो जाए जैसे हमन पारंपरिक जो वो है ओकर धान की खेती जो है वो करत आथन। और हमला पता है धान है गन्ना है ये सब अधिक पानी की जरूरत पड़ते तो ओकर जगह में हमन साथ ही साथ धान के साथ साथ थोड़ा सब्जी की खेती है फल की खेती है जे थोड़ा सा कम पानी की जल जरूरत पड़े ऐसे हमन चुनाव कर सकथन साथ ही साथ, ताकि जैसे धान की फसल है ओकर से हमला कोई अगर नुकसान भी होते तो जो हमार साथ के जो फसल है और मिश्रित खेती के में जो हमन करथन ओकर से हमार पूर्ति हो जाए।
1: हेलो हेलो किसान वाणी,
2: नमस्ते सर जी।
1: राम राम भैया। कौन बोलत हो, कहाँ ले बोलत हो?
2: मैं राजेंद्र कुमार दामले गुठियात हूँ, ग्राम सिरमुंडा ले।
1: दामले भैया आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
1: हमर जोन आज के विषय है उकल ले जुड़े का सवाल हावे आपके?
2: इस समय बहुत अच्छा है सर, किसानी दिन आ गए है और यही दिन में हम लोग बहुत जरूरत रहते किसान भाई मन ला, तो एक अच्छा विषय रखे हो सर जी। आप बता देते हो कि कृषि जैव विविधता एक संरक्षण कैसे करना है और कैसे टाइप से अपन रेगुलर कर रखना है, ये लोग के बारे में बता देते हो।
1: तो आपके जन सवाल है ओकर जवाब हमारे विशेषज्ञ ले सुनथन।
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न करे हो आपन दामले भाई। कृषि जैव विविधता एक बहुत बड़े विषय है और आज के जो समय है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ही है। काबर कि हमन देखत जाथन कि धीरे धीरे जो है संकर किस्म जो है कृषि में बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगे हैं। अब पारंपरिक खेती की बात करें तो गांव में आप मन देखो कि कितना जो स्थानीय जो किस्म है ओकर किसान भाई ओकर बुआई करे ओला फिर से संरक्षित करे ओला फिर अगले जो साल फिर ओकर बुआई करे। तो ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोकल किस्म है जेकर जो उपज भी अच्छा है और ओकर गुणवत्ता भी अच्छा है। लेकिन हमन आजकल का है संकर किस्म है ज़्यादा उत्पादन ले के चक्कर में हमन है का है अपन जो स्थानीय किस्म ला धीरे धीरे छोड़त जाथन। अब यही कारण है कि भविष्य में जो है काबा की स्थानीय जो किस्म है हालांकि वो थोड़ा लेट से या थोड़ा उत्पादन कम दी लेकिन वो जो है सटीक जो कृषि है टिकाऊ खेती है ओकर एक बहुत बड़ा जो है वो माध्यम है वह। और एकर संरक्षण करना बहुत जरूरी है और एकर संरक्षण पर हमला कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्थानीय किस्म के वृक्षारोपण करण गाँव में जो है जो जैविक खेती ला हमन हा ओकर बढ़ावा देन ताकि हमर जो भूमि संरक्षित रहे वातावरण संरक्षित रहे और हमर जो आने वाला जो पीढ़ी है ओला हम एक स्वस्थ भूमि और स्वस्थ पर्यावरण दे सकन। तो कृषि में जो है बहुत ज़्यादा एकर जैव विविधता के जो है ये महत्व है और एकर पर हमला आगे बढ़ चढ़ के एम योगदान देना चाहिए।
2: जी सर, आप जानकारी दे सर आकाशवाणी परिवार ला, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी।
0: धन्यवाद
1: जी। हेलो हेलो किसान वाणी। राम राम भैया। कौन बोलत हो, कहाँ ले बोलत हो?
3: राम राम, मैं लखनपुर कंवर भाई से बोलत हूँ भैया, जानी राम चंद्रवंशी।
1: चंद्रवंशी भैया आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: परागण करे वाले किया जी है तेकर रख रखाव करे बर भाई लगाए भैया पूछे बर।
1: तो आपके जन प्रश्न है ओकर जवाब हम विशेषज्ञ ले सुनथन।
0: किसान भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके। परागण जो कीड़ा है ना, जितना भी फसल है हमार, ओमे अलग अलग जो है

0: परागण के क्रिया होते हैं, ओकर बा अलग अलग जो पराग कारक जो है, जैसे कि है ना कीड़ा है कोई में जैसे भावरा है, तो अलग अलग टाइप के जो कीट है ओकर बा परागण करे बर वो उत्तरदायी होते है। तो जैसे हमला आप मन बोले कि उत्पादन ज़्यादा लेना है, तो उत्पादन कम आए के एक कारण ये भी है कि परागण सही ढंग से नहीं हो पाए फसल में, तो ओकर कारण भी सही ढंग से जो फूल के निर्माण नहीं हो पाए, ओकर से फिर फूल से फल नहीं बन पाए। तो ऐसे ये बहुत मतलब जुड़े हुए सवाल है आपके, परागण नहीं होने के कारण भी सही ढंग से हमार जो उपज में जो है कमी आते और गुणवत्ता में भी कमी होते। तो एक बार किसान भाई हमला का करना है कि जो हमार मित्र कीट हैं, जो हम पर्यावरण पर ये नुकसानदायक नहीं है, लाभदायक जो कीट हैं, जैसे कि मधुमक्खी है ना, तितली है, एकर हमार जो है जैसे मधुमक्खी के पालन बा, क्या जो सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन बा आजकल बहुत सारी योजना भी है ना, विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ बहुत सारा जो परियोजना चला थे एकर बा, आप अपन नज़दीकी कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकत हो। तो ये जो है मधुमक्खी पालन अगर आप करूँ तो कर जो अगर आपके फसल के बीच में एकर पालन भी करूँ तो एकर जो परागण जो आपके फसल में है ओकर भरपूर परागण होही, ओकर साथ ही साथ अब एकर से शहद के उत्पादन करके अतिरिक्त आमदनी भी आप ले सकते हो, है ना, मोम जो बनते ओकर से आपका आमदनी हो जाएगी, तो बहुत सारे एकर से फायदा है। तो अलग अलग जैसे तितली है, तितली बहुत सारे जो फसल है ओकर बाद तितली जो है परागण के काम करते, तो ये सब चीज ला हमला बढ़ावा देना है किसान भाई, ताकि हमारे जो उपज है और गुणवत्ता है फसल के वो बरकरार रहे।
1: सर एक चीज बताते हो कि जैसे कृषि जैव विविधता है और खाद्य सुरक्षा के बात करथन, तो ये दोनों में का संबंध है और हमारा कतिक जरूरी खाद्य सुरक्षा पर कृषि जैव विविधता ला संरक्षित रखना?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। कृषि जैव विविधता जो है खाद्य सुरक्षा दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दोनों विषय है। कृषि जैव विविधता मतलब ये है कि जो भी कृषि से संबंधित फसल है ओकर जो है हमला संरक्षण करना है। जैसे पुराना जो पारंपरिक जो खेती होत रही से गांव में, उसमें क्या है जो लोकल जो किस्म स्थानीय किस्म है ओकर किसान भाई जो है बहुत ज़्यादा उपयोग करत रहने, ओकर कारण से हमार मिट्टी भी जो है उसमें भी नुकसान कम होत रही से, और साथ ही साथ किसान भाई जो है प्राकृतिक खेती जैविक खेती कम से कम रासायनिक खाद के उपयोग करें, उर्वरक के उपयोग करें, ओकर कारण से जो है मृदा जो है हमार जो स्वस्थ रही से, और साथ ही साथ कीटनाशक के भी बहुत कम उपयोग करें पहली किसान भाई मन। लेकिन आजकल आप देखा तो कि किसान भाई मन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उपज लेबर अंधाधुन जो है रासायनिक उर्वरक के उपयोग करत हैं, कीटनाशक के उपयोग करत हैं, तो एक दुष्परिणाम का होते कि हमार जो मृदा है वो ओकर जो स्वास्थ्य है वो दिनों दिन जो है खराब हो जाते, और एक जो है एक परिणाम जो है वातावरण में या पर्यावरण में भी हमला देखे मिलत है, कई प्रकार के बीमारी हमला देखे मिलत है। एकर और एक दुष्परिणाम आते सामने कि जो भूमि में उपस्थित जो मित्र कीट हैं जो कि हमारे उत्पादन में जो है हमला सहयोग प्रदान करती है, ओकर भी जो संख्या है जनसंख्या है धीरे धीरे कम हो जाते। तो अब जनसंख्या जो है दुनिया में बढ़त जाते देश में, अब ओकर बर हमला खाद्यान्न की पूर्ति करना है, ठीक है, तो हमारे खाद्यान्न की पूर्ति तभी हम अच्छा से लंबे समय तक कर पाबो जब हमारे मृदा जो है स्वस्थ रही, और ये जितना भी रासायनिक है खाद है या बीज है वो तुरंत तो दे दी उपज ज्यादा, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ खेती की अगर हम बात करें तो ओकर बा ये लाभदायक नहीं है। एकर सेती हमला बहुत जरूरी है कि कृषि की जो जैव विविधता है हमारे स्थानीय किस्म है ओला हमला फिर से सहेजे के जरूरत है। एकर बा फील्ड जीन बैंक बनाना चाहिए किसान मन ला, अच्छा अच्छा जो किस्म है ओला ला के अपन खेत में कम से कम एक एक पेड़ ही लगा के रखे, या कम से कम तो ऐसे करके किसान मन ला भी आगे बढ़ के एक बार कोशिश करना पड़ेगी।
1: जी सर एक ठन बात आते कि जैसे हमारे किसान संगवारी मन है उमन हा जैव विविधता के संरक्षण पर कैसे ढंग से सहयोग दे सकते हैं या उकर योगदान कैसे हो सकते हैं?
0: जब तक किसान भाई आगे बढ़ के ये चीज ला नहीं करी तब तक हम न कल्पना भी नहीं कर सकन कि हम जैव विविधता के संरक्षण कर सकते, काबर की किसान भाई जो है भारत की जो रीढ़ की हड्डी है मान

चलो, काबर की जैव विविधता के जो संरक्षण है वो सबसे ज्यादा किसान भाई कर सकते हैं, ताकि जो है आने वाले जो पीढ़ी है बोला कम से कम लंबे समय तक जो फसल के जो उत्पादन है, स्वस्थ पर्यावरण है ओला प्रदान कर सकते हैं। तो एक बार किसान भाई मन ये योगदान कर सकते हैं कि अपन जो भी खाली जमीन है या मेड़ है उनमें जो वृक्षारोपण करें, फल जो फसल है ओकर वृक्षारोपण करें, खाली जगह है तो ऑक्सीजन जो ज़्यादा देते हैं वैसे पेड़ पौधा के रोपण करें, स्थानीय किस्म के जो है ओला सहेजे बर किसान भाई अपन खेत में उहूल ला के लगाए, और साथ ही साथ पेड़ पौधा लगा के हमला भूल नहीं जाना है, ओकर बकायदा ओकर रख रखाव करना है ताकि वो पौधा जिंदा रहे, और ओकर जो बीज है ओला सहेज के रखें ताकि अगला जो फसल है ओकर फिर वही बीज ला किसान भाई उपयोग कर सके। जैविक खेती के तरफ किसान भाई के जो है योगदान हो सकते, प्राकृतिक जो संसाधन से जो निर्मित खाद है वो कर उपयोग करें किसान भाई, और जो

0: कायदा ओकर रख रखाव करना है ताकि वो पौधा जिंदा रहे और ओकर जो बीज है ओला सहेज के रखें ताकि अगला जो फसल है ओकर फिर वही बीज ला किसान भाई उपयोग कर सके। जैविक खेती के तरफ किसान भाई के जो है योगदान हो सकते, प्राकृतिक जो संसाधन से जो निर्मित खाद है वो कर उपयोग करें किसान भाई, और जो संकर किस्म है ओला धीरे धीरे जितना हो सके कम उपयोग करें। कीटनाशक पर बहुत सारे आजकल जो है नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र ऐसे करके बहुत सारे जो है घन जीवामृत है ओला किसान भाई अपन जो आसपास के उपलब्ध संसाधन ओकरे से तैयार करके ओला उपयोग कर सकते किसान भाई मन। तो ऐसे करके अपन जो खेती में जैव विविधता के संरक्षण करे बर एक योगदान काफी दे सकते किसान भाई मन।
1: सर अभी आप बीच में कहत रहो कि जो रसायन है वो हर हमार खेती ला नुकसान तो कर भी करत है, फिर जो कृषि जो जैव विविधता है वो में कतिक प्रभाव डालत होला बताते हो।
0: ये जो रसायन है जो हमन खेती में उपयोग करत हन ये जो है बहुत ज्यादा एक दुष्परिणाम देखे बार मिलत है, और एक कारण से शासन के भी जो आजकल फोकस है खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम चलाए जाते तो एक कारण से वो कृषि जैव विविधता जो है ना वो में जे हमार मित्र कीट हैं उहू मन धीरे धीरे केचुआ खाद जो है ना हमला बनाए के अभी का जरूरत पड़त है। खबर की हमार जो मिट्टी है वो में पहली का है पारंपरिक खेती करन तो में इसने केचुआ पाए जाए इसने बरसात के दिन आए केचुआ मन इसने चलत दिखे, लेकिन आज के समय में हमन इतना रसायन में उपयोग कर दे थन कि वो केचुआ जो है वो कर खत्म हो जाते तो भूमि के उर्वरता जो है वो खत्म हो जाते। तो धीरे धीरे एक हमार प्राकृतिक खेती बहुत जरूरी है, जैविक जो खेती है ओकर जो है बढ़ावा देना चाहिए किसान भाई मल्ला ताकि हमार जो भूमि है ओकर स्वास्थ्य जो है फिर से हमन बना सकन अच्छा से और लंबे समय तक या टिकाऊ खेती हमन कर सकन।
1: बतात रहो सर कि जो बीजा बैंक है वो हला हमन बनावन करके तो वो का होते और एकर महत्व का है वाला बताते हो।
0: हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाई मन का है, जैसे कि हमला पता है अगर धान के ही हम किस्म लें तो 23,000 जर्म प्लाज्म जो है अलग अलग प्रकार के किस्में हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो है उपलब्ध है। वैसे बहुत सारे जो फसल है चाहे वो उद्यानिकी में लें चाहे वानिकी में लें वो बहुत सारे जो ऐसे फसल है जो कर जैसे आम के किस्म की बात करें तो वो कर 500 से 1,000 किस्म जो है यहाँ पे स्थानीय किस्म पाए जाते हैं अलग अलग विविधता के साथ में, और सबके जो अलग अलग गुणवत्ता है सबके गुण अलग अलग है। तो किसान भाई मन हमन का है जो है बाहर की जो किस्म है हर फसल बा चाहे हम सब्जी की खेती करन चाहे फल की खेती करन सब पर हमन आज की डेट में हमन डिपेंड हो गए हन बाजार के ऊपर। किसान भाई मन खुद जो अपन आसपास लोकल जो किस्म पाए जाते स्थानीय किस्म पाए जाते ओकर चयन करें ऐसे करके, और बीज बैंक या फील्ड जीन बैंक के बात करें वो अपन है तो एकर मतलब ये है कि अलग अलग जो स्थानीय किस्म है जेकर गुणवत्ता उपज सब अच्छा है तो ओला हमन अपन खाली खेत में ला ला के जहाँ से भी हमला अच्छा किस्म दिखीस ओकर अच्छा क्वालिटी दिखीस तो ओला ला के अपन खेत में अपन घर में हमन ओला इकट्ठा करन और ओला कम से कम संरक्षित कर सकन है ना। जैसे हमला आम के किस्म दिखीस अच्छा कोई किस्म है तो ओला हमन ला के एक पौधा अपन घर में लगा लें अपन खेत में लगा लें।
1: अब बात आते कि जैसे हमन हमर जन सुरक्षित भविष्य है ओकर आधार मानथन जैव विविधता ला तो एकर संरक्षण बर और आप का सुझाव दहु एला बताते हो।
0: जैव विविधता जो है हमर संरक्षित रही तो हमर पर्यावरण संरक्षित रही, अब पर्यावरण संरक्षित सुरक्षित रही तो जनजीवन सुरक्षित रही। तो एकर बर का है कि हमर जो आने वाला भविष्य है ओकर बा हमला पूरा ये कोशिश करना है कि आज के समय में जो हमन अपन जैव विविधता जो है ओला भूल चुके हन है ना, जो स्थानीय किस्म है स्थानीय जो खाद बनाए के जो तकनीक है जैसे आप देख सकते हो गांव में पहले का गोबर गड्ढा है ना घुरवा वगैरह रहा है तो वो सारी चीज़ ला आजकल हमन भूल गए हैं, केवल जो बाजार में जो बने बनाए जो खा उर्वरक आते रासायनिक खाद ओला ला के हमन सीधा उपयोग करत हन। ऐसे करके हमन का है अपन जो मृदा है मिट्टी है पर्यावरण है ओला हमन अपन आने वाला

0: जो भविष्य है, आने वाले जो पीढ़ी है, ओकर बार हम जो है मिट्टी, एक खराब मिट्टी हमन ह जो है तैयार करत हन। तो कोशिश करना चाहिए कि हमला जो है जैविक खेती है, स्थानीय किस्म है, ओकर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हमार जो आने वाला भविष्य है हमार, है ना, वो ओला हमन ह स्वस्थ मृदा दे के कोशिश करन और स्वस्थ पर्यावरण हमन ह प्रदान करे के कोशिश करन।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे ये कार्यक्रम में आयो और संगवारी मन के पूछे सवाल के सुघर जानकारी देव, उकर जम्मो शंका के समाधान करो और जम्मो जानकारी बड़ सुघर घलो रही से, उपयोगी रही से। सुघर जानकारी पर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: संगी हो। हेलो किसानवाणी के रिकॉर्डिंग हर मंगलवार के बिहनिया 11:30 बजे ले 12 बजे तक करे जाते और यही बेरा में आप मन फोन करके हेलो किसानवाणी के वो दिन के होया विषय के बारे में सवाल करके उपस्थित विशेषज्ञ ले जानकारी ले सकत हो। फोन करे बर हमार आकाशवाणी केंद्र रायपुर के टेलीफोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड हावे 0771। संगी हो, हर मंगलवार के बिहनिया 11:30 बजे आप मन के फोन कॉल के अगोरा हमला रही त एकरे संग फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी इहे सिरावत है।

मंत्री हेलो किसान वाणी जे में विषय रही से हमारे सुरक्षित भविष्य का आधार जैव विविधता का संरक्षण और ये विषय में समस्या के समाधान करी खातिर हमारे विशेषज्ञ रहीन डॉक्टर पूर्णेन्द्र साहू अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय साजा बेमेतरा ले।

0: आओ तेजेश्वर,
1: हाँ
0: हमार
1: दीदी,
0: संगी मल्ला अब बेरा होई आज के प्रश्न के, काबर की क्रम है कृषक प्रश्न मंच। तो संगी हो आज के प्रश्न आपन लिख लो। आज के प्रश्न है कृषि जैव विविधता का हरे। प्रश्न एक गांव फिर दोहरावा था, कृषि जैव विविधता का हरे। ये तो रिस आज के प्रश्न। और पांचवा हफ्ते के प्रश्न रही से त्रिस्तरीय मछली पालन में कौन कौन से किस्म कौन स्तर में डाले जाते। तो एक सही उत्तर है ऊपरी स्तर में कतला, बीज में रोहू और तलहटी में मृगल।
1: नौ सही जवाब भेजे संगी मन है महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन ज्योति रियांश ठाकुर दहियान बांधा बाजार राजनांदगांव ले हरिओम साहू रेवाराम साहू रानू सरस्वती प्यारी राम साहू परमानंद साहू तेंदुभाटा मगलोर ले है उमेंद कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन निषाद। सही जवाब भेजिए या जम्मो संगी मल्ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई है।
0: और ये तो रही से किसान वाणी जेकर प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और दीदी संगी मनसन गोड़ बात करत बेर हो गए जाए के तो जाए के पहली बता देथन काली के कार्यक्रम। काली संजा बेरा चौपाल में होही आज के बाद के संग क्रम चिट्ठी मिलिस के। आज के सलाह में होही जैव उर्वरक अपनाए उत्पादन बढ़ाएं। ये विषय में सुघर जानकारी दी ही विशेषज्ञ दीपमाला लकड़ा विषय वस्तु विशेषज्ञ है मन पौध रोग विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र भाटा पारा ले। तो संगी हो देवो विदा कार्यक्रम सुनिए मल्ला संगी मल्ला देवो विदा। तेजस्वर साहू
0: पूजा चंद्रवंशी के
1: राम
0: राम
1: राम,
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आईसीसी महिला टी20

0: टी क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सबरंग।
2: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
3: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
4: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
5: मम्मी मम्मी पापा आगे।
6: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
5: मम्मी प्लेट लाना।
7: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
8: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
7: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
6: हाँ जी,
5: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस नहीं रखना चाहिए।
8: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
5: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
4: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
9: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, देकर बाद नवा तेल डाल बे।
10: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
9: तहू यार,
11: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
4: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।

कुछ बात लिए, जज्बात लिए, खुशनुमा लम्हे साथ लिए, चले आए हैं आपके पास सबरंग की सौगात दिए। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले, हाजिर हूँ लेकर सबरंग।

खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।

चिलमन, पर्दा, नकाब, आवरण, ये सभी शब्द कभी शर्मो हया के चलते, कभी सुरक्षा के लिए, कभी परंपरा के लिए, तो कभी निजता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज की ओर इशारा करते हैं। पर्दा करना बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, शायद तब से जब दरवाजे नहीं थे, ताले नहीं थे, तब एक आड़, एक पर्दा घर की निजता की रक्षा करता था। दीवारें छोटी होती थीं, लेकिन पर्दा होता था। तालों की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: ताहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेखर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: पर्दे कपड़े के मोतियों की लड़ी के रूप में, खस की चटाई के रूप में और फैंसी डिजाइनर रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। आजकल विविध रंगों और डिजाइनों के पर्दे चलन में हैं, जो घर की सजावट में चार चांद लगा देते हैं। कई बार घर के बड़े हिस्से में से कई छोटे हिस्से बनाने हों तो बाहरी पर्दों से उसे अलग किया जाता है, यानी कि पार्टीशन किया जाता है। खस के पर्दे गर्मियों में घर को ठंडा रखने का काम करते हैं। गीली खस से होकर जब हवा आती है तो शीतल सुगंध भी साथ लाती है, जो तन मन को भी शीतल कर देती है। तेरा जलवा है यार पर्दे में, मुझको पर्दे पे प्यार आता है।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालूं तो जुन्ना तेल ला काय करूं?
7: तहूं यार,
0: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य

0: सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: मैंने दरिया से सीखी है पानी की ये पर्दादारी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। पर्दा कभी गम छुपाने, कभी खुशियों को बुरी नज़र से बचाने, कभी राज की बात को छुपाने के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। जैसे पर्दा करना शर्म और सम्मान के लिए, पर्दा डालना गलतियों पर पर्दा डालना के अर्थ में प्रयोग होता है। अब पर्दा तो पर्दा है, पर्दे के पीछे कुछ भी हो सकता है।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

सबरंग अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करते हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुराज ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार होंगे।
1: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने

0: कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र

0: ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
6: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवोप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB

0: मिडॉन रीजन।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: तो एक और चौका ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए अब 53 पर। रनों की रफ्तार में कहीं कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा। मुनी जिस तरह से उनकी निगाहें जमी हुई हैं, कोई भी स्ट्रोक खेलने में उन्हें परेशानी नहीं हो रही। अच्छा खासा तजुर्बा है मुनी के पास और उस तजुर्बे का यहां पर भरपूर लाभ लेते हुए बढ़िया चौका और मुनी पहुंच गई है 15 गेंदों पर 31 रन की व्यक्तिगत रन संख्या पर। क्लैक्सटन पहली गेंद पर चार दिया, दूसरी गेंद पर चार दिया और ये तीसरी गेंद क्लैक्सटन की, लेकिन चलिए वहां पर फील्डर मौजूद थी और इसलिए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हुई। क्लैक्सटन का ये पहला ओवर है अब तक। अगर आप देखें तो चार गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, हेनरी है, मैथ्यूज हैं, रमार्क हैं और इसके अलावा क्लैक्सटन। और जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है, ऑफ साइड पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्लैक्सटन की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद और जब आप इतनी विड देंगी तो ये चार लगेगा। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद चार रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: ऑस्ट्रेलिया अब 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद का इंतजार किया, बहुत ज्यादा विड दी थी प्रेम।
0: Very cleverly puts it across and uses the pace of the ball there and extends the bat to her left, far away from the body, in control of the shot and just plays it very late and the ball squeezes through the gap. That is a very well placed shot.
2: Claxton काफी खर्चीली साबित हो रही है अब तक। तीन चौके दे दिए उन्होंने इस ओवर में। आए हाथ से राउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को निकाला फाइन लेग की दिशा में। हालांकि ये 2 रन बनेंगे वहां पर जब तक गेंद वापस पहुंचती, तो कुल मिलाकर 14 रन अब तक खर्च कर चुकी हैं क्लैक्सटन अपने इस पहले ओवर में। और ये विकल्पहीनता की स्थिति है, क्या कप्तान अगले ओवर में फिर क्लैक्सटन का इस्तेमाल करेंगी या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करेंगी? उनके पास विकल्प हैं लेकिन वो विकल्प कितने कारगर साबित होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी तब जबकि आपने कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है। सिर्फ 67 रन चाहिए, 85 गेंदें बाकी, बार बार विड दे रही हैं और उसका बहुत सही इस्तेमाल गैप्स का। एक और चार।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: सो सिक्स वाज गॉन, 63 for 2, ड्रिंक्स ऑन द फील्ड but misery for the West Indies side. One must say that 18 runs of the last over from Claxton, who bowled her first over in this tournament, and she was nowhere in the line of length, and the batters prevailed, and Mooney obviously making sure that she tormented the bowlers, pulverized the bowling attack. And Sanjay, something very interesting, the two most dangerous batters are on the field right now for Australia. You got Perry, who's got a strike rate of 140 plus, and you have got Mooney, who's got a strike rate of 137 plus. Both of them, Perry had 2 half centuries and Mooney had 1 half century this particular series, so they are in a perfect mode to strike, and why not?
2: बिल्कुल, खासतौर पर एलिस पेरी का अगर आप जिक्र करें, और मूनी ये दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। पैथ मूनी अपना 124वां मैच खेल रही हैं और एलिस पेरी 180वां मैच खेल रही हैं, तो ये बताता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ियों में आप शामिल करना चाहें तो ये प्लेयर्स निश्चित तौर पर हैं। और ये दोनों सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर और अपना अनुभव जिस तरह से प्रदर्शित करती हैं और उस अनुभव का जिस तरह से अपनी टीम को लाभ देती हैं, वो भी सचमुच काबिले तारीफ है।
0: एंड समटाइम्स आई वंडर आर वी मैच वाचिंग द सेम मैच ऑन द सेम फील्ड, बिकॉज़ द ऑन द सेम वेरी ग्राउंड वेस्ट इंडीज वाज स्ट्रगलिंग एंड यू फाइंड दीस टू बैटर्स मूनी एंड पेरी प्लेइंग ऑथेंटिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, बोनाफाइडी स्ट्रोक्स।
2: बिल्कुल प्रेम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप एक टीम की जगह पर एक मशीन कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उनके बैटर्स, उनके बोलर्स सब अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। वो मशीन की तरह खेलते हैं चाहे मुकाबला कोई भी हो। आप 5 के 5 मैचेस लीग दौर के देख लें और उसके बाद ये छठा मुकाबला भी तकरीबन उसी तर्ज पर चलता
0: हुआ। Absolutely, I mean, no other factor can really redefine their game of cricket. And Chamasani says that in Australia 63 for 2, it's got 9 boundaries, 36 runs of 4s and a 6. So you can imagine that 42 runs of this has come through boundaries and a 6, out of which just about 11 dot deliveries. That is the way.

0: आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7। तुम रिपोर्ट।
1: सातवां ओवर शुरू हो रहा है 64/2। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी संभवतः बेरी को और गार्टनर ने उनकी जगह ली है। फ्लेचर क्लैक्सटन की जगह गेंदबाजी में। फ्लेचर का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 6 मैचेस में 4 विकेट, बेहतर इकोनॉमी, लेकिन आज उस इकोनॉमी का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। इस पर ऑफ स्टंप पर टप्पा डालने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला एकदम स्ट्रेट। हेनरी जब तक गेंद को फील करती दौड़ करके वहां पर रन पूरा किया। और जहां तक पेरी का सवाल है, रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पिछला ओवर जो उन्होंने खेला था एलेने का, उस ओवर में ऐसा लगा कि वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही। सिर्फ इकलौता रन बना था, वो भी आखिरी गेंद पर, अन्यथा पहले 5 डॉट बॉल डाली थी एलेने ने और तमाम गेंदों का सामना पेरी ने किया था, तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ असहज महसूस कर रही थी और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह पर गार्डनर आई हैं बैटिंग के लिए। 66/2 फ्लेचर को लगाया गया है। फ्लेचर कितनी कारगर साबित होती है लेने के बाद। फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया हाफ बॉली पर लेकर के, बॉलर के नजदीक से बॉल निकली, कोशिश की थी फ्लेचर ने बॉल को अपने नियंत्रण में लेने की, लेकिन कामयाब नहीं, एक रन लेने से नहीं रोक सकी। इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67/2 विकेट पर। पेरी का बाहर जाना थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है, ऐसा लगता है कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत कोई परेशानी थी तो उनके लिए विश्राम ज्यादा बेहतर एक साधन हो सकता था। फ्लेचर, पहला ओवर है उनका, अब तक 2 गेंदों पर 3 रन दिए उन्होंने। पहला सेमीफाइनल विश्व कप T20 का 2026, जहां दूसरे सेमीफाइनल में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की विजेता से। लेग स्टंप के बाहर थी, इस गेंद को खेलना चाहती थी, वाइड का इशारा आना चाहिए, आया, एक रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और अब 58 रन चाहिए 76 गेंदों पर। फ्लेचर की अगर आप गति देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 75-76 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वाइड डालेंगी, नो बॉल डालेंगी, तो वो परेशानी का सबब। पैरों पर बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, हल्के से केवल दिशा दी और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया, बल्कि एक नहीं 2 रन जब तक गेंद फील्ड होकर के आती, काफी वक्त था दूसरा रन दौड़ने का। तो काफी कॉन्फिडेंट बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कोई परेशानी नहीं और हल्के से केवल गेंद को खेला। कुल मिलाकर 6 रन इस ओवर में एक वाइड को मिला करके, और इस बार हल्का प्लेस किया था।
2: 71/2 एंड 7.4 ओवर्स। Fletcher, who's got 4 wickets from 5 matches, but for the moment the objective is to keep the batters silenced. You got Gardner, 4 matches and 112 runs, strike rate being 169.6, so another batter with a very very devastating kind of a strike rate.
1: To Fletcher ab tak kul milakar 7 run de chuki unki ye gain. Is baar fir flight karane ki koshish, halka sa shuffle kiya, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला, इकलौता रन, हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, रनों की रफ्तार बनी रहेगी। एशले गार्डनर एक ऐसी बैटर जिन पर इस टीम को पूरी तरह से भरोसा है, 105वां मैच अपना खेल रही है गार्डनर, और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले। हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जा सकती हैं। 53 रन बनाकर नाबाद थी भारत के खिलाफ, 29 गेंदों पर वो 53 रन उन्होंने बनाए थे। बैकफुट पर कहीं इस बार गेंद को मोड़ा इकलौते रन के लिए। 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर के बाद 73/2 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भा...

0: जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
0: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: 10वें ओवर की पहली गेंद ही वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर। फ्लेचर जिस गति से गेंदें करती हैं, उस गति के हिसाब से उन्हें गेंद पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद डाल दी फ्लेचर ने और इत्मीनान के साथ वहां पर एक अतिरिक्त रन जुटा दिया। जहां तक मुनी का सवाल है, मुनी ने आज अपने 3700 रन पूरे किए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान बैटिंग जो उनका लाइनअप है उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। फ्लेचर की गेंद और इस बार स्टंप पर लेकर के आई। गार्डनर ने हल्का सा केवल अपने पल्ले भर से लगने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया को अभी 43 रन की जरूरत है और 65 गेंदें बाकी हैं। T20 क्रिकेट में इससे आसान स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। इस बार कदमों का इस्तेमाल गार्डनर का और गेंद सीधे 6 रनों के लिए एक
5: ये लगा आभा का छक्का।
6: A great shot and great confidence oozing and played that shot with consummate ease as the delivery was bold. She was anticipating, stepped out, the footwork was important, picked up on a half volley and just about timed it well over the long on region.
4: To badhiya stroke aur ek bada sixer. Aaj match mein bahut zyada sixer dekhne ko nahi mile. Mujhe lagta hai ki Australia ka dusra ya zyada se zyada teesra chakka hoga. Kshama इस समय बिल्कुल ये दूसरा सिक्सर था ऑस्ट्रेलिया की ओर से, एक छक्का वेस्ट इंडीज की ओर से लगा था, तो कुल मिलाकर 3 सिक्सेस। 10वां ओवर चलता हुआ और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 89 हो गया है, यानी कि 90 की तहलीज पर। कदमों का इस्तेमाल, फ्लाइटेड गेंद और एक बार फिर टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
5: ये लगा आभा का चौका।
6: What a graceful inside-out shot, Sanjay. Picked up that length beautifully and played that with consummate ease. Just steps away from the line of the ball and that confident-looking inside-out shot.
4: Off stump ke bahar lagatar width di hai Fletcher ne aur uska bharpoor istemal kiya hai. Gardner ab 9 gendon par 19 run bana chuki hai. Ek baar phir flight, lagatar flight kara rahi, lekin agar aap stump par flight karaye to chaliye usko rokne mein आपको मदद मिलेगी। हल्का सा केवल पुश था इकलौते रन के लिए, तो हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, लेकिन एक शानदार छक्का और उसके बाद एक बाउंड्री ओवर में आई है फ्लेचर की, तो काफी खर्चीला ओवर फ्लेचर का। अब तक 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें बाकी, सिर्फ 35 रन की दरकार। गार्डनर पहुंच गई 20 पर और मुनी अपने अर्धशतक की दहलीज पर, 46 रन बना चुकी है मुनी। पर शफल किया और हल्के से केवल गेम को मोड़ दिया। 1 रन लेना चाहती थी लेकिन दूसरे रन का भी मौका दिखा और उस मौके को उन्होंने तुरंत अपने हक में कन्वर्ट किया। बढ़िया दूसरा रन दोनों के बीच, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग विकेट के बीच में। इन 2 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 96 2 विकेट के नुकसान पर। 100 रनों की दहलीज पर पहुंच रहा है और 126 रन बनाने ऑस्ट्रेलिया को, इकलौता रन। और ये आखिरी गेम थी, 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया अब 97 पे 2।

0: यहां पर फील्ड होती, अलेने के हाथों तोड़ करके रन पूरे किए 106 दो विकेट के नुकसान पर। तो अब सिर्फ 20 रन बचे हैं, 20 रन और बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को। और जाहिर है कि जब आप इतने विकेट्स लेकर के 20 रन आपको बनाने हैं और सिर्फ 12वां ओवर चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है उस स्थिति में अब कोई शायद चमत्कार ही वेस्ट इंडीज को वापस ला सकता है 106 पर। तो गार्टनर 23, मूनी 55 और ओवल का मैदान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। फील्ड में थोड़ा सा तब्दीलियां की जा रही हैं, खासतौर पर जो ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट है उसमें ड्राइव किया था, हाफ बॉली का ड्राइव था और एक रन दौड़ करके पूरा किया। दूसरे रन के लिए स्टार्ट लेना चाहती थी लेकिन कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, 19 रन बाकी हैं, 52 गेंदे बाकी हैं। मुनी अर्धशतक अपना पूरा कर चुकी हैं। अगर आप मुनी का करियर का अर्धशतक देखें तो एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाए और इस बार अच्छा ड्राइव था, बढ़िया ड्राइव। यहां पर रन मिलेगा सिर्फ एक लौता क्योंकि हेनरी वहां मौजूद, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। भारत साउथ अफ्रीका से भी शिकस्त खाया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे पराजित किया था और इन दो पराजय की वजह से वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। बल्ले के निचले हिस्से से लगा लेकिन रन जरूर मिलेंगे, यहां पर एक रन की गुंजाइश थी लेकिन इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए दो रन पूरे किए। वो आक्रामकता जो वेस्ट इंडीज के फील्डर्स में होनी चाहिए फिलहाल नदारद लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर वो ये मान चुके हैं कि ये मुकाबला उनके हाथ से निकल गया है। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है इस समय यूरोप में, आप लगातार इन खबरों को सुन भी रहे होंगे, तो उसका असर यहाँ स्टेडियम में मौजूद दर्शकों पर भी देखने को मिल रहा है।
1: Certainly, Europe going through a tough summer this season. 41.5 degrees elsewhere, and the score now reaches Nelson at 111 with that single just tucked away on the onside, and Glasgow the fielder, and Ram Harrod giving away 6 runs of 5 deliveries, a better over from her comparatively. But now Australia just a question of time winning this match. Here's the next delivery from. Ramharak plays it onto the onside, just pushes that onto the onside to pick up a couple of runs to end the over. 12 overs gone, a single rather, not the second run. 112 for the loss of 2 wickets after 12 overs.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: So well, for the moment, Australia cruising past the expectations of the West Indies that they would do any such thing to stop their run rate, but not really. 14 runs of 48 deliveries, as here's the first delivery of a fresh over. That's outside the off stump, plays it down into the offside to the extra cover region, picked up, and the batter's Mooney has crossed over for a couple of runs, taking the score of hers to 59 and the score to 113 for the loss of 2 wickets. Slowly but steadily, Gardner and Mooney taking Australia to the step closer to another finals. They won 6 of them in the T20 format and entering the finals once again, and to face the winners between the England-South Africa match in the second semi-finals. 13 runs.

0: कि उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उन्होंने जिस तरह से डॉट बॉल्स डाली और लगातार किफायत बरती, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस था। वो प्रेशर जब वेस्ट इंडियन बैटर्स के ऊपर आया तो उसके बाद वो चरमरा गई पूरी की पूरी टीम, और जाहिर है कि उसके बाद वो एक बड़ा लक्ष्य नहीं दे सके जो हमने देखा। और आखिर तक ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार जीत दर्ज करके सीधे फाइनल में जगह बना ली है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
1: प्लेयर ऑफ द मैच

0: And with that, Australia have gone on to win the first semi-final match that was held against West Indies in mere 13 overs, chasing a target of 125. They needed 126 to win, and the Australians made it look like a cakewalk because they were able to chase the target within 13 overs. I'm Sakshi Mandwal, welcoming all you listeners to our show Player of the Match for the ongoing ICC Presents Women's T20 World Cup. Joining me over here is my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. तो जहाँ तक World Cup Finals की बात है, वहाँ पर एक टीम तो तय हो गई, ऑस्ट्रेलिया. आज बहुत ही डोमिनेंट जीत. ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से वेस्ट इंडीज को हरा दिया है. और चर्चा करने के लिए यहाँ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं आशा रावत, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर. नमस्कार. राकेश राव, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. गुड इवनिंग. और साथ ही रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, बीसीसीआई कोच. तो आशा जी, बधाई दे दें ऑस्ट्रेलिया को.
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया को. जिस हिसाब से मैं कह ही रही थी कि अगर इस मैच को वेस्ट इंडीज़ को जीतना है तो जो दो तीन प्लेयर हेली मैथ्यू, डॉटिन, इनको स्टेफनी टेलर, इनको स्कोर करना चाहिए था. तो स्कोर होता तो जो मैच जो था वो कुछ फाइट के लिए जाता, तो स्कोर नहीं था इतना. फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला, मैंने जो बात करी थी कि वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर बैटिंग कर रहे थे वो क्रॉस खेल रहे थे ज़्यादा, मतलब बॉल के पिच में भी नहीं आ रहे थे. वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें, चाहे गार्डनर को देखें, चाहे मॉनी को देखें, तो वो ना बॉल के ऊपर चढ़ के बॉल, मतलब अगर वो स्टेप आउट भी करते तो बॉल क्रॉस नहीं खेला उन्होंने. कोई भी शॉट, कवर्स ड्राइव खेले उन्होंने, तो स्ट्रेट खेला, मतलब वी शेप में उन्होंने शॉट्स खेले.
0: राइट. एंड बेथ मूनी, सिंस यू स्पोक अबाउट हर, पुट अप एन एक्सेप्शनल नॉक टुडे. 36 बॉल 61 रन्स, व्हिच इंक्लूडेड 8 fours at a strike rate of almost 170, 169.44 to be precise. Rakesh, I'll come to you. Well, West Indies were able to get one quick wicket early on, 29 for the loss of the first wicket, but 125 we all knew were never going to be enough for West Indies to turn the tide in their favour.
3: Absolutely, because there was no pressure from the scoreboard. And when you don't have that thing first up, I mean, anything like 150, 160 would have been, because if you're looking to give your spinners a chance, you should have runs on the board. And here, of course, they just raced away with it. Like, they were averaging almost 10 runs an over. Like, 13 would mean that they were almost 10 runs an over. So, that's the kind of team that you have to, you know, I mean, the kind of performance that you have to give. If you're up against a weaker opposition, it's not just that you go and win. You score an emphatic win. You have to tell that other team, there's a difference between us.
1: Gee.
3: And the difference was reflected in that with 8 wickets and 7 overs to spare.
1: आप तीनों से ही एक सवाल, रविंदर जी, आज प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा?
4: मुनी,
0: बेथ मूनी.
4: मुझे लग रहा है कि वही बैटिंग है. बॉलिंग में तो ज्यादा दो, उसमें उन्होंने 61 रन बनाए 36 जो उसमें बॉलों में. मुझे लगता है मुनी कोई चांसेस लग रहा है.
1: और कोई दावेदार है?
3: अब इन्होंने मुनी कह दिया है, व्हिच इज ऑब्वियस मुझे लग रहा है, बट मैं कहता हूं एश गार्डनर हो सकती है क्योंकि 2 विकेट लिया है और नॉट आउट रही है और लास्ट में जो भी उन्होंने 35 रन बनाए हैं.
1: अब आशा तय करेंगी.
2: मुझे संकट में डाल दिया है.
1: आप कोई तीसरा दावेदार भी लाइए.
2: नहीं, तीसरा दावेदार वैसे है नहीं, उन दोनों में से ही किसी एक को मिलेगा. तो मुझे जहां तक लगता है जिसने 50, बेथ मूनी ने 50 करा है, तो उसी
1: और विकेट कीपिंग भी तो किया है. कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि 20 ओवर उसने कीपिंग भी तो की है.
2: हाँ, करी तो है, सही बात बोली है आपने. तो इसी डाउट में मैं बेथ मूनी को बोलती हूँ.
0: राइट, ओके. क्योंकि द गेम टुडे इज ओवर ऑब्वियसली, बट अब ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में जा रही है, क्या आपको ऐसा

0: हमें कॉल करिए। और इस समय हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने लगे हैं। जी हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार, आदाब।
0: आदाब, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मुस्तकीम मुतवा बात कर रहा हूँ, भूज गुजरात से।
0: जी क्या सवाल है आपका?
1: सवाल तो ठीक, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए।
0: जी
1: वन साइडेड मैच जीता है।
0: जी
1: और आकाशवाणी काम तहे दिल से आभारी है कि आप कमेंट्री प्रसारित कर रहे हैं।
0: जी
1: और कल जो भारत का मैच है इंग्लैंड का, उसकी कमेंट्री होगी कि नहीं होगी सर रेडियो पर?
0: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन आशा अब जब फाइनल के ऊपर निगाहें होंगी तो क्या राकेश की तरह आप भी यही सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका टक्कर दे सकता है सेकंड सेमीफाइनल में?
2: नहीं, जैसे अभी सर ने बोला कि इंग्लैंड होम टीम है तो उसका उनको फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो क्राउड जब हम खेलते हैं ना अंदर तो 11 तो होते हैं, बट उसके बाद जो ऑडियंस होती है ना तो वो हमें और मोटिवेट कर देती है तो, और अपोजिट टीम को वो डाउन कर देती है तो उसका फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। तो अब बाकी
0: जी, लेकिन अच्छे दिन है क्रिकेट के लिए कि आज आपने महिला क्रिकेट का आनंद लिया और आप कल इंग्लैंड के साथ हमारा जो मेंस में, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ एज फार एज क्रिकेट लवर्स आर कंसर्नड।
3: या श्योर, बिकॉज़ एंड इट हैज अ लॉट टू डू विद द ग्रोथ ऑफ यू नो लाइक लेडीज क्रिकेट, स्पेशली विद इंडिया डूइंग वेल एंड ऑल दैट हैज कम पोस्ट WPL, यू नो दैट हैज आई थिंक रियली हेल्प्ड एंड इंडियन प्लेयर्स हैव गेन्ड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। बट people tend to forget one thing, that Indians are still not very consistent against teams like England and Australia. There are only 3 to 4 good teams up there. New Zealand, defending champions, they haven't been able to make it to the top 4. Indians, who just won the 50 over World Cup, they couldn't make it to the top 4. But overall, when you look at things, I think Indians, the day they become more consistent, I think the men's cricket, which is already doing well, and women's cricket. So cricket in India, we'll see a more 360 degree growth, be it men or women.
4: Right, and we also have a listener joining us right now. Namaskar, good evening. Hello. Namaskar, good evening. Kya naam hai aapka? I think unki line drop ho gayi hai. Behrhal, hume dobara wo try kar lenge. But just now,
0: mujhe pata hai wo sawal kya puchne wale the.
4: Kya?
0: Ki Alice Perry retired hat kyun ho gayi?
4: Maybe possibly, but well, I'll just take the point that Rakesh was talking about at that point when we had a caller joining in, that gradually we will see cricket evolving and reaching a place where men and women's cricket will reach a certain stature of the kind of fitness that we see in the men's game. Also we'll see that happening in the women's game also. And I think aapke paas aati ho Ravi, ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें तो वुमेन्स क्रिकेट के अंदर वो चेंज हमें ऑलरेडी अब दिखने लगा है, जिस तरह से क्राउड्स का टर्नओवर आता है, जिस तरह की फंडिंग अब हो रही है वुमेन्स क्रिकेट के अंदर, जिस तरह का खेल देखने को मिल रहा है, आपका नज़रिया या टेक उस पर क्या है? लेकिन एक श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े, उनसे पहले बात कर लेते फिर आपके पास उसी बात पर आ रही हूँ मैं। नमस्कार, गुड इवनिंग।
5: नमस्कार मैम, मैं फारूक अहमद बात कर रहा हूँ।
4: राइट,
5: जम्मू एंड कश्मीर LOC से मैं बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी, जी आपके पास आते हैं वापस, लेकिन फिलहाल हेली मैथ्यूज को सुनते हैं।
6: I have our best game or play to our full potential for the entire tournament. We felt like our great game could have looked a lot better than that. But we weren't able to execute, I think, in any of the matches. A full team performance to pull together a really, really good performance by everyone, I guess.
7: How much does it throw you as well when you've had the national anthems, you've got everyone on board ready to go out there and put a big total on the board, and then all of a sudden you hear that DeAndre Dalton has gone off and is being assessed?
6: Yeah, I think it was probably a bit scary for some of us. She's obviously a massive fighter and someone you never see go down. So to see her pretty much almost passing out like that after the anthem was a bit scary, but yeah, just a bit of a medical emergency. But at the same time, it shows how much of a fighter she is, the way that she was able to come back out, and not only come back out, but try to throw a few punches at the Aussies as well, as speaks a lot to her character.
7: Yeah. Does it also mean that you were a little bit conservative at the top of the order because you weren't too sure if she was going to come back into to bat at any stage?
6: Somewhat, I feel like we wanted to get off to a good start and probably put myself under a bit of pressure based on how things were going in the first 6 overs. Probably could have gone to my strengths a bit more, but certainly wasn't sure if she was coming.

0: साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है क्या? और मुझे मैम ये भी बता दीजिए, सॉरी फॉर दैट, कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज होगी उसमें कमेंट्री होगी या नहीं?
1: जी आपको बता देंगे। चलिए सबसे पहले सवाल ले लेते हैं रवि, आप ही के पास आते हैं कि भारत क्यों हर बार ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, कहाँ पर हमारी कमियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया उसका फायदा उठा लेता है?
2: देखिए ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सामने सबसे बड़ी फिटनेस देखिए इनकी, आप ऑस्ट्रेलियन टीम की फिटनेस और इंडियन टीम की फिटनेस में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। उनकी फील्डिंग देखिए, अपनी फील्डिंग देखिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। हमारे यहाँ पे जब मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका का, चार प्लेयर भारतीय और राधा यादव तो फील्डिंग करने आई थी, उसके ऊपर इतनी बड़ी बैंडेज लगा रखी है, चोट लगी हुई थी उनको, तब भी वो फील्डिंग करने आई रही थी। बाकी तीनों प्लेयर्स को मैनेजमेंट ने ये नहीं समझा कि वो फील्डिंग के लायक भी है कि नहीं है। तो ये देखिए, आप बॉटिंग बॉलिंग सब करते हैं, फील्डिंग सबसे बड़ा पार्ट है। जब तक आप फील्डिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ग्राउंड में अपना पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने आप ग्राउंड में नहीं आते, आपको महीने महीने की फिटनेस कैंप चाहिए होते हैं। और जिस दिन इंडियन टीम, चाहे कोई इंडियन टीम फील्डिंग पर ध्यान देगी, उस दिन इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फाइट जीतेगी और सब
3: टीम। इंडियन टीम की पूर्व सदस्य से पूछ लेते हैं, फिटनेस पर कितना ध्यान देते थे आप?
4: हमारे टाइम में तो T20 होता ही नहीं था ना, तो फिटनेस में कोई ध्यान ही नहीं देता। सर ने सही बोला कि T20 की वजह, बल्कि जब से T20 आया तो मुझे लगता है फिटनेस में तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो पर ध्यान नहीं दिया जाता। और फील्डिंग में मतलब आप निग्लेक्ट करते हैं फील्डिंग को, तो
3: नहीं भले ODI टेस्ट हो, फील्डिंग एक प्रायोरिटी थी तब?
4: नहीं थी।
3: आज है,
4: आज T20 है, तो मेरे साइड अगर मैं कोच होती तो मैं देती, मैं उसको पहले लेती जिसकी फील्डिंग अच्छी है, जो फिट है। सर ने बिल्कुल सही बोला, अगर आप सिंगल डबल नहीं भाग पाएंगे, अगर आप फिट नहीं है तो कैसे लेंगे? अब आप देखिए, कैच बनानी पड़ती है, कैच कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगी, आपको कैच बनाना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए एफर्ट्स मारना पड़ेगा। तो एफर्ट तभी मारेंगे ना जब आप फिट है। T20 इतना फास्ट गेम होता है ना, उसमें आपका माइंड नहीं चलता इतना, बट अगर आप फिट है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको लगना है, कहाँ पे बॉल आ रही है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है।
3: तो कोच साहब से पूछते हैं, सर ये कैच आते आते झलक क्यों जाती है हाथ से?
2: देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि झलक जाती है, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे फील्डर्स भी कैच छूट सकती है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ये देखिए, आप कितना टाइम आप कैचेस लेते हैं, आप जो अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं, मैं देख सुना, मैंने पढ़ा भी, देखा भी है, वो 500-500, 300-400 कैचेस डेली पकड़ रहे हैं, उनको हाथ में ऐसा लगता है कि बॉल उनके हाथ में उनके साथ ही चिपक जाती है। तो ये सिर्फ टाइम स्पेंड करने की बात है।
3: हमने देखा है इंडिया में हम लोग ऐसे हाथ करके कैच लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे थैली खोल कर सूरज की तरफ, तो फर्क क्या है दोनों में?
5: फर्क दोनों का आपका ट्रेनिंग मेथड ही वही है कि रिवर्स कप जैसे आप लेते हैं, ऑस्ट्रेलियंस लेते हैं, उनकी आदत है, उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि उसमें कुछ कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, ऐसा नहीं है, बट फ़र्क ये है कि उसमें आपका पाम पहले आता है, फिंगर्स बाद में आती हैं, आप इम्पैक्ट लेते हैं पाम के ऊपर पहले। हमारे इसमें क्या होता है कि हम फिंगर में इंजरी होने का हमारा चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हाथ आपका खुल जाता है, उनका जो है कप में उनका उनकी उंगलियाँ जुड़ी रहती हैं पहले, जो थंब हैं वो दोनों जुड़े हुए हैं उनके, हमारे दोनों थंब अलग अलग जगह हैं कम्प्लीटली। तो ये एक फर्क आ जाता है उसमें, इसलिए आपका जो इम्पैक्ट होता है वो उनकी आदत है। और अगर आप वही चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है और हमारा वाला सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको जैसे ट्रेन किया जाता है उसी हिसाब से चलता है। और दूसरी चीज़ ये कि फील्डिंग का जो एस्पेक्ट है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा फील्डिंग के ऊपर वो जितना दम होना चाहिए था, मेंस क्रिकेट में भी बहुत रिसेंट है, हमारे कुछ फील्डर्स को हमें छुपाना पड़ता था एक ज़माने में, हम लोग बोला करते थे 11 में 11 फील्डर्स नहीं है हमारे। मदन लाल मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छे होते थे, मैं 60s late 60s की बात कर रहा हूँ या 70s की बात करूँ, आबिद अली का हम सोल कर, इन लोगों के हम नाम ले सकते थे, बाकियों के नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग। स्लिप फील्डर्स को हम गिनते ही नहीं थे कि चलो भाई आ जाएगा ले लेंगे, आउटफील्ड में नहीं होते थे हमारे पास फील्डर्स, और खासकर वो एम्फेसिस भी नहीं था। इन्होंने अभी कहा कि 400-400, 500-500 कैचेस लेते हैं, अजहरुद्दीन का ज़माना ले लेते हैं 90s का, जबकि वो 200-200 कैचेस वो लेते थे 100 सुबह 100 शाम को। वो एक ही इंसान होता था जो दो बार नेट्स के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए कमरे से बाहर निकलता था, एंड ही वांटेड ऑल दोज कैचेस। और हमें याद नहीं पड़ता कि अजहरुद्दीन ने कोई कैच छोड़ा हो, कपिल देव ने कोई कैच छोड़ा हो, मतलब ऐसे थे। इनकी ट्रेनिंग मेथड अलग होते थे, लेकिन हाँ आजकल तो बहुत स्पेशलाइज्ड है, आपका ट्रेनिंग मेथड्स बदल गए हैं, मैच सिचुएशन में भी आपको रख के कैच प्रैक्टिस होती है। तो विमेंस क्रिकेट में तो हमें बहुत दूर जाना है, अभी बहुत वक्त लगेगा।
1: ओके राकेश, आई विल जस्ट टेक अ पॉइंट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट वी यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ कोर्स, बट इन रियल टाइम इफ यू लुक टुडे द गेम दैट वी जस्ट सॉ, हाउ डू यू असेस वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट नाउ? बिकॉज सी दिस टीम हैज लॉस्ट 7 में से 6 सेमीफाइनल मैचेस इन द रीसेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स।

0: एक ही जीते थे 2016 का एडिशन. व्हाट डज इट स्पीक ऑफ द वेस्ट इंडीज क्रिकेट नाउ?
1: सी, वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन फॉर फार टू लॉन्ग. Because if you go to West Indies now, it's no longer that the poor guys are taking the game. They are only playing T20 cricket at best. That's why their test team has been hit for a six. White ball cricket is dying there because people are no longer interested in the game like they used to be, because they're not winning those big ones. So their cricket is suffering. Women's cricket is also suffering, and they've been a cash-strapped, association. Doesn't have that kind of money. Their sponsors, when they come to India, the Indian companies sponsor them. They don't come here with a sponsor. They come here and then they get sponsorship. So a lot of issues there, lack of interest. Women's cricket is also not too far from where the men are.
2: Ji, is samay ek aur caller hai phone line par. Hello.
3: Hello.
2: Namaskar ji.
3: Ji namaskar, sir, khairiyat hai?
2: Ji bilkul khairiyat hai. Aap apna naam bataiye.
3: Ji sir, mera naam Mohammad Hamran Beg hai. Main Ambedkar Nagar se bol raha hu, Uttar Pradesh.
2: Kya sawal hai aapka?
3: ये सर, मेरा सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, ऐसी क्या खुसूसियत उनके अंदर खासियत है जिसकी वजह से जो बाकी टीमों में नहीं है, कि बड़े मोर्चे में वो आगे निकल जाते हैं, बाकी टीमें पीछे रह जाती हैं? खास तौर से मैं अपनी इंडियन टीम के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो सुविधाएं भी ज्यादा है, खिलाड़ी भी ज्यादा, उसके बावजूद क्या कमी रह जाती है आखिर?
2: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए. आशा, जिस तरह से हमने 2025 में ODI वर्ल्ड कप जीता तो इंडियन टीम एक अच्छे हाई पर आ रही थी. आप कैसे देखते हैं इंडियन टीम का कैंपेन यहाँ पर, और फिर ऑस्ट्रेलिया से हार के वो नॉकआउट से बाहर हुई?
4: इंडियन टीम जैसे
0: आई टेक द क्वेश्चन, मैं रवि के पास आ जाती हूँ. रवि, अगर हम बात करें कि भारतीय महिलाओं की टीम जिस तरह से हम हारे इस सीज़न भी, अगर देखें साउथ अफ्रीका से भी हार गए जहाँ से हमें लग रहा था कि अब हमारा सेमीफाइनल का सफ़र ख़त्म है, ऑस्ट्रेलिया से तो हार ही गए हम, क्या कमियाँ आपको दिखती हैं प्रेजेंट भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंदर जिसकी वजह से जो बड़ी टीमें हैं, दिग्गज देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये हमें आसानी से हरा देते हैं?
5: देखिए, अफ्रीका का इस मैच में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने था, हम मैच जीत रहे थे और हम किस कारण से हारे सबको पता है, कैसे तीन कैचें छोड़ी गई उस समय. मैंने आपको पहले बोला फील्डिंग, इसके अलावा कोई चांस नहीं है. आपके पास अच्छे बैटर्स हैं, नो डाउट बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, आप लैक करते हैं सिर्फ फील्डिंग में. जिस दिन इंडिया का फील्डिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा, जिस दिन इंडिया ने फील्डिंग अपनी इंप्रूव कर ली और एक ये स्टार्स जो कल्चर है इसको दूर कर लिया, तो आप उसी लेवल पे खड़े होंगे जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खड़े हैं.
2: पर आपको लगता है आशा एक अच्छी बात कैंपेन की रही कि शेफाली, जिनको हम बैटिंग के लिए जानते हैं, इस बार वो बॉलिंग कर रही हैं, ओपन भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी की उन्होंने?
4: हाँ, मतलब ये है कि जो इंडियन टीम है हमारी, अगर मैं पहले के मुताबिक बोलूँ तो बहुत फ़र्क आया है, चाहे उनकी फील्डिंग में. मैं स्टार्टिंग से जैसे देखती आई, पहले जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था बहुत नीचे था, बट अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड हो गया. बट बात वही है, स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है पर औरों का हमसे और अच्छा हो गया है. तो मतलब हमें, जैसे अभी सर ने एक बात बोली मुझे वो बहुत अच्छी लगी, कि जैसे कैचिंग, अगर आप फील्डिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप 50-50 या 200-200 कैचेस करनी चाहिए. जैसे हम बैटिंग करते हैं ना, तो बैटिंग में हम वो नॉक करते रहते हैं, हम 200-200 बॉल खेलते हैं तभी हमारे वो बैटिंग स्ट्रोक इंप्रूव होता है. तो वैसे ही फील्डिंग के लिए भी वही बात है, पर वो चीज़ कोई करता नहीं है ना, कोचिज, मेरे ख्याल से कोचिज भी इतना नहीं करवाते हैं.
2: जी बिल्कुल. और अगर अब हम यहाँ से देखें तो दो ही साइड्स हैं जो अनबीटन है अब तक. ऑस्ट्रेलिया 5 मैच जीती, आज भी 6, उधर इंग्लैंड. आपको लगता है क्योंकि इंग्लैंड में मुकाबला हो रहा है तो इंग्लैंड अब यहाँ पर एक फेवरेट है कि सेमीफाइनल्स में, क्या उम्मीद करें सेकंड सेमीफाइनल्स में?
1: फेवरेट नहीं कहूँगा मैं, मगर ये जरूर कहूँगा कि उनके चांसेस आपको कम आंकने नहीं चाहिए. मतलब ऑस्ट्रेलिया को मैं रनअवे फेवरेट्स नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जहाँ कंडीशंस में ज़्यादा खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो इंग्लैंड के पास रहेगा, तो वो एडवांटेज आप उनसे ले नहीं सकते. हाँ, उस दिन क्या होता है वो अपनी जगह है. इस वक्त अगर हम ये मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा तो इंग्लैंड के चांसेस काफ़ी ब्राइट होंगे, जो और किसी टीम के बारे में आप नहीं कह सकते हैं. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंडिया, किसी भी टीम से अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच आप कहेंगे साहब कल होने वाला है, तो मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है, नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड.
0: ओके, रवि आपके पास आती हूँ. चलिए, ये बात तो सही है काफ़ी हद तक कि इंग्लैंड के पास होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ साथ सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला, उसमें माइंडसेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. साउथ अफ्रीका क्या आपको लगता है किस तरीके का माइंडसेट आम तौर पर दिखाती है? क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड के मुकाबले में ये अपनी चोकिंग जो मेंटालिटी है उसको ओवरकम कर पाएंगे?
5: देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस मैच को हल्के भी लेना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका की टीम बहुत ही फाइटर टीम है और अभी उनकी कैप्टन मुझे उसको उसकी फॉर्म में नजर नहीं आ रही. अगर वो लॉरा उस समय अगर उनके ऊपर बहुत

0: बड़ा मैच का दमदार है। देखिए 20 ओवर का मैच कोई बड़ा मैच नहीं होता, दो प्लेयर खड़े हो जाते हैं तो मैच बराबर कर देते हैं। और अगर यही लॉरा उस दिन अच्छी तरह लॉरा जब बैटिंग करती हैं तो वो सीधा 80-100 से लंबे स्कोर बनाती हैं, तो ये मैच एक अच्छा मैच होने वाला। एडवांटेज है नो डाउट, होम एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन होम एडवांटेज में भी बहुत, घर में भी बहुत टीमें हारती हैं, इसको
1: साउथ अफ्रीका में कप्तान लॉरा वुलवा तो है ही, लेकिन भारत के मुकाबले में हमने देखा मैरिसन कैप ने नीचे आके बड़ा अच्छा खेला, तो आपको लगता है कि इनके पास अच्छे बैटर्स बॉलर हैं?
2: अगर मैं साउथ अफ्रीका टीम को देखूंगी तो वो भी बैलेंस टीम है, और ऐसे नहीं कह सकते कि इंग्लैंड मतलब होम टीम है तो वही जीतेगी। सब जो बात होती है एक स्टेज में एक मेंटल जो अपने माइंडसेट को माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर दे, प्रेशर को कंट्रोल कर दे, तो वो भी मतलब मैच निकाल देता है। अभी जैसे आज मैच हुआ ना, तो वेस्ट इंडीज़ क्या मुझे लगता है वो उनको प्रेशर हावी हो गया, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग कर रहे थे सारे एक ही जैसे बैटिंग कर रहे थे, कोई कुछ किसी ने मतलब सिंपल क्रिकेट की भी खेलता ना कोई तो मुझे लगता फिर भी कुछ होता, सब क्रॉस उनको लगा T20 है बस। तो उस हिसाब से अगर जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा ना वो मैच निकाल लेगा।
3: ओके, क्विक प्रेडिक्शन फ्रॉम ऑल आवर थ्री पैनलिस्ट, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है कि वो सेमीफाइनल कौन जीतने वाला है? रवि आपसे शुरू,
0: एडवांटेज इंग्लैंड का नो डाउट,
4: एडवांटेज इंग्लैंड, इंग्लैंड को तो मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनल खेलेगी, तो ऑब्वियसली मैं साउथ अफ्रीका से उनको अच्छी टीम मानता हूँ। साउथ अफ्रीका का अटैक अच्छा है, हम लोग सिर्फ वुमेन टीम की जब बात करते हैं बैटिंग बैटिंग बैटिंग बैटिंग देखते हैं, ऑब्वियसली अच्छी होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका का अटैक बेटर है काफ़ी टीमों से, और वो टीम इंडिया को हराने के बाद इस स्टेज पर पहुंची है, तो एक कॉन्फिडेंस उनके साथ ज़रूर है। अगर उनको ये सेल्फ बिलीफ है कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है अंदर, तो जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता है
3: जी। और आशा,
2: मैंने बोला ना जो प्रेशर को हैंडल कर देगा ना उस दिन वो जीतेगा,
3: क्योंकि टीम दोनों में नहीं दे रहे हो,
2: नहीं दूंगी
1: जी। लेकिन क्रिकेट की जब बात होती है तो जो सुर्खियां बन रही हैं वो चाहे वुमेन क्रिकेट हो मेन क्रिकेट, बेन स्टोक्स इतने बड़े खिलाड़ी और एकाएक उनका डिसीजन आना, आप कैसे देखते हैं? एक अपना ही एरा था बेन स्टोक्स का।
4: बेन स्टोक्स को याद किया जाएगा उनको एज एन ऑलराउंडर, यस, फॉर बीइंग टेम्परमेंटल एट टाइम्स, नॉट गोइंग बाय द बुक ऑल द टाइम, और जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनका नॉक था, जैसे न्यूजीलैंड से ऑलमोस्ट उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच ले लिया, और ऑफकोर्स अजीबोगरीब चीज़ें हुई उस फाइनल में 2019, बट ओवरऑल आई स्टिल फील दैट बेन स्टोक्स विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स फ्रॉम इंग्लैंड।
1: और इंग्लैंड सीरीज कल से शुरू हो रही है पुरुषों में, वहाँ पे एनी प्रेडिक्शंस?
4: Predictions, I think Indians will have to work very hard to win.
1: Especially after defeat with Ireland.
4: No, they won't let that happen because the conditions are different. Yes. But very challenging test for India.
1: बिल्कुल, लेकिन हम श्रेयस अय्यर जो नए कप्तान बने हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, और आपको एक बार याद दिला दें कि जो दूसरा सेमीफाइनल है वुमेन्स वर्ल्ड कप का वो परसों होगा 2 जुलाई को, और आकाशवाणी पर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा हमारे विशेष कार्यक्रम और आंखों देखा हाल के लिए शाम 10:30 बजे। जी हाँ, पूरी रात अपनी है, 10:30 बजे विशेष कार्यक्रम और फिर आंखों देखा हाल। लेकिन फिलहाल पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव और रविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच,
4: बहुत शुक्रिया।
3: And on that note, thank you to all our listeners for joining in. This is me, Sakshi Mandwal, and Amit Arora saying goodbye, but also giving a heartfelt thank you to our technical team, Jayaram, Anirudh Gupta, Nagendra Kumar Patil, Prasoon Kumar, our production team, Swati Kapoor, Tanmay Bhatt, Vidwan Vaz.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सुनंदा शर्मा का गाया राग रागेश्री में ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ सारंगी पर हैं उस्ताद लियाकत खान, हारमोनियम पर हैं सुंदरशन शर्मा और तबले पर हैं केदार पंडित।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालय

0: इकाइयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातियों बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people.